ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है।

गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में है। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम सुचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिल करके, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में, यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़ें और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप 0 पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें।

यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है। बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया न लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20 से 30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले

0: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
1: प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्तीज।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियाँ हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: अरे झब्बू।
1: हाँ साल।
0: अरे एक सवाल का जवाब दो।
1: बताइए साल।
0: ये बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है?
1: अरे जमीन पर साल।

0: क्या बात है। और वेलकम बैक इन मॉर्निंग वाला शो, गुड मॉर्निंग गुंडा, ओनली ऑन रेडियो 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन। और अभी ऐसा लग रहा है कि अब बरसा तब बरसा, अब बरसा तब बरसा। जी हाँ, सो फिलहाल बरसने का माहौल बना हुआ है और कहीं ना कहीं हम ऐसा देख पा रहे हैं कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। फिलहाल ये मानसून का सीज़न आपको, मुझे, हम सबको मुबारक आज के इस डे में, सैटरडे में। ऐसा लग रहा है जैसे सैटरडे स्पेशल मनाने आया है आज का मौसम। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब कुदरत ठान लेती है तो वो तो करके दिखा ही देती है। तो चलिए, अच्छी बात है और हम उसको एंजॉय कर लेते हैं। फिलहाल वक्त हो गया आपको आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ ले चलने का और बताने का कि भाई आज सैटरडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर आया है और आज का थॉट क्या कहना चाहता है आपसे आज के मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Aajya Khan.

वैसे एक सॉन्ग है जिसको मैं बाद में शायद गुनगुनाने वाला हूँ और आपसे पूछने वाला हूँ कि भाई वो सॉन्ग आखिर किस मूवी का है, क्या आप उस सॉन्ग को पहचान पा रहे हैं या नहीं। असल में कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक वक्त पर लोगों के ज़रिए गुनगुनाए जाने लगते हैं और वो एक सेंसेशन की तरह बन जाते हैं। सो ऐसा ही एक सॉन्ग है, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और देखेंगे कि आज का थॉट ऑफ द डे हमसे क्या कहना चाह रहा है और आज के थॉट की क्या बात है जो हमारे सैटरडे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने लगी है। सो आज का थॉट कहता है, जिंदगी की शुरुआत अपने रोने से होती है। जिंदगी की शुरुआत अपने रोने से होती है और जिंदगी का अंत जो है दूसरों के रोने से। ये बात तो सभी जानते हैं कि भाई जब कोई बच्चा पैदा होता है तो रोता है और जब कोई जाता है तो उसके अपने रोते हैं। इस शुरुआत और अंत के बीच का जो वक्त है वो भरपूर हंसने का हो, बस यही सच्चा जीवन है। जी हाँ, शुरुआत में भी रोना, आखिर में भी रोना, इसके बीच का जो वक्त है ये भरपूर हंसने का हो, मुस्कुराने का हो, खुश रहने का हो, यही जिंदगी है, यही जिंदगी का सार है। आज सैटरडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपसे ये गुजारिश तो करता ही है, लेकिन ये बात कहने के बाद आपको बहुत सारी चीजें ख्याल में आ रही हैं। अच्छा, हम हमेशा कहते हैं ना कि हर हम मुस्कुरा तो ले, हम खुश तो हो जाए, लेकिन फला प्रॉब्लम है, ये तो हो जाए बट फला चीज सही हो जाए। भाई ये बताइए, जिंदगी में ऐसा लगता है क्या कि सब कुछ सही हो जाएगा और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है? आज तक ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कभी लगा है कि ऐसा हो सकता भी है? ऐसा कहीं एग्जिस्ट करता है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं करता है, नहीं हो सकता है। ऑलरेडी शुरुआत रोने से हुई है, जाना भी रोने के साथ में होगा, बाकी बचा वक्त मुस्कुराने का है, गुनगुनाने का है, हंसने का है, यानी हंसी से भरा हो, यही सच्ची जिंदगी है, यही सच्ची बात है। और बाकी जो चीज़ें रही वो तो जिंदगी के हिस्से हैं। अब हम ये नहीं कह सकते ना कि हमारे पास मुंह हो, आंख हो, लेकिन कान ना हो, होगी, हाथ हो, कंधा हो, गर्दन हो, लेकिन पैर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। सारे हिस्से होते ही होते हैं, लेकिन अब इसी शरीर से कोई बहुत बढ़िया इसको बना लेता है, हेल्दी बना लेता है, और यही हाथ, पैर, कंधा, गर्दन, सिर, धड़ होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, इसको मजबूत नहीं बना पाते हैं। तो ये तो हमारे बनाने के ऊपर है। कुल मिलाकर के हमको हमारे वेपन्स दे दिए गए हैं, हमारे टूल्स दे दिए गए हैं, बस उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये हमको समझना पड़ेगा। सो फिलहाल आज का सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट कहता है कि जिंदगी की शुरुआत अपने रोने से होती है, जिंदगी का अंत दूसरों के रोने से, इस शुरुआत और अंत के बीच का वक्त भरपूर हंसने से भरा हो, बस यही सच्ची जिंदगी है, इतनी सी बात है। अब ये बात हमको क्या समझ आई है, हम इस बात को कैसे देख रहे हैं और हम इस बात को कैसे समझ रहे हैं, ये देखना होगा। हम जैसी चीज, जैसे लोग और जिन चीज़ों में पढ़ते जाते हैं वैसी ही हमारी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट होती जाती है। हमें दूसरों में बड़ा इंटरेस्ट होता है तो वो कुछ लाएं, वो कुछ उनकी ज़िंदगी में हो रहा है तो शायद हम उसको ही डिस्कस करने लग जाते हैं, हम अपना फिर भूल जाते हैं, वक्त हमारा उन पर जाता है, फलाने ने आज क्या किया, धमाके ने कल का किया था, ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं। हम खुद पे सेंट्रिक होते हैं अपनी चीज़ों को, तो हम अपने बारे में जाने लग जाते हैं, मुझे ये पसंद है भाई और मैं ये फील करती हूँ, मैं ये फील करता हूँ इस काम को करते हुए, इस शख्स से मिलते हुए, साल की ये महीने मुझे ज़्यादा पसंद है, ये फ्लावर बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसी से लाइफ बनती है और हम अपने बारे में जानने लग जाते हैं। और इसी तरह अगर हम किसी को जज करने लग जाते हैं, फलाने ये हैं, धमाके ये हैं, वो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं,
वो लोग ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, तो हमारे मन में फिर यही सब बस जाता है। तो ये बात आती है कि आखिर ये वक्त जो है बीच का, ये कैसा है या होता कैसा है। दरअसल होता कैसे भी नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा आप जो करते वही होने लग जाता है। बट बात ये आती है कि अगर आप इसको हास्य से भरा बनाना चाहते हैं तो आपको इतनी सारी चीज़ों को छोड़ करके खुद पे सेंट्रलाइज होना पड़ेगा, खुद पे फोकस करना पड़ेगा, खुद की चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर है, राइट? सो यही बात हम कहना चाह रहे हैं आपसे आपके मॉर्निंग वाले शो में, जो आज का थॉट आपसे बता रहा है। आई होप कि आज के थॉट ने आपको बता ही दिया है और आप भी कहीं ना कहीं अब सोच पा रहे हैं कि भाई अच्छा ये चीज़ ऐसे होना है, राइट? तो चलिए अच्छी बात है, इसको हम सोच पाएँ, इसको हम कर पाएँ, ये तो बहुत बढ़िया है। एंड इसी के साथ में अब फिलहाल चलते हैं आज के म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और उसके बाद जब वापस आएंगे तो आने के बाद देखेंगे कि भाई आप लोगों ने, किन किन लोगों ने जो सुन रहे हैं 89.6 FM की एप्लीकेशन से, उसी एप्लीकेशन की चैट पर आकर के आज के थॉट और आज की मॉर्निंग के बारे में आपका क्या है कहना। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो इस मौसम को और भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इस मौसम को डिफाइन कर रहा है और इसकी खुशबू आप तक सीधे पहुंचा रहा है।

0: बस बस बस बस यही इल्तिजा तो हम भी कर रहे हैं कि बस अब अंबर से पानी बरस ही जाए तो फिर मजा ही आ जाए। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और अब आइए सीधे चलते हैं आपके आए हुए मैसेजेस की तरफ, लेकिन उससे पहले फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आरजे अदनान स्वागत करते हैं आपका।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan. RJ Khan.

सुबह ही हमारी सविता दुबे जी ने कहा है, सुप्रभात, हमारे इधर बारिश हो रही है। क्या बात है भाई, मुबारक हो आपकी तरफ बारिश हो रही है हरखापुर में। चलिए हरखापुर वाली थोड़ा सा गोंडा शहर की तरफ भी आप भेज दीजिए, अच्छा लगेगा। आज का सुविचार बहुत अच्छा लगा, धीरे धीरे सुधर रहा है परिवार को, क्या बात है, बहुत प्यारी बात है कि ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है और आप इसको कर पा रही हैं और ये आपको नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच इतनी बड़ी बात हमसे साझा करने के लिए। अकबर कुरैशी हैं फ्रॉम नवाबगंज गोंडा से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। मोहित वर्मा लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। अच्छा, थॉट में जो आज बात हुई वो दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत और आखिर की बात हमने कहा कि रोने से होती है, शुरुआत की जो बात हुई वो अपने रोने से और आखिर यानी अंत जो होता है वो दूसरों के रोने से, लेकिन इसी अंत और आरंभ के बीच में अगर हम देखें तो जिसकी बात हमने की है कि ये बीच में समय अपना होता है और अगर ये हंसी से भरा हो तो क्या ही बात है। कई बार हम हंसते हैं तो हमें ये भी डराया जाता है कि इतना मत हंसो, इतना मत खुश हो, नहीं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब भाई ये बताओ, पैदा हो गए हैं, अब तो जो प्रॉब्लम आएगी इसी ज़िंदगी में आएगी, तो जाहिर सी बात है देख ही लेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है। और अंत जब हो जाएगा तो उसके बाद प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, तब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, शायद हम डरते बहुत है चीज़ों से, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर डर बसा हुआ होता है, उस डर को निकालना है। इतना भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल आप इस समय को अब किस तरह लेने वाले हैं और ये जो बात हुई है आज के बाद, शायद अपनी आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने का नज़रिया क्या कुछ चेंज करने वाले हैं, क्या किसी अलग एंगल से देखने वाले हैं, ये देखना, ये हमारा आपसे आने वाले टाइम में सुनना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। फिलहाल और अभी इतना बढ़िया, इतना इंटरेस्टिंग सा मौसम हो गया है, तो चलिए एक सॉन्ग भी इतना ही इंटरेस्टिंग हो जाए।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी, तो भाई आपसे बातचीत करते करते मुझे लगा कि इतनी सारी चीज़ें अपने शहर गोंडा में हो रही है, सो क्यों ना आज भी आपको आपके सिटी की अपडेट दे दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि फ़िलहाल शहर में क्या कुछ चल रहा है। सो फिलहाल शहर में तो चलता है जो वो हम बताते ही हैं, लेकिन आप जो हैं वो इन गानों में आज ज़रा ज़्यादा ही झूमने वाले हैं, क्योंकि ये ख़ता जो है वो आरजे अदनान की नहीं बल्कि आज के मौसम की है। सो जब कर दिया है तो चलिए अब ये तो इल्ज़ाम भी कबूल है।

0: सो भाई चलिए इसी जबरदस्त सॉन्ग के बाद वापस से आ गए हैं और आपको बताने वाले हैं गोंडा में क्या कुछ चल रहा है जो आपको बताना है जरूरी। काफी सारी अपडेट्स आज सैटरडे में गोंडा शहर से मिली हुई है और वो अपडेट्स हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा के जरिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

हाँ जी, तो सबसे जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि फिलहाल 4 गोदाम से कोडीन मिली हुई सिरप फिर से पकड़ी गई है गोंडा में। सो 4 जिलों की जो औषधि प्रशासन की टीम है उसने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के 4 गोदामों में छापा मार करके काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में कोडीन मिली कफ सिरप और कहीं ना कहीं निश्चेतक दवाएं और टैबलेट्स बरामद की है। सो 20 घंटे तक कार्रवाई चली। जिस मेडिकल स्टोर के नाम पर दवा का लाइसेंस जारी था वहां पर दवा का स्टॉक नहीं मिला और कैंपस किराना दुकान के रूप में संचालित हो रही थी। सो फिलहाल आपको बता दें ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि ये जो सिरप मिली हैं शीशियों से इनकी एक्सपायरी डेट भी मिटाई गई थी। सो जांच के दौरान एक गोदाम में रखी बड़ी संख्या में कोडीन से मिली सिरप की बोतलों पर एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और जो बाकी डिटेल्स हैं वो मार्कर से मिटाए गए मिले। इससे आशंका जताई जा रही है कि एक्सपायरी या फिर संदिग्ध दवाओं की पहचान छिपाकर उन्हें दोबारा बाजार में ऊंचे दाम पर बेचने की तैयारी थी। सो इन दवाओं के नमूने जांच के लिए फिलहाल सुरक्षित कर लिए गए हैं। सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये कफ सिरप वाला मामला जो है लगातार आता जा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इससे, बट अभी भी ये कहीं ना कहीं जारी है। इसलिए आम जन को जब कभी सिरप लेना हो इस तरह से तो वो इन सारी चीज़ों की ज़रा जांच कर ले और उन्हीं जगहों से ले जहां पे आपको ट्रस्ट है। इसके अलावा चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि एनसीसी के एडमिशन्स प्रोसेस से जुड़ी हुई आ रही है। सो आपको हम बता दें कि पस्का में मौजूद तुलसी स्मारक इंटर कॉलेज में एनसीसी के जूनियर और सीनियर डिवीजन का जो है वो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। सो ANO कैप्टन ने बताया कि भाई 31 जुलाई तक स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। सो क्लास 8th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए जूनियर डिवीजन की भर्ती 4 अगस्त को कॉलेज मैदान में ही होगी और क्लास 11th के लिए सीनियर डिवीजन की जो भर्ती है वो 10 अगस्त को गोंडा पुलिस परेड ग्राउंड में होगी। सो ये अपडेट थी एनसीसी में एडमिशन को लेकर के। इसके बाद जो है वो ये है कि अपने ज़िले में जो 16 CHC चलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, उनको सौर ऊर्जा से रोशन करने की बात सामने आ रही है। सो ज़िले के 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सौर ऊर्जा बेस्ड बिजली व्यवस्था डेवलप की जाएगी। सो बिजली संकट से निपटने के लिए हर एक CHC में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी CHC की जो आधारभूत फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाते की भाई कार्य योजना कर ली है। सो योजना के तहत हर एक CHC में 25 KV क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। सो न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट यानी NBSU की मशीनों के संचालन के लिए 5 KV का अलग सोलर सिस्टम लगेगा। हॉस्पिटल के कैंपस में जल भराव की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए करीब 300 मीटर नाली बनाई जाएगी। आवास तक पहुँचने के लिए लगभग 1000 मीटर इंटरलॉकिंग और जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी मरम्मत में हर एक CHC को एक नए शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव भी दिया गया है। सो मरीजों की फैसिलिटी के लिए 20 जो है वो 3 सीटर बेंच, 5 पंखे और एक वाटर कूलर लगाए जाएंगे। CMO ने बताया है कि स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। इसके अलावा अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पे 54 लाख की ठगी का मामला। जी हाँ, 54 लाख। करनैलगंज के 5 इन्वेस्टर्स हैं जिनसे सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच कराई गई थी रकम जमा। सो आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 5 लोगों से करीब 54 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। सो करनैलगंज के जो लोग हैं उनकी तहरीर पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इससे पहले करनैलगंज कोतवाली में 7 जुलाई को 1,08,000 ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सो पीड़ितों के हिसाब से कामकाज के सिलसिले में लखनऊ निवासी से उनकी पहचान हुई थी। उसने खुद को क्रिप्टो करेंसी कारोबार से जुड़ा बताते हुए कहा कि एक कंपनी के जरिए वो इन्वेस्ट करता है जहाँ हर महीने 5-6% तक का रिटर्न मिलता है। TLC 2.0 क्रिप्टो क्वाइंस से
इन्वेस्ट भविष्य में लाखों रुपए का होने का दावा किया। आरोप ये भी है कि निवेशकों को कैप्टर मनी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जानकारी दी गई और निवेशकों में दो लोगों का हवाला देते हुए भरोसा दिलाया गया। सो टेलीग्राम चैनल के ज़रिए इन लोगों से बात कराएगी और इस तरह से कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी ठगी का मामला सामने आया। सो निवेश करते वक्त आपको सावधानियां बरतनी हैं। अगर आप भी निवेश करते हैं तो निवेश करना कोई गलत नहीं, लेकिन सही जगह सही तरीके से निवेश करना ज़रूरी है, जिसके लिए आप सिर्फ सेबी, आरबीआई या इससे जुड़े हुए जो नियामक संस्थाएं हैं, जिनसे जो मान्यता प्राप्त करती हैं, उसी प्लेटफॉर्म या कंपनी में ही आप निवेश करेंगे जहां सेबी का हस्तक्षेप होगा, आरबीआई का होगा या इससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं नियामक संस्थाएं हैं, वो अगर अप्रूव्ड हैं उस प्लेटफॉर्म पर तो ही आप करेंगे। अगर कोई इंसान हर महीने तय या ऐसे बहुत ज़्यादा रिटर्न की बात करता है कि 5-10% हर महीने का दावा करे, तो आप ज़रा अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये लालच दी जा रही है। सो इन्वेस्ट से पहले कंपनी का जो है वो रजिस्ट्रेशन और जो उनके डायरेक्टर्स हैं उनकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी जांच ज़रूर कर लें। किसी भी इंसान के कहने पर या सोशल मीडिया या टेलीग्राम व्हाट्सएप के भरोसे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। सो इन्वेस्टमेंट से पहले लिखित जो है वो डॉक्यूमेंट्स, नियम और शर्तें, जोखिम संबंधी जानकारी को आपको अच्छे से जान लेना है। किसी खाते में बड़ी रकम भेजने से पहले आपको जांच कर लेना है। सो ये सब बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं और करते हैं। इन्वेस्टमेंट करना, मैंने कहा ना, कोई गलत बात नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत सोच समझ कर सही जगह किया जाए। किसी के कहने पर आ करके या ज़्यादा रिटर्न के चीज़ों को देखते हुए नहीं करा जाए। इसके अलावा आपको हम बता दें कि साइबर ठगी गिरोह के 5 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। ये खबर जो है मोतीगंज कोंडा से ही है। सो मोतीगंज पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े म्यूल बैंक अकाउंट चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 5 मोबाइल, 1 चेकबुक और डेबिट कार्ड बरामद हुआ है। सो ये लोग साइबर अपराधियों को अपने बैंक खाते अवेलेबल कराकर ठगी की रकम का जो लेन देन करते थे और कमीशन लेते थे। सो फिलहाल प्रभारी निरीक्षक ने बताया है कि साइव्रज अभियान के तहत मोतीगंज में दर्ज रिपोर्ट के विवेचना के दौरान पुलिस ने रमवापुर के निवासी और इस तरह से कई लोगों की शिकायत पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और शिकायतों के जांच के दौरान एनसीआरपी पोर्टल पर ऐसे कई लोग हैं जो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज मिली थी। पता चला था कि खातों और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के रूप में हो रहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बभन जोत, छपिया और मनकापुर क्षेत्र में खाद बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया। एक विक्रेता के यहां अनियमितता मिलने पर उर्वरक से जुड़ी हुई बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और बताते हैं कि अगली अपडेट कहां से और क्या आ रही है। सो बता दें, कटौती और लो वोल्टेज पर भी लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। सो आर्य नगर की हम बात कर रहे हैं। आर्य नगर में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उपकेंद्र के, वहां प्रदर्शन किया जिसमें नवाबगंज, महनून समेत कई इलाकों में भी अभी ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ये बात आई कि भाई ट्रांसफर लगाया गया ट्रांसफार्मर और 2 घंटे में फिर से जल गया, इसको लेकर के काफ़ी लोगों में गुस्सा भी देखा गया। एंड इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है समाधान दिवस की। सो आज सुबह 10 बजे से तरबगंज तहसील में जिलाधिकारी की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तरबगंज में किया जाएगा। एंड आपको ले चलेंगे अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है ITI में एडमिशन जो है वो शुरू हो गए हैं। सो आपको बता दें कि 4 राजकीय और 14 निजी

ऑनलाइन अप्लाई करके लास्ट जो है डेट वो 4 अगस्त है, इससे पहले पहले आपको करना है। सो जिले के आईटीआई गोंडा, मनकापुर, करनैलगंज, तरबगंज समेत 14 मान्यता प्राप्त जो निजी आईटीआई हैं उसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक डीजल इंजन, वेल्डर, वायरमैन, प्लम्बर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी और सिलाई जो टेक्निक है सहित कई ट्रेड में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। एंड ट्रेनिंग के बाद रेलवे, विद्युत, सिंचाई और परिवहन समेत कई सरकारी विभागों में या फिर सार्वजनिक उपक्रमों में निजी कंपनियों में रोज़गार के मौके मिल सकते हैं। सो इसलिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको बता दें कि 1748 सीटों पर इसमें एडमिशन होने वाले हैं। ज़िले के चारों राजकीय आईटीआई में 1748 सीट्स हैं, इसमें गोंडा में 756, करनैलगंज में 396, तरबगंज में 376 और मनकापुर में 220 सीट्स हैं। सो एडमिशन के लिए कम से कम 14 साल होना चाहिए और ट्रेड के हिसाब से शैक्षिक योग्यता 8वीं या फिर हाई स्कूल या आपने मैथ्स सब्जेक्ट के साथ में हाई स्कूल में लिया हो। सो 8वीं पास जो भी कैंडिडेट्स हैं वो वायरमैन, वेल्डर, प्लम्बर और सिलाई टेक्निक जैसे ट्रेड्स में एडमिशन ले सकते हैं। सो फिलहाल ये जानकारी जो है आईटीआई की तरफ से आ चुकी है जो कि हमने आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि भाई ये जानकारी आपके काफ़ी ज़्यादा काम की रही होगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि वाद मुक्त देवी पाटन अभियान शुरू हो रहा है जिसमें गांव में बनेगी मध्यस्था टीम। सो देवी पाटन मंडल में गांव में अब छोटे छोटी जो ज़मीन है और जो पारिवारिक है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद है वो अदालत पहुंचने से पहले गांव में ही सुलझाने की पहल होगी। सो मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कल शुक्रवार को वाद मुक्त देवी पाटन संवाद से समाधान अभियान की शुरुआत करने के निर्देश दिए। इसके तहत हर एक गांव में 5 सदस्य जो है वो मध्यस्था टीम गठित होगी जो आपसी सहमति से विवादों का वक्त पर ही निस्तारण करेगी। सो कल यानी शुक्रवार को मंडल के सभी जिला अधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि गांव लेवल पर विवादों के समाधान में अदालतों पर मुकदमों का बोझ घटेगा और सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। बैठक में बलरामपुर के फोल्डेबल स्टडी टेबल मॉडल को बालिका शिक्षा के लिए प्रभावी बताते हुए पूरे देवी पाटन मंडल में लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को बेहतर कोऑर्डिनेशन और रेगुलर मॉनिटरिंग करने को भी कहा है। सो फिलहाल ये ज़रूरी कुछ जानकारियां थी जो कि आप तक पहुंच गई। आई होप इसमें से काफ़ी जानकारी आपको सीधे तौर पर फ़ायदा देने वाली है, उससे जुड़ी हुई अपडेट। आई होप कि इससे जुड़ी हुई अपडेट जिनके लिए भी फ़ायदेमंद है आप उन तक ज़रूर पहुंचाने वाले हैं। फ़िलहाल वक्त हो गया है आपको एक ऐसे सॉन्ग को सुनाने का जिससे आप एक गुजरे हुए ज़बरदस्त दौर में जाएं और एक सुपर हिट सॉन्ग सुने और कहें कि वाह क्या बात है। सो चलिए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में आरजे अतनान के साथ। फ़िलहाल आज है सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम। मॉर्निंग का टाइम है, आरजे अदनान साथ हैं और गाने आय हाय हाय हाय इसमें तो क्या बात है।

0: ए चिंटू चिंटू,
1: बोलो ना चिंकी।
0: एक बात बताओ।
1: पूछो।
0: तुम पढ़ाई करते हुए सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का रखते हो?
1: यही के जब भी मैं पढ़ूं पापा मम्मी को पता चल जाए कि मैं पढ़ रहा हूँ।
2: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान करते हैं। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आप सुन रहे हैं अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

वैसे ब्राज़ील में एनिमल शेल्टर में इसको लेकर के एक कैंपेन चलाया जा रहा है, शायद ये मॉडल आपको भी पसंद आए। वैसे मॉडल ये है कि ब्राज़ील के जो एनिमल शेल्टर हैं इसमें रेस्क्यू किए गए जो स्ट्रे डॉग्स हैं यानी कुत्ते हैं, इनकी देखभाल बेघर हो चुके लोगों को सौंपी जा रही है। जी हाँ, यानी एनिमल शेल्टर में जो रेस्क्यू किए गए कुत्ते हैं उनकी देखभाल वो इंसान जो बेघर हो चुके हैं उन लोगों को दी जा रही है। सो बेजुबानों को सहारा मिल रहा है और ज़रूरतमंदों को रोज़गार, यानी जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको रोज़गार मिल रहा है और जो बेजुबान जानवर हैं स्ट्रे डॉग्स उनको मिल रही है आसरा। सो ये सहारा मिल रहा है और ऐसे ज़रूरतमंदों को रोज़गार। सो ये फ़िलहाल ब्राज़ील में है। जी हाँ, इसको अगर हम विस्तार से बताएं, सो सवाल ये आता है कि क्या एक एनिमल शेल्टर सिर्फ बेजुबानों की ज़िंदगी बदल सकता है। सो हम बता दें आपको कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में चल रही एक अनोखी पहल ने इसका जवाब नहीं में दिया है। सो यहाँ पर होप शेल्टर नाम की एक एनिमल शेल्टर में सड़क से बचाए गए कुत्तों की देखभाल का काम बेघर रह चुके लोगों को दिया जाता है। जी हाँ, वो आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। सो आपको बता दें कि इस पहल की दरअसल शुरुआत जो है वो वहीं के पत्रकार ग्लेन ग्रीनवाल्ड और दिवंगत रियो सिटी काउंसिल डेविड मिरांडा ने की थी। उन्होंने देखा कि सड़क पर रह रहे कई लोग अपनी कठिन सिचुएशंस के बावजूद अपने साथ रहने वाले कुत्तों का बेहद प्यार और जिम्मेदारी से ख्याल रखते हैं। इसी सोच ने इस अनोखे मॉडल को जन्म दे दिया। सो इस शेल्टर का जो एम्बिशन है वो सिर्फ जानवरों को सुरक्षित आश्रय देना नहीं है बल्कि बेघर रह चुके लोगों को एक इज्जत के साथ रोजगार, नई शुरुआत और समाज से दोबारा जुड़ने का मौका देना भी है। यहाँ उन्हें काम के साथ रहने की फैसिलिटी, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने और आगे बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ने में मदद की जाती है। और ये पहल हमें याद दिलाती है कि जो करुणा है इसकी कोई सीमा नहीं होती। एक अच्छी सोच इंसानों और बेजुबानों दोनों की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर भारत में भी ऐसे एनिमल शेल्टर्स बने जहाँ बेसहारा जानवरों को सुरक्षित घर और ज़रूरतमंद लोगों को सम्मानजनक रोज़गार मिले, तो क्या आप भी ऐसी पहल का समर्थन करते हैं? अगर भारत में भी ब्राज़ील की तरह इस मॉडल को लॉन्च किया जाए और बेजुबान जानवरों के लिए शेल्टर होम में जिम्मेदारी दी घर जाए जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं, तो क्या ये मॉडल अच्छा नहीं होगा? जहाँ पे एक तरफ ज़रूरतमंद को रोज़गार भी मिल रहा है, इज्जत की ज़िंदगी भी जी रहे हैं, सोसाइटी से वापस जुड़ने का मौका मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो बेजुबान जानवर हैं उनको सुरक्षित वातावरण मिल रहा है, उनको प्यार मिल रहा है और वो सेफ हैं। वैसे इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय भी हमको बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम लोग चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और हम ये भी मानते हैं कि जो जहाँ से भी मिले और अच्छा है तो उसको हम करने को तैयार हो जाते हैं। क्या आप भी इस पहल का समर्थन करते हैं और क्या आपको भी लगता है कि ये पहल अब भारत में भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो बेसहारा हैं घर से अपने, और स्ट्रे डॉग्स का तो आप हाल जानते ही हैं। तो क्या लगता है ये अगर पहल की जाए अपने भारत में तो कितना ज़्यादा फिजिबल होगा, कितना ज़्यादा इसको समर्थन मिलेगा और कितना ये सही होगा, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर के आ रहा होगा। ऐसा कुछ भी है तो आप सोच करके हमको बता सकते हैं। फिलहाल हम लेकर चल रहे हैं आपको एक अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और आइए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं। इसके बाद आएंगे, सो चैट बॉक्स में कई नए लोग भी मौजूद हैं, उनको भी हम ऑफकोर्स रिवर्ट करने वाले हैं आपके मैसेज को। तो चलिए उससे पहले हम सुन लेते हैं इस बेहतरीन से सॉन्ग को आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की
धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या बात है। और तुम मेरे, यस ऑफ कोर्स, आप हमेशा से मेरे हैं, क्योंकि भाई हमारी आपकी मुलाकात तो हर रोज़ हो जाती है। सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और अब आइए सीधे ले चलते हैं आपको बाद में आए हुए मैसेजेस की तरफ।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सविता जी का बोलना कि मैं लेकर आ रही हूँ बारिश, और फाइनली गोंडा शहर में बारिश हो भी गई। क्या बात है, थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत बारिश यहाँ तक भेजने के लिए। कहने के बाद महेश शर्मा बस्ती वाले, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू महेश, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। फरहीन खान है, हेलो हाय फरहीन, आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। धर्मेंद्र मोहन जी हैं फ्रॉम आवास विकास, लिखते हैं अदनान से गुड मॉर्निंग, अच्छे लोग किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। क्या बात है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, और बहुत प्यारी बात आपने लिखी। सविता जी को गोंडा अपडेट में जो हमने बताया कि भाई अब गाँव स्तर पर ही कमेटी बनेगी 5 लोगों की मिल करके, जिसमें प्रॉपर्टी का विवाद भी है शामिल, तो आपने बताया कि बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई सर, ज़मीनी मामला से बहुत दिन से जूझ रही हूँ, और ये अच्छा लगा आपको सुन करके कि अब ऐसी कोई कमेटी देवी पाटन जोन में बन रही है गांव-गांव लेवल पर। एंड इसके बाद जो है आपने लिखा है कि डग वो घर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, भारत में होनी चाहिए, है ना। सो जो ब्राज़ील में मतलब डॉग्स वाला आपने सुना कि ये मॉडल अपनाया जा रहा है, जो बेजुबान बेसहारा पशु हैं, स्पेशली जो डॉग्स हैं, उनको बेसहारा लोग जो इंसान हैं वो उनको ज़िम्मेदारी दी गई ताकि उनको रोज़गार मिले, और बेसहारा जो ये डॉग्स हैं इनको आसरा मिले और प्यार मिले। आशु मिश्र जी हैं लखनऊ से, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। अजय जी हैं, गुड मॉर्निंग। एंड इसके अलावा आप फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, आपका आरजे अदनान वेलकम करते हैं। सो चलिए ना, वक्त हो गया है आपको एक बेहतरीन से म्यूज़िकल ट्रैक की तरफ ले चलने का संग अपने, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार समझाया है जी, लेकिन आप जो हैं बहुत प्यारे हैं जी, बहुत प्यारे हैं। मैं तैनु समझावा, ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, एक फील है, और अगर ये फील मॉर्निंग टाइम में मिलता है तो ये और भी बढ़ जाता है। फिलहाल मौसम है रोमांटिक, मॉर्निंग है शो, और हैं आरजे अदनान संग आपके, स्टे ट्यून्ड।

भाई मॉनसून है और इसी मॉनसून सीज़न में हम कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी फसलों के लिए, यानी हमारे किसान भाइयों के लिए ये सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो इस दौरान फसलों में आखिर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कैसे फसल को सुरक्षित रखते हैं, कैसे मॉनसून में होने वाली प्रॉब्लम्स से बचाते हैं और कैसे इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, ये भी हम बताने वाले हैं आपको अब से बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आएंगे हमारे किसान भाइयों को लेकर के कुछ ज़रूरी अपडेट्स है जो आप तक हम ज़रूर पहुंचाने वाले हैं।

0: अंजीत, तो भाई हमने कहा था आने के बाद हम बताने वाले मॉनसून सीजन में हमारे स्पेशली किसान भाई जो हैं वो अपनी फसलों को किस तरह से फफूंद वाले रोगों से बचाए, क्योंकि फफूंद रोग जो है वो मॉनसून में लग जाता है फसलों में, जिससे फसलें ख़राब हो जाती और सारी मेहनत सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको इसकी समस्या का समाधान बताने के लिए। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो हम जब इंसानों में स्किन की प्रॉब्लम होती है नमी की वजह से, तो जाहिर सी बात है फसलों में भी होगी। यानी फफूंद रोग जो है वो इसी मानसून सीजन में लगते हैं। तो मानसून में नमी या जलभराव या धूप की कमी और घनी फसलें फफूंद जनित रोगों को बढ़ावा दे देती हैं। सो खरीफ की दलहनी तिलहनी अनाज बागवानी फसलों पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। अब जैसे अगर हम आपको बताएं तो अरहर में विल्ट और तना झुलसा, मूंग उड़द में पत्ती धब्बा, एंथ्रेक्नोज, शुष्क जल सड़न, जाली नुमा झुलसा और बाद में चूर्णिल आसिता, मटर बीन सोयाबीन में रतुआ, मूंगफली में पत्ती धब्बा तना सड़न, सूरजमुखी में पत्ती धब्बा और सब्जियों और फलों में कई फफूंद रोग जो है वो बहुत ही आम बात है। सो मक्का और बाजरा में कंडुआ, गन्ने में कंडुआ और लाल सड़न, धान में झोंका या ब्लास्ट, भूरी चित्ती, शीथ ब्लाइट और आभासी कंडुआ जैसे जो रोग हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। सो हर रोग के लक्षण जो हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए किसान का फसल का निरीक्षण करते रहें। सो रोग के जो लक्षण दिखें उसके हम उपाय आपको बता दे रहे हैं जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। सो सही पहचान करेंगे तभी असरदार चूँकि होता है इलाज इसका, ये हम सभी को पता है। अब जैसे पत्तियों में सफ़ेद चूरन पाउडरी मिल्ड्यू हो सकता है जिससे अंगूर गुलाब मटर और कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं इसको नुकसान होता है। सो भूरे काले धब्बे पत्ती धब्बा रोग ये इसके संकेत हो सकते हैं। जो मूंगफली सूरजमुखी में आम प्रॉब्लम है पत्तियों पर लाल भूरे फफोले रतुआ का संकेत मिल जाते हैं। सोयाबीन और बीन्स को नुकसान पहुँचाता है, पत्ती के नीचे रुई जैसे परत से कद्दू वर्गीय सब्जियों और सरसों जो है वो प्रभावित होती है। अब बात आती है कि तना और

जो दर्ज निर्देश है उसके हिसाब से करना होता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात कि भाई रोगी रोधी जो है किस्में वो चुनना होता है, जैव एजेंट अपनाना होता है। सो टमाटर हो, बैगन हो, कपास, पत्तियों का पीला पड़ करके मुरझाना, फ्यूजेरियम विल्ट और पुराने पत्तों पर छल्लेदार धब्बे अर्ली ब्लाइट के लक्षण जो है वो हो सकते हैं। सो रोकथाम के लिए रोग रोधी और प्रमाणित किस्में ही चुनना होता है। स्वस्थ पौध सामग्री का इस्तेमाल करना होता है, संतुलित नाइट्रोजन उर्वरक देना होता है, जैव एजेंट का इस्तेमाल करके बीज, पौधा, नर्सरी मिट्टी इनके उपचार में अनुशंसित विधि से ही करना होता है और बिला वजह के छिड़काव से बचना होता है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो आपको जिसका ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक ज़रूरी बात ये भी है कि भाई रबी की बीजों में 50% जो है वो अनुदान दिया जा रहा है जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको हम बता दें चूँकि रबी सीज़न 2026-27 के लिए फ़िलहाल स्टेट गवर्नमेंट 50% अनुदान पर प्रमाणित बीज अवेलेबल कराने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, जो इसका उद्देश्य है वो है किसानों को कम लागत में अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराना। सो किन फसलों के लिए मिलने वाले हैं ये बीज? ये किसान जो है गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, सरसों समेत कई फसलों के बीजों के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो विभाग ने किसानों से मौजूदा वक्त में जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर आवेदन करने की अपील भी की है। आवेदन की तारीख क्या है? सो इस योजना के तहत तोरिया के लिए 16 अगस्त 2026, दलहन और तिलहन के लिए 10 सितंबर 2026, गेहूं और रबी फसलों के लिए किसान जो है वो 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो कैसे करना है? जी हाँ, सो किसानों को बुकिंग जो है इसकी वो करना है ऑनलाइन बुकिंग में, जो agridarshan.up.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। agridarshan agridarshan agridarshan.up.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाना है और यहीं से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो जो लाभार्थी हैं इनका चयन ई लॉटरी के ज़रिए होगा, यानी ई लॉटरी के बेस पर ही आपका चयन होगा और 50% अनुदान की बात जो है वो आ रही है सामने। रबी के लिए जो बीज मिलने वाले हैं उन पर 50% का जो है वो सब्सिडी की बात बताई जा रही है। सो फिलहाल ये जानकारी आप तक हमने पहुंचा दी है। आई होप कि आप तक ये जानकारी पहुंच गई है और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम की भी होने वाली है। फिलहाल ये जानकारी किसानों के लिए स्पेशली थी। कैसी लगी हमको आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल आप सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा शो अपने आरजे अदनान के साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान। सो चलिए अब बताते हैं कि आखिर इंडिया एआई मिशन क्या है और आखिर इसमें एआई कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे सीख सकता है, ये सब कुछ आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडिया एआई मिशन के तहत जो हमारे यंगस्टर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं इनको फ्री एआई कोर्स करने का मौका दिया जा रहा है। कोर्स जो है वो पूरा करने पर सर्टिफिकेट भी मिलने की बात बताई जा रही है। सो कैसे आवेदन करना है ये एक बड़ा सवाल है। तो हम बता दें फ्यूचर स्किल्स प्राइम या फिर IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। वहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने में जो बेसिक्स डिटेल्स चाहिए होती है नेम एंड ऑल, एंड इसके बाद युवा एआई फॉर ऑल कोर्स चुन करके उसको एनरोल करना है। देन सभी मॉड्यूल पूरे करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्री सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। और ये है जैसा कि मैंने बताया इंडिया एआई मिशन। सो इसमें आपको बेसिक्स जो एआई हैं वो सीखने का मौका मिलेगा। और एआई की जब बात आती है तो सबसे अहम हो जाता है प्रॉम्प्ट देना। जी हाँ, यानी एआई से आप चाहते क्या, उसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बताना पड़ता है जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और जितना बेहतरीन प्रॉम्प्ट होता है उतना अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। सो आप चाहे चैट GPT यूज़ कर रहे हों, क्लॉड यूज़ कर रहे हों, जेमिनाई यूज़ कर रहे हों, मेटा AI यूज़ कर रहे हों, या कोई भी ऐसा AI आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना बेहतरीन देंगे प्रॉम्प्ट उतना बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा। सो AI अगर आप उससे हेल्प ले रहे हैं तो पैरेलल में आप AI से ही सीखते रहिए कि एक अच्छी प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर। इसके लिए आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जिस टॉपिक पे आप सोच रहे हैं उसको डाल करके कह दें कि भाई AI से ही पूछ लें कि इसके लिए स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट क्या हो सकते हैं, और एक ऐसा प्रॉम्प्ट दो जिसमें ये अच्छे से डिफाइन होकर के निकल गया है, तो वो प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। देन वो प्रॉम्प्ट आप यूज़ करते हैं, अलग अलग AI के प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ कर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस स्पेसिफिक रिज़ल्ट की तरफ जाने का मौका मिलेगा जहाँ पे आप चीज़ों को समझना चाह रहे थे और बेहतर करना चाह रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि जब हम प्रॉम्प्ट बेहतर देते हैं तो हमको रिज़ल्ट भी बेहतर मिलते हैं। यानी AI के पास भी उसको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो। तो इसलिए प्रॉम्प्टिंग जानना, उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि हम अब प्रॉम्प्टिंग में अपना काम करेंगे और जिससे बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। सो चलिए हम भी जुड़ते हैं इंडिया AI मिशन से और कहीं ना कहीं सीखते हैं बेसिक्स AI, किस तरह से AI का इस्तेमाल करके हम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर और स्पेसिफिक कर सकते हैं। हम ज़्यादा आसान के चक्कर में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान करते करते हमारी लाइफ में सारे काम चले गए हैं और हम लेटे बैठे भी हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा चलते फिरते रहना और दिमाग लगाते रहना भी ज़रूरी है चीज़ों को चलाने के लिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बेहतर आइडिया नए इनोवेशन के साथ बढ़ने के लिए AI से जुड़ सकते हैं हम। सो फिलहाल आइए आपको ले चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, और ये म्यूज़िकल ब्रेक आ रहा है आप तक फ़िलहाल एक ऐसा सॉन्ग जिसको आपने कई बार अपने स्टेटस पर लगाया है, सो कई बार किसी को डेडिकेट किया है। आइए उसी सॉन्ग को सुनते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुंडा में आपके मॉर्निंग जॉक RJ नान के साथ, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गुंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 9840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
7: हाँ जी, तो फिलहाल आपकी तरफ से आ गया है ऑफ कोर्स मुझे एक कंटेंट। तो क्या कंटेंट लिखा है ये बताते हैं। दरअसल ये कंटेंट भेजा है बहराइच से हमारी प्रीति शुक्ल जी ने, और क्या लिखती हैं, लिखती हैं आप सब्र। लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, जो सब्र करना सीख जाता है वो दुनिया में रहना सीख जाता है, वह इस दुनिया में रहना सीख जाता है। सब्र से बेहतर दूसरा कोई इलाज नहीं और खामोशी से बड़ी कोई दूसरी सज़ा नहीं। लेकिन कभी कभी सब्र बन जाता है असब्र, जिसे लोग टूट जाते हैं। खुद की कब्र ना बन जाए सब्र तब तक अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी बहुतों को सब्र करते करते ताउम्र गुजारनी पड़ती है उम्र। कितनी बड़ी बात कह दी आपने, कितनी सटीक बात कही है आपने। थैंक यू सो मच कि आपने इस तरफ हम सब लोगों का ध्यान खींचा, और ये बहुत अहम बात है आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमारे साथ में और भी कुछ हमारे श्रोतागण जुड़ चुके हैं। धर्मेश शास्त्री त्रिपाठी जी हैं, आपका भी स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। कमल नयन जी, आपका भी स्वागत करते हैं। फरहीन खान हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड सभी लोगों को सुप्रभात बोला है हमारी आशु जी ने। प्रीति जी का भी स्वागत करते हैं बहराइच से। सर जी, वेरी लवली मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम जैसा भी लगा आप बता सकते हैं चैट बॉक्स पर आ करके। फिलहाल मौसम ने जिस तरह घेर लिया, एक बड़ा ही खूबसूरत सा नगमा बतौर खिदमत पेश कर रहे हैं जाते जाते तोहफा। और हाँ, बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा के बाद गोंडा FM के साथ अपने 89.6 FM रेडियो पर।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: राव की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गांव की गूंज। हर दिन अपने जिंदगी को नया ख्वाब दो, चाहे पूरा हो ना हो, आवाज तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ एक शुरुआत तो दो, सिर्फ एक शुरुआत तो दो।
5: क्या बात कही है आपने अंकुर भाई, देखिए ना हम लोगों का ये ख्वाब शहर को गांव से जोड़ने का धीरे धीरे रंग ला रहा है।
6: हाँ शफाली, ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है। अगर शुरुआत अच्छी है, मन में सच्ची लगन है, तो मकसद एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है।
4: तो फिर देर किस बात की, प्यारे श्रोतागण, मैं अंकुर, किरण, शेफाली और गुड्डू के साथ ले चल रहा हूँ आप सबको एक बार फिर शहर के पक्के मकानों से निकालकर गांव की टेढ़ी मेढ़ी डगरिया पर, बौर से लदे आम की बगिया में, गांव की खेत खलिहानों में। आज का सफर आपको झूमने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि अपने गांव वालों के साथ हम सजाएंगे कव्वाली की एक खूबसूरत महफिल सिर्फ आपके लिए।
5: अरे रे रे, गांव तो आ गया। अरे वो देखो, गुड्डू अपने दोस्तों के साथ खड़ा है और कुछ गा रहा है।

0: राम राम गुड्डू भाई, बड़ी शिद्दत से गाया है ये कव्वाली आपने, पर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? सब ठीक है ना?
1: आप सबको राम राम। हमारे गांव में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सैफाली जी, उदासी तो चारों तरफ पसरी है। पुलवामा पर हुए आतंकी हमले से हम सबकी रूह कांप गई है। हमारे कितने जवान सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। हर पल उनकी शहादत याद करके आंखें नम हो रही।
2: शत शत नमन करते हैं हम अपने इन वीर शहीदों को। भारत माँ की रक्षा करते हुए हर वीर ने अपने माँ का कर्ज उतारा है। अपनी भारत माँ की रक्षा करते हुए वतन पर अपनी जिंदगी होम कर गए हमारे ये वीर जवान।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज हम महफूज हैं, अपने घरों में शांति से रह रहे हैं, अपने सपने साकार कर पा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि हमारे ये सैनिक पहाड़ हो या पानी, रेगिस्तान की गर्मी हो या सियाचिन की बर्फीली चोटियां, हर जगह चट्टान की तरह खड़े हैं।
1: जो कालों के काल बने उनको एक पुष्प चढ़ा देना, जो कालों के काल बने उनको एक पुष्प चढ़ा देना, भारत के अमर सपूतों के आगे श्रद्धा से शीश झुका देना, भारत के अमर सपूतों के आगे श्रद्धा से शीश झुका देना। इस दुख की घड़ी में हमारे शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। हमारी गांव की गूंज की ये टीम उनकी इस कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगी। हम सब बराबर ये समझाएंगे कि जिस साहस और ईमानदारी से हमारे ये वीर सैनिक अपना काम कर रहे हैं, अगर समस्त देशवासी भी उसी जज्बे से काम करें तो हम आतंकवाद पर विजय पा सकेंगे और वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
2: देश पर मर मिटने की हमने भी कसम खाई है, अरे

0: क्या जादू है आप लोगों की आवाज में, नस नस रोमांचित हो गई। किरण दीदी, हम लोग तो हमेशा से शांति प्रिय लोग हैं, जियो और जीने दो पर ही हम विश्वास करते हैं। लेकिन कोई हमारी सराफत को हमारी कमजोरी न समझे, अगर जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजाने की क्षमता हम भी रखते हैं। काश ऐसा कोई काम कर जाऊं मैं, काश ऐसा कोई काम कर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर जाऊं मैं।
1: गुड्डू भाई, चांद कादरी की वो कव्वाली सुना दो जिसको सुनकर सबकी आंखें भर आई थीं।

0: दिल को छू लेने वाले शब्द हैं। हर किसी के दिल में देशभक्ति की भावना प्रज्वलित हो गई है। बात करते करते कब हम लोग 400 घरों के इस गांव के पुराने पीपल के पेड़ की छांव के नीचे पहुंच गए पता ही नहीं चला। देखो ना अंकुर, यहाँ तो आजी काकी बुआ दीदी सब मिल गईं।
1: शहर में नहीं है आसान खुद से मिल पाना, बुत कदों में फिर हम क्यों खुदा ढूंढते हैं।
2: बहुत सही बात कही है आपने।
0: किरण दीदी चलिए एक सुंदर सी कव्वाली के साथ सबको

0: राम राम बोले। शफाली, साबरी ब्रदर्स की कव्वाली जो हम अक्सर गाते हैं, चलो वही कव्वाली सुनाते हैं।
1: तस्कीन दिल के वास्ते

0: मन खुशी से भर उठा कव्वाली की धुन से। पता है आपको, कव्वाली सूफियों का भजन कीर्तन है।
1: शफाली, कव्वाली दरअसल सूफी सिलसिले में खुदा की बिल्कुल वैसी ही इबादत है जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा के लिए भजन कीर्तन करते हैं।
2: मैं दीवाना फैलाए खड़ा हाथ था, एक खजाना मिला जो अंदर था मेरे। देखा सारा जहां, ढूंढा हर एक जगह, जो खुदा मिलना था वो था मेरे अंदर। कव्वाली का मकसद अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर अल्लाह और भगवान के साथ एक आध्यात्मिक मिलन करना है। और देखिए ना शेफाली और किरण जी, आपकी कव्वाली ने सबको झूमने के लिए मजबूर कर दिया।
0: हाँ सच में, सब खेतों से आ गए। रमजान चचा भी हैं, तो हरिहर काका भी हैं। आजी और विमला दादी को देखो, अभी आधे घंटे पहले मुंह फुलाकर बैठी थी और अब कव्वाली की धुन में सुध बुध खोकर झूम रही हैं।
1: कव्वाली एक संगीत वाहन है जो भाईचारे को बढ़ाती है। कौमी एकता तो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। तभी तो दिवाली में अली है और रमजान में राम है। इन्हीं भावों को व्यक्त करने वाली एक बहुत ही पुरानी कव्वाली हम आपको सुनाते हैं।

0: हम सब लोग झूम उठे। ये छोटा सा गांव अपने में एक पूरी दुनिया समेटे है। स्नेह भरे लोग हैं, मानवता का प्रकाश है। हमारी कोशिश आपको गांव की मिट्टी से जोड़ने की है। उसका एक कारण यह भी है कि धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे देश की पहचान है, वो आज भी गांवों में बरकरार है। जब हम गांव में होते हैं तब हर बुजुर्ग हमारी आजी और बाबा होता है, हर घर अपना होता है, हम सब एक होते हैं।
1: फिर शहर आकर हमारी सोच इतनी बदल क्यों जाती है? कोई हिंदू होता है तो कोई मुसलमान, कोई सिख होता है तो कोई ईसाई। क्योंकि हम आज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। हम पढ़े लिखे होकर इस वोट की राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं
2: और हमारी इसी ना समझे का फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। हम और हमारे प्यारे जवान भाई इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हम चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो इसी भारत माँ की संतान।

0: भाई आप लोगों ने अपनी कव्वाली से बहुत खूबसूरती से सबको जोड़ने का प्रयत्न किया है, लेकिन हम सफल तभी होंगे जब देश का नागरिक अपने वोट देने के अधिकार का सही उपयोग करेगा। चुनावी मुद्दा इस समय पूरी तरह से गरमाया हुआ है। हर न्यूज चैनल पर इस समय इलेक्शन संबंधी न्यूज ही मिलती है। याद रखें, लालच देकर वोट जो मांगे, भ्रष्टाचार वो करेगा आगे। जो राष्ट्र का उत्थान करे, वोट उसी को डालें। जो राष्ट्र का उत्थान करे, वोट उसी को डालें।
1: हम कई बार सोचते हैं, वोट डालने के चक्कर में पड़कर हम अपनी एक दिन की छुट्टी क्यों वेस्ट करें? घर का कुछ काम कर लें, कहीं घूम आएं। हमारे एक वोट से फर्क क्या पड़ता है? इस तरह मात्र 54-55% वोट ही पड़ते हैं। आप लोग हमारी बात अच्छी तरह से समझें। इस तरह विजयी प्रत्याशी को मात्र 20-25% लोगों ने चुना।
2: आप लोग प्लीज इस चुनावी प्रक्रिया को समझिए। मात्र 20-25% वोट पाकर एक विजयी पार्टी तैयार हो जाती है। फिर जिन लोगों ने वोट देकर इनको विजयी बनाया है, पार्टी अगले 5 साल सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने उनको विजयी बनाया।
1: हाँ शफाली, और हम लोग अगले 5 साल बिना वोट दिए घर पर बैठकर सरकार को, शासन प्रणाली को कोसते रहते हैं। इस बात को जरूर सोचिएगा, अपना वोट ना देकर इन गलत लोगों को हम ही लोग चुनते हैं। आप लोग इस बात को जरूर समझें। अगर हम वाकई में एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं, अपना देश खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो हमें वोट देने जरूर जाना चाहिए। जन जन की है ये पुकार, वोट देना हमारा पहला अधिकार। जन जन की है ये पुकार, वोट देना हमारा पहला अधिकार।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले।
0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

गुड आफ्टरनून एवरीवन, भाई बज चुके हैं 12, आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द और सैटरडे की तरह आपके साथ बैठ चुकी हूँ एक कप चाय लेकर के और दिल से जुड़ी कुछ बातें करने। आज हम सुनेंगे भाई दिल से दिल का हाल। आपको क्या लग रहा है, आज हम बहुत इमोशनल बातें करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, आज तो हम बहुत ही पते की बात करने वाले हैं और दिल से जुड़ी बातें करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सुना होगा आपने ये वर्ड अक्सर कहीं टीवी पे, न्यूज़पेपर पे या फिर किसी रिश्तेदार के मुंह से। उनको हार्ट अटैक आ गया, उनका बीपी हाई रहता है, उनको हार्ट की बीमारी है और न जाने कितनी सारी चीजें जो कि दिल से जुड़ी हुई है। पर क्या आप सच में जानते हैं कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते क्या है? भाई नाम तो बड़ा भयंकर लग रहा है, लेकिन ये होता क्या है ये शायद आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा। आज मैं आपको इसी बारे में सारा कुछ समझाने आई हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में, क्योंकि दोस्तों हेल्थ की बातें कॉम्प्लिकेटेड होनी नहीं चाहिए, स्पेशली जब बात हमारे दिल की हो रही हो, जो दिन रात बिना रुके बिना छुट्टी लिए बस काम करता रहता है। बस आप एक बार अपने दिल की आवाज सुनिए। जी हाँ, कि आपका दिल क्या कह रहा है? हाँ हाँ भाई, वही धक धक धक धक, ये है आपके दिल की धड़कन। अंदाजा लगाइए एवरेज एक इंसान एक दिन में कितनी बार उसका दिल धड़कता होगा। बताऊंगी भाई, मैं भी आपको इसका जवाब दूंगी, अराउंड 1,00,000 बार। एक दिन में 1,00,000 बार ये धड़कता है, और पूरी जिंदगी में अगर आप 70 से 75 साल जीते हैं तो ये दिल अराउंड 2.5 से लेकर के 3 बिलियन बार धड़कता है। सोचिए कितना मेहनती है ये छोटा सा ऑर्गन और इतनी सारी मेहनत जिसका साइज बस आपकी मुट्ठी जितना है। जी हाँ, चाहे बच्चा छोटा हो, बड़ा हो गया हो या ओल्ड एज का इंसान हो, जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा आपका दिल होता है। ये बिना रुके बिना थके ब्लड को पंप करता रहता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, और जब यही दिल यही मेहनती वर्कर थोड़ा सा भी स्ट्रगल करता है तो पूरी बॉडी पर भी इसका असर पहुंचता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते क्या है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक अम्ब्रेला टर्म है। जी हाँ, मतलब एक छाता जिसके नीचे बहुत सारी हार्ट और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड बीमारियां आती हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है। आपने सुना होगा कि किसी किसी के नसों में ब्लॉकेज आ गई या दिल में ब्लॉकेज आ गई, तो वो यही होता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर आता है हार्ट अटैक। जब हार्ट के किसी हिस्से को ब्लड मिलना बंद हो जाए तब इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। और स्ट्रोक, जिसका नाम आप अक्सर सुनते रहते होंगे, स्ट्रोक भी इसी फैमिली का एक हिस्सा है। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है तब हमें स्ट्रोक आ जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, भाई ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप सोचेंगे ये तो बीमारी है, हमें क्या लेना देना है इससे, हम तो भाई हेल्दी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी हेल्दी लोग दिखते हैं, लेकिन ये बीमारी उनको भी हो सकती है। पर दोस्तों यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमारे बीच सबसे ज्यादा है, कि आप दिखते तो हेल्दी हैं लेकिन अंदर ही अंदर कोई और बीमारी चल रही हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दुनिया में नंबर 1 किलर है, यानी कि एक ऐसा किलर जो आपको अंदर ही अंदर खा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और ज्यादातर लोगों की मौत का कारण भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है। मतलब जितनी भी बीमारियों से लोग मरते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ही मरते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इंडिया में, यानी कि हमारे भारत में, ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि हमारे देश में लोग वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में 10 से 15 साल पहले ही हार्ट डिजीज के शिकार हो जाते हैं। मतलब जहां तक एक अमेरिकन 60 से 65 साल में हार्ट अटैक आता है, वहीं हमारे इंडियन को 45 से 50 साल में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सिर्फ हार्ट अटैक तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें कई तरह के कंडीशंस भी आते हैं। पहला, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो भी स्लो हो जाता है और वक्त के साथ कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकता है।
दूसरा है हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी। अरे यही भाई, जो लोग बीपी के, तो आपके घर में मुझे लग रहा है कि हर 10 में से 8 इंसान बीपी का शिकार जरूर होता है। और यही बीपी की अगर हम बात करें तो यही एक साइलेंट किलर भी कहलाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स अक्सर दिखाई नहीं देते लेकिन इसका असर बहुत बड़ा रहता है। और तीसरा है अरिथमिया, जिसमें हार्ट की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, कभी बहुत तेज हो जाती है और कभी बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान का बीपी फ्लक्चुएट होता है। और अगर ये कई दिन तक लगातार चलती रही और इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई तो इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। उसके बाद चौथा है हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करता। चौथा है हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, जितनी बॉडी को जरूरत होती है उससे कम ही ब्लड पंप होता है। और पांचवा है स्ट्रोक, जो कि टेक्निकली ब्रेन से रिलेटेड है लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इसका एक पार्ट है, क्योंकि इसका कनेक्शन ब्लड वेसल से है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बड़ी उम्र के लोगों की प्रॉब्लम है, पर यही सबसे बड़ा मिथ है आजकल लोगों का। देखिए भाई, आजकल 25 से 30 साल के यंग प्रोफेशनल जो कि अपने डेली लाइफ को एक रूटीन से जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस में लंच करते हैं, शाम को आते हैं और अपना खा पी के सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल तो 25 से 30 साल के लोग जो कि बहुत ज़्यादा यंग एज में हैं, वो भी इससे बचे नहीं पाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। भाई देखिए, ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। पहले लोग फिजिकली एक्टिव होते थे, खेत में काम करते थे, पैदल चलते थे, घर का खाना खाते थे, लेकिन अब क्या है, अब सारा दिन डेस्क पर बैठे रहते हैं, लैपटॉप के सामने जंक फूड ऑर्डर कर लेते हैं, स्ट्रेस लेके सोते हैं और स्ट्रेस के साथ ही उठते हैं। एक्सरसाइज का नाम सुनते भाई ऐसा भागते हैं कि एक्सरसाइज क्या ही हमारा दुश्मन आ गया है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ भाई, ये जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट डिजीज थी तो आपका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऐसा हो रखा हो तो 100% है कि आपको हो जाएगा, बस आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जेनेटिक लोडेड गन की तरह होती है और लाइफस्टाइल वो ट्रिगर है जो डिसाइड करता है कि वो गन चलेगी भी या फिर नहीं। मतलब अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आप अपने जेनेटिक रिस्क को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए आज हम ये विषय लेकर आए हैं, वो है अवेयरनेस के लिए हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। क्योंकि जितना ज्यादा हम इस टॉपिक को समझेंगे उतनी ही जल्दी हम अपनी और अपनों की जान बचा पाएंगे। कई बार सिर्फ इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से ही दोस्तों लोग अपने सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जा पाते और चीजें बिगड़ जाती हैं और बात जान पर बन जाती है। तो ये एपिसोड सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर करें और साथ ही साथ उनको भी बैठा के ये चीज सुनाएं। अगर आप नहीं शेयर कर पाते हैं तो याद कर लीजिए इसको, जो भी चीज मैं बताऊंगी, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर काम आ सकती है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊंगी मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज शनिवार के दिन हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भैया रिस्क फैक्टर की, कि क्या क्या रिस्क

0: है, उसकी भाषा क्या है, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या ये थोड़ा रोमांटिक बनने वाली है। दिल की बात यानी सिम्टम्स को कैसे समझना है उसको हम बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आके आपसे फिर से बात कर देंगे।
1: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

वापस से स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके शो में स्वास्थ्य संगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होता है और कौन से फैक्टर इसे ट्रिगर करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने दिल के संकेत को पहचान।

करना, यानी कि जो वो आपसे बात कर रहा है उसको समझना। क्योंकि दोस्तों हमारा बॉडी कभी भी सीधा सीधा SOS नहीं बोलता, जी हाँ, वो छोटे छोटे सिग्नल देता है हमें और हमारा काम है उन्हें समझना, उन्हें इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम की। दोस्तों फिल्मों में हम देखते हैं ना कि हार्ट अटैक का मतलब अचानक से चेस्ट पेन हुआ, इंसान गिरा और फिर खत्म। लेकिन रियलिटी में हार्ट अटैक अक्सर इतना ड्रामेटिक होता नहीं है, वो तो बस फिल्मी दुनिया में होता है। कई बार ये धीरे धीरे शुरू होता है हल्का सा डिस्कम्फर्ट के साथ और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि शायद एसिडिटी होगी या थकान से हो रहा होगा। और सबसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, जैसे कोई चीज चेस्ट पर रख दी गई हो, या जकड़न सी महसूस हो रही हो, या प्रेशर सा फील हो रहा हो। ये पेन कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आता है और इस तरह इसका आना जाना बना रहता है। दोस्तों इसे ऑन ऑफ पेन समझकर इग्नोर बिल्कुल ना करें। दूसरा सिम्टम है अपर बॉडी में डिस्कम्फर्ट, मतलब कि ये पेन सिर्फ चेस्ट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि लेफ्ट आर्म में भी और दोनों आर्म्स में भी, बैक पे, नेक पे, जॉ यानी आपके जबड़े पे और आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। बहुत सारे लोग जॉ पेन को दांत की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं या बैक पेन को नॉर्मल बॉडी एक समझकर छोड़ देते हैं, जबकि ये हार्ट से रिलेटेड होता है। तीसरा सिम्टम है सांस फूलना, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सिम्टम कभी चेस्ट पेन के साथ आता है और कभी अकेला भी हो सकता है। अगर आपको नॉर्मल एक्टिविटीज करते वक्त सांस फूलने लगती है जो पहले नहीं होती थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है। चौथा सिम्टम है कोल्ड स्वेट, मतलब अचानक ठंडा पसीना आ जाना बिना किसी वजह के, स्पेशली अगर मौसम गर्म है तब भी आपको ठंडा पसीना आ रहा है। पांचवा सिम्टम है चक्कर आना, जी हाँ, अगर हल्का फुल्का चक्कर आता है तो वो भी ये एक बहुत बड़ा साइन है हार्ट अटैक का। कई लोग हार्ट अटैक के वक्त उल्टी जैसी फीलिंग भी करते हैं, जी हाँ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि अब उल्टी होने वाली है या उन्हें लगता है कि वो बेहोश हो जाएंगे। ऐसी चीज अगर आपको महसूस होती है तो ये भी एक सिम्टम है हार्ट डिजीज का। छठा पॉइंट है एक्सट्रीम थकान। अब कभी कभी हम सोचते हैं अरे यार हमारे तो नेचर में ही है थकान, हम तो दिन भर थके रहते हैं, लेकिन भाई अगर आपको एक्सट्रीम थकान हो रही है तो ये भी एक सिम्टम है जो बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के भी आपको महसूस हो रही है। दोस्तों ये सिम्टम स्पेशली वुमेन में ज्यादा आते हैं और उनमें ज्यादा कॉमन होते हैं और यही वजह है कि वुमेन में हार्ट अटैक अक्सर मिस हो जाता है क्योंकि लोग इसे सिर्फ थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ तक आपको एक बहुत जरूरी पॉइंट आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो ये है कि विमेन और मेन में हार्ट अटैक के सिम्टम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए आदमियों में ज्यादा कॉमन होता है टिपिकल चेस्ट पेन, जबकि विमेन में सिम्टम ज्यादा सटल होते हैं, जी हाँ, जैसे थोड़ी थकान होगी, सांस फूलेगी, जॉ पेन होगा, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसीलिए विमेन को और भी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि कई बार ये सिम्टम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिए जाते हैं, इसीलिए इस बार आपको इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं स्ट्रोक के सिम्टम की, जी हाँ, क्योंकि ये भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक पार्ट होता है। स्ट्रोक को पहचानने के लिए सिंपल फॉर्मूला है जो पूरी दुनिया में यूज होता है, वो है फास्ट, FAST। एफ मतलब होता है फेस, अगर चेहरे का एक साइड ड्रॉप कर रहा है या मुस्कुराने में एसिमेट्री दिख रही है तो ये एक सिम्टम है। उसके बाद ए फॉर आर्म्स, जी हाँ, अगर दोनों हाथ ऊपर उठाने में आपको दर्द हो रहा है या हाथ ऐसा लग रहा है कि कुछ हाथ से गिरता हुआ जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका खून रुक ही नहीं रहा है और वीकनेस फील हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम है। उसके बाद है एस मतलब स्पीच, अगर बोलने में दिक्कत हो रही है, वर्ड्स थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, यानी आप थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ आप हल्का सा तुतला रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड्स क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। उसके बाद टी यानी कि फास्ट का आखिरी वर्ड टी, जिसका मतलब है टाइम। अगर ये सब सिम्टम दिखे तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें,
तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल कीजिए। दोस्तों, स्ट्रोक में हर मिनट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उतना ही कम ब्रेन डैमेज होगा। तो देखा दोस्तों, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा सिम्टम देती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको बीपी की समस्या है तो आपको थोड़ा सा और सावधान रहना चाहिए। इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर ना करें। और कई घरों में मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को ये सिम्टम होते हैं या बीपी इशू होता है तो वो सोचते हैं अरे बीपी लो हो रहा है, चलो नींबू पानी पी लो, अभी नॉर्मल हो जाएगा। हाई हो रहा है तो थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर लो, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये इतनी हल्की चीज नहीं है जितने हमने हल्के में इसको ले रखा है। और कहीं ना कहीं यही हमारा इग्नोर कर देना, चीजों को ढील देना ही इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बढ़ने का और उससे होने वाली मौत के बढ़ने का कारण बन सकता है। जी हाँ, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो कह रही थी यही एक इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा। अब भैया दिल का बात समझ ली, दिल क्या कहना चाहता है वो समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि दिल का ख्याल कैसे रखना है, यानी कि प्रिवेंशन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए अपना शो स्वास्थ्य संगिनी। लेते हैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

0: दोस्तों वापस से स्वागत है आपका आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी के आखिरी सेगमेंट में। भाई देखिए समय बहुत जल्दी से भाग रहा है और हमने अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस तो किया ही नहीं, वो है कि आखिर इसका प्रिवेंशन क्या है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, वो है प्रिवेंशन। क्योंकि दोस्तों जैसा कि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जब बात दिल की हो तो ये लाइन और भी ज्यादा सच हो जाती है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी डाइट में बदलाव लेना। अगर आपकी डाइट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपको सिम्टम आ रहा है तो आपकी डाइट जरूर बदलनी चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप अचानक से अपनी पूरी डाइट को पलट के रख दीजिए या फेवरेट चीजों को खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए छोटे छोटे चेंजेस से शुरू करिए और आप अपनी डाइट को बदल सकते हैं। जैसे फ्राइड फूड की जगह ग्रिल्ड या रोस्टेड ऑप्शन ट्राई करिए। नमक का यूज थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंकि ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। अपनी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन शामिल करिए। दोस्तों घर का सिंपल दाल चावल सब्जी जो कि हमारी दादी नानी बनाती थी वो अक्सर सबसे हेल्दी ऑप्शन हुआ करता था। बस उसमें ऑयल और नमक की मात्रा का ख्याल रखिए। हेल्दी फैट्स की बात करें तो भाई घी और ऑयल को बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस मात्रा को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और नट्स जैसे वॉलनट और आलमंड्स ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि इसमें अच्छे फैट्स पाए जाते हैं। और प्रोसेस्ड फूड जैसे पैक्ड स्नैक, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक, इन्हें जितना कम कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस रोज 30 मिनट आपको वॉक पे जाना है या आप साइकिलिंग कर सकते हैं, या अगर आपको थिरकना पसंद है ना यानी कि डांस करना तो आप 30 मिनट डांस भी कर सकते हैं। अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं है तो घर में ही थोड़ी बहुत वर्कआउट कर सकते हैं जस्ट कि आपका बॉडी एक्टिव रहे। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, थोड़ी दूर तक पैदल चलिए। दोस्तों कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, परफेक्शन बिल्कुल नहीं। जी हाँ रोज थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे हफ्ते में एक दिन इंटेंस वर्कआउट से ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। जी हाँ कई लोग वर्कआउट के नाम पे सोचते हैं हफ्ते में संडे है, संडे के दिन खाली रहेंगे उसी दिन एक्सरसाइज कर लेंगे, हो गया हमारे हफ्ते भर का कोटा पूरा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही गलत तरीका है। आपको डेली अपनी लाइफ से 30 मिनट निकालना है और वर्कआउट जरूर करना है। अब आप इसमें चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, डांस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं। तीसरी चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओहो भाई मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप सोच रहे होंगे अरे स्ट्रेस ही तो मैनेज करना है, लेकिन मैं बता दूं ये एक ऐसी चीज है जहां पे हम सभी फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों हम स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसे मैनेज तो कर ही सकते हैं ना। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, इससे आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालिए, और अगर जरूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल से बात करिए, उसमें आपको जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप अपने दोस्तों से डायरेक्ट कनेक्टेड है। होता है ना कभी अपने दोस्तों से हम बात करते अरे भाई शाम को मिलते चाय पीते हैं, इतनी पक्की दोस्ती होती है आपकी, बिल्कुल इसी तरीके से मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं या कोई ट्रॉमा लगता है तो हम बेहोश हो जाते हैं या हमारे सीने में दर्द होने लग जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का है भाई। एक को कोई नुकसान होता है ना तो दूसरा तुरंत इफेक्ट हो जाता है। चौथी चीज है स्मोकिंग और तंबाकू से दूर रहना। दोस्तों अगर आप स्मोक करते हैं तो ये जान लीजिए कि इसे छोड़ने में सिर्फ चौबीस घंटे बाद ही आपके हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है और रिस्क कम होना भी शुरू होने लगता है, और एक साल के अंदर ये रिस्क काफी हद तक नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों अगर आप या आपका कोई अपना स्मोकिंग करता है तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए कि सिगरेट की मात्रा धीरे धीरे कम करने लग जाइए। जैसे आप मात्रा कम करेंगे एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिगरेट छोड़ देंगे। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है रेगुलर हेल्थ चेकअप। दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर ये सारी चीजें हो रही हैं और आपका ये बढ़ा रहता है या फ्लक्चुएट होता है, तो आपको रेगुलर चेकअप की जरूरत है। चाहे आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हो, चाहे आपको कोई पेन ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम भी ना हो रही हो, फिर भी आपको इसको रेगुलर चेक करवाना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कई प्रॉब्लम बिना सिम्टम के भी आ जाती हैं और डेवलप होने लगती हैं। 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों, हमारा दिल हमारी जिंदगी भर का सबसे वफादार साथी है। ये कभी कंप्लेन आपसे बिल्कुल भी नहीं करता, ना ही आपसे छुट्टी मांगता है, बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो अब वक्त है कि हम इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। छोटे छोटे चेंजेस जैसे हेल्दी खाना, थोड़ा मूवमेंट, स्ट्रेस कम करना, स्मोकिंग से दूर रहना, रेगुलर हेल्थ चेकअप, ये सब मिलकर हमारे दिल को सालों साल तक हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए स्वास्थ्य संगिनी बस यहीं तक। इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो आप में हार्ट से संबंधी प्रॉब्लम कम हो सकती है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक जिम्मेदार घर के सदस्य हैं, तो अपना और अपने घर के बच्चों में भी इसका खास ख्याल रखें। लेती हूँ आपसे विदा इसी थॉट के साथ। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान उससे भी ज्यादा रखिए।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना। क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
0: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
1: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती हैं, ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
0: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
0: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
1: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है, जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज़्यादा होती है, किशोरियों में ज़्यादा होती है, कारण बच्चों में ज़्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की ज़रूरत उनके शरीर को ज़्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशंस अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है।
1: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
0: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
1: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
0: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
1: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि ज़रूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
0: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
1: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हों, CHCs हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जिसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
0: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
1: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है और ये ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का अब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है।
0: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
1: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
0: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो हैं वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जाँच कराना।
0: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी ओर से?
1: देखिए, एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीज़ें आप, इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
1: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहाँ जाकर आप ये जाँच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
0: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
1: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो जाएगी,
0: बच्चे
1: भी काले हो जाएंगे, शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं, ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफ़ी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं, ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप को कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवा किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर अनीमिया हो, मॉडरेट अनीमिया हो, तो ज़रूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
0: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि, या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
1: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती हैं ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत ज़रूरत हो तो, मैंने बताया ना, ब्लड के विकल्प की वजह से। लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है, वो उन्हें दिया जाता है।
0: तो क्या वो हर CSC PSC पर उपलब्ध?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो, तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो, या ANMs हो, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को, या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

सत्रीकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज समता और साथ में आज हमारे नहीं हैं आरजे अंशिका, क्योंकि उन्हें किसी जरूरी काम से आज जाना पड़ रहा बाहर। तो भाई आज आधी अधूरी जोड़ी हमारे आपके समक्ष बैठी हुई है, यानी आज मैं ही केवल आई हूँ, आज समता आज आपके साथ है। और कैसा है हाल भाई आज आपका, क्योंकि आज तो बहुत बढ़िया वाली बारिश भी हो रही है। एंड बारिश की बात की जाए कि गोंडा में मुझे लग रहा है कि आज पहली बार इतनी अच्छी वाली बारिश हुई है। वैसे तो नाइट में होती है, बट आज जो है वो खुल के बारिश हुई है। कहने का सेंस मेरा ये है कि आज अच्छी वाली बारिश हुई है। तो भाई आज मना लो अपने अपनों को जो रूठे हैं, और कहीं डेटिंग शेटिंग पे चले जाओ, क्योंकि मूड बड़ा अच्छा है और मूड के साथ साथ आज माहौल बड़ा अच्छा है। कहते हैं ना कि जब मूड माहौल और वेदर अच्छा होना तो कहीं ना कहीं घूमने का मन करता ही है। तो इस माहौल में आप कहाँ जा रहे हैं जरूर से चैट बॉक्स में आइए और बताइए, क्योंकि आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली। एंड प्यारे से वेदर में हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप सभी को इस प्यारे से मौसम में हैप्पी मॉनसून एंड प्यार भरा शुभ दोपहरिया। आप सभी जितने भी लिसनर्स हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो हमें चैट बॉक्स में हैं, जो हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आपकी आज समता आ गई है बिल्कुल टाइम पे, यानी 1:31 पे हमने आपसे आपके घर में दस्तक दे दी है, मतलब नॉक नॉक कर दिया है। एंड बस बारी आपकी है कि आप कब आ रहे हैं। तो आज है सैटरडे, आप सभी को पता है कि सैटरडे के दिन हम करते हैं धमाल मस्ती और बहुत सारा आप सभी को सॉन्ग्स की भरमार थोड़ी ज़्यादा होती है आज के दिन क्या होता है कि सॉन्ग्स ज़्यादा चलते हैं और हम अपनी बातों को थोड़ा सा कम वॉल्यूम में रखते हैं। आज के दिन कोई कंटेंट नहीं, कोई ज्ञान की बातें नहीं, आज केवल होता है मस्ती की पाठशाला, यानी कि मस्ती और मस्ती। तो आज सॉन्ग्स होंगे, लव राशिफल होगा एंड लव पोयम होगी, यानी आज का पूरा सीजन जो होने वाला है वो मॉनसून लव होने वाला है। साथ ही साथ में राशिफल तो हम आपको बताएंगे एंड आपका फेवरेट सेगमेंट जो होता है वो होता है गेम का। तो आज गेम की सेगमेंट भी थोड़ी ज़्यादा देर चलेगी, क्योंकि आज सॉन्ग्स के साथ साथ हम कुछ भी और एक नया कुछ प्रैक्टिस पे हैं, कुछ एक नई चीज़ लेकर के आए हैं।

तो वो सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आइए सुना देती हूँ आज की पोयम। तो भाई अंशिका है नहीं, क्योंकि अंशिका हमेशा से हमारे पोयम के पहले जो एक बहुत ही प्यारी सी पोयम बोलती है, एक दो लाइन की शायरी बोलती है कि पता नहीं क्या बना के बोलती है वो, मतलब मैं वाकई में अंशिका को मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो होती है ना तो हमारी पोयम को और अच्छे से, जैसे कहते हैं ना किसी नई चीज़ का हम वेलकम करते हैं, तो वो हर एक नई चीज़ का वेलकम करती है। बट कोई नहीं, कल आ जाएगी और फिर हम कंटिन्यू करेंगे उसकी पोयम के साथ में। तो आइए हम लव शायरी आपको सुनाने जा रहे हैं। लव शायरी आज की ये है कि ओके, तेरी मुस्कान तेरी दुनिया, तेरी मुस्कान मेरी दुनिया की सबसे हसीन सुबह है, तेरा साथ मेरी हर दुआ की वजह है, तुझसे ही शुरू होती है मेरी हर खुशी, तुझसे ही शुरू होती है मुझसे हर खुशी, और तुझ पर ही खत्म होती है हर चाहत मेरी, और तुझ पर ही खत्म होती है हर चाहत मेरी। मोहब्बत कोई लफ्ज नहीं जो कह दिया जाए, मोहब्बत कोई लफ्ज नहीं जो कह दिया जाए, ये वो एहसास है जो हर धड़कन में बस जाए, ये वो एहसास है जो हर धड़कन में बस जाए। तुम साथ हो तो हर सफर आसान लगता है, तुम साथ हो तो हर सफर आसान लगता है, वरना ये दिल हर पल अधूरा सा लगता है। तेरी यादों का दिया हर रात जलता है, तेरी यादों का दिया हर रात जलता है, मेरा दिल बस तेरा ही नाम पढ़ता है। दूरी चाहे जितनी भी हो हमारे बीच, दूरी चाहे जितनी भी हो हमारे बीच, सच्चा प्यार हर फासले से लड़ता है, सच्चा प्यार हर फासले से डरता है। तुम्हें चाहना मेरी आदत नहीं मेरी इबादत है, तुम्हें चाहना मेरी आदत नहीं मेरी इबादत है, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रहे सलामत हमारा ये प्यार उम्र भर, रहे सलामत हमारा ये प्यार उम्र भर, बस यही दिल की सबसे खूबसूरत चाहत है। तुम मिले तो जिंदगी को नया रंग मिल गया, तुम मिले तो जिंदगी को नया रंग मिल गया, सूखे हुए दिल को फिर से उमंग मिल गया। अब हर दुआ में बस तुम्हारा ही नाम है, अब हर दुआ में बस तुम्हारा ही नाम है, लगता है जैसे मुझे मेरा पूरा जहान मिल गया, लगता है ऐसे जैसे मुझे पूरा जहान मिल गया। ये पोयम जो एक कविता थी, ये जो लव के ऊपर पूरा डिपेंड थी, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक बात निकल के आती है, दो तीन बातें निकल के आती हैं जो मैं आपको बताऊं। कि सबसे पहले तो बात ये कि अगर हम किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी को अपना जहान बना रहे हैं, किसी के लिए हमने अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी और वो इंसान आपको नहीं समझ रहा है। कई रील्स में आपने देखा होगा, कई अब तो बहुत सारा फेसबुक इंस्टाग्राम पे आता रहता है, तो उसमें एक कोट कल मैंने पढ़ा कि जो इंसान आपसे बिना बात किए हुए रह सकता है, जो इंसान आपसे बिना बात किए हुए रह सकता है, तो वो आपके बिना भी रह सकता है। कहते हैं अगर आपको प्यार लंबे टाइम तक या मतलब हमेशा से जीवन भर नहीं संभालना है, तो उस प्यार की शुरुआत ही ना करिए, क्योंकि प्यार में टूटा हुआ दिल और प्यार में मुरझाया हुआ दिल, जो एक बार टूट जाता है ना, फिर उसके बाद में चाहे आप कुछ भी कर लो वो नहीं जुड़ सकता है। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा समवन स्पेशल है, प्यार है, तो उसे जाओ, उसे अपनाओ, उसे दिल की बात करो, क्योंकि कहा जाता है कि एक दोस्त एक प्यार से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं होता है। तो उस प्यार को अपनाओ, समझो उसकी फीलिंग्स, उसके प्यार को। एंड रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी आज हमारे प्यार के ऊपर ही है, वो ये है कि जब हम प्यार किसी से करते हैं तो उसे अपनाने की भी ताकत रखें। ये नहीं कि आज है और कल नहीं, आज है तो दो महीने नहीं,
आज बात कर ली तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये प्यार नहीं, ये छल है, ये धोखा है। और हर धोखे की सजा ईश्वर वाले के पास बहुत अच्छी वाली है। तो किसी से अगर प्यार करें तो उसे अपनाएं, उसे समय दें, उसके साथ समय बिताएं, वरना उस प्यार की शुरुआत ही ना करें। तो ये है आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कि धोखा जिंदगी में कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो प्यार में हो या फिर जिंदगी में हो। तो चलिए इसी प्यार के सिलसिले को शुरू करते हैं, और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि मैंने आज चैट बॉक्स में मैंने आज प्लेलिस्ट में लगा के रखा है। एक्चुअली ये गाना मुझे बहुत पसंद है, यानी आई थिंक सो कि आपको भी ये गाना बहुत पसंद आएगा। आइए सुनते हैं और उसके बाद आते हैं आज के OTT सीरियल्स को लेकर के। लेकिन आज गानों का सिलसिला कुछ चलेगा ज्यादा, क्योंकि आज है मौसम इतना प्यारा प्यारा, बस हम यूं गए यूं आए।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंबू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज के OTT सीरियल्स के बारे में कुछ जानकारी देते हैं आपको। ऐसा मतलब मेरा मानना है कि हम लोग जो 90s के किड्स हैं, मतलब आज के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मोबाइल की ओर ज़्यादा उनका रुझान होता है। आई थिंक सो, मतलब मुझे लगता है ऐसा। और हम लोग अपने घरों में देख भी रहे हैं ना कि ज़्यादातर रुझान जो होता है वो मोबाइल में ज़्यादा होता है और इंडोर गेम्स में ज़्यादा होता है, आउटडोर को वो लोग भूल चुके हैं। ठीक वैसे ही TV अब कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, स्क्रीन जो है वो लुप्त होती जा रही है क्योंकि सब कुछ मोबाइल में ही मिल जाता है जिसका नाम है OTT। तो सीरियल्स आप मोबाइल में देख सकते हैं या तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग तो सीरियल्स देखते थे TV में, और जो पुराने वाले बहुत ही लोकप्रिय जो सीरियल्स हुआ करते थे जिसमें रामायण, महाभारत, शक्तिमान, चाणक्य, देख भाई देख, और हम 5 एंड श्रीमान श्रीमती जी, जो मुझे याद आते जा रहे हैं मैं बता रही हूँ आपको। एंड क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, बालिका बधू, CID, हॉरर में आहट आता था, तारा, ऑफिस एंड व्यमकेश बख्शी, मालगुड़ी रेंज जो हिंदी में प्रसारित होता था, एंड साथ साथ में सारा भाई उसके आगे कुछ और भी था भाई, सारा भाई, हाँ ये होते थे। तो ये जो सीरियल्स होते थे ना, देखो मैंने कितने ज़्यादा गिन के बता दिए ना आपको, तो ये जो सीरियल्स होते थे ना, ये सीरियल्स हम लोग वेट करते थे। कुछ संडे को आते थे और कुछ मंडे टू फ्राइडे आते थे, सैटरडे को मूवीज़ आती थी। तो कुछ ऐसे सीरियल्स होते थे जो कि हम लोग मतलब वेट करते थे कि TV के सामने बैठ जाना है खाना लेकर के, एंड संडे तो पूरा हम लोगों का TV में ही जाता था। अब धीरे धीरे जो हुआ वो मोबाइल की ओर रुझान होने लगा, एंड फिर उसमें रिचार्जेस होने लगे कि हम इस पे ये देखेंगे, नेटफ्लिक्स आने लगा, ये सब। अब OTT सीरियल्स जो कि लोकप्रिय हिंदी वाले जो हैं, जिसको आप हमेशा से अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं, जो कि है पंचायत, मिर्ज़ापुर, द फैमिली मैन, आश्रम, स्कैम 1992, गुल्लक है, महारानी है, सोशल, OPS, फर्जी, रॉकेट बॉकेट्स एंड कोटा फैक्ट्री, और क्रिमिनल जस्टिक्स, ये जो है ना ये थोड़े पसंदीदा वाले हैं। तो इसको आप लोग हमेशा से अपने मोबाइल में मतलब देख सकते हैं। एंड कुछ OTT सीरियल्स जो कि आज मैं आपको नए बताने जा रही हूँ वो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। अगर आप OTT सीरियल्स को देखना चाहते हैं तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, जो कि है मटका किंग। 1960 के दशक के मुंबई के मटका कारोबार पर ये आधारित क्राइम ड्रामा है जिसको आप देख सकते हैं। मटका किंग नाम है उसका, ठीक है। तो मुंबई के एक मटका कारोबार पर ये कितने वेबसाइट है जो कि मूवी वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा है कोहरा Season 2, जो कि बहुत सारा थ्रिलर है, क्राइम है और रहस्य भरा हुआ इसमें बहुत सारा है, तो आप इसको देख सकते हैं, कोहरा Season 2। और उसके बाद में है रक्तांजल सीजन 3 जो कि पूर्वांचल की गैंगवार पर आधारित है एक्शन क्राइम एंड सीरीज। इस सीरीज में एक्शन है भरमार और क्राइम है, ड्रामा है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीतम एंड पेंड्रो जो कि क्राइम, साइबर क्राइम्स और कॉमेडी का दिलचस्प मिक्सचर है इसमें, जिसमें आपको देखने को मिलेगा साइबर क्राइम्स और कॉमेडी को कैसे मिक्स किया गया है। तो प्रीतम एंड पेंड्रो आप इसको अपने मोबाइल पे या फिर स्क्रीन पे आप दे सकते हैं। एंड इसके बाद आता है चिरैया जो कि इमोशनल ड्रामा है, जिसे 2026 की चर्चित नई सीरीज में गिना जा रहा है। तो ये अभी का है जो कि अभी बिल्कुल नया नया है चिरैया, थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा है। जो लोग इमोशनल ड्रामा के बहुत प्रेमी होते हैं आप उसको इसको देख सकते हैं। एंड उसके बाद है तस्करी जो कि तस्करी और अपराध पर आधारित ये थ्रिलर है, इसको भी आप देख सकते हैं। एंड जो एक फैमिली ड्रामा होता है माँ का सम, तो माँ का सम जो कि एक नई OTT सीरियल्स आई हुई हैं जो कि पारिवारिक और इमोशनल स्टोरी है, जिसे हम देख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट है ग्लोरी जो स्पोर्ट्स एंड ड्रामा पर आधारित है। ये नई सीरीज है ग्लोरी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स के जो बहुत प्रिय होते हैं, जो गेम्स को लेकर के बहुत प्रिय होते हैं, मैचेस को लेकर के बहुत प्रिय होते हैं, वो आप ग्लोरी देख सकते हैं अपने OTT सीरियल्स में, और इसमें आपको भरपूर जानकारी भी मिल सकती है। तो ये कुछ सीरियल्स थे जो कि नए आए हुए हैं, और हम इसको और भी मतलब बहुत सारे सीरियल्स होते हैं भाई, कितनी बड़ी सूची होती है, कितनी बड़ी लिस्ट होती है, जो कि एक बार में सब बताना मुझे लग रहा है कि एक मतलब वो हो जाएगा। एंड अगर किसी को फैमिली और कॉमेडी ड्रामा देखना है तो वो दोपहरिया इज़ द बेस्ट, वो देख सकता है। होम शांति एक मूवी आई थी, ओम शांति, और ये फैमिली कॉमेडी है होम शांति, आप इसको फैमिली के साथ बैठ करके इसको देख सकते हैं। जो लोग कुछ रोमांस और ड्रामा एक साथ देखना चाहते हैं वो भी मेड इन हेवन इस नाम की एक सीरीज आई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये थे कुछ OTT सीरियल्स जिसको हम घर बैठे देख सकते हैं, मतलब आप चाहें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्रेक की ओर, क्योंकि आज सैटरडे, आप सभी को पता है कि आज बातें कम और गाने ज़्यादा होंगे। तो आइए सुना देते हैं आपको कुछ गाने, एंड इसके बाद मैं आऊँगी सीधे सीधे चैट बॉक्स पर, इसलिए सभी की एंट्री हो जाए ताकि मैं नाम से आप सभी के दिए हुए मैसेजेस को रीड करूँगी। तो अभी तक दी नहीं है जिसने दस्तक, वो आ जाए फटाफट, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम सभी के नाम के साथ में एंट्री करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं प्रोग्राम के नए सेगमेंट की ओर, जो कि हमारा होता है आज के दिन लव राशिफल। लेकिन लव राशिफल के पहले मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगी चैट बॉक्स में और सभी के नाम के साथ में सभी के मैसेजेस को रीड करूंगी। एंड मैं वो भी करने से पहले एक काम करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपका जो गेम सेक्शन वाला जो टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला जो वर्ड मैं आपको देने जा रही हूँ, मतलब मैं वर्ड दूँ कि मैं एक क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वर्ड देती हूँ आज, क्योंकि लास्ट सैटरडे पे शायद अंशिका ने लिया था और मैं नहीं थी यहाँ पे। और आज के दिन मैं उसने वर्ड टू वर्ड खेला था, मतलब एक अक्षर दिया था, जैसे पानी, मोहब्बत, दरिया, नदी, ये। तो आज मैं आपको जो वर्ड देने जा रही हूँ वो आपका फर्स्ट वर्ड इज थोड़ा इंतज़ार। तो फर्स्ट वर्ड आपका है ह, यानी कि एच। आपका पहला वर्ड है ह। ह वर्ड से जल्दी से गाना लिखिए और आपको पता ही है कि गेम आपका शुरू हो चुका है। तो पहले आओ पहले पाओ वाला है, यानी कि जिसका सबसे पहले गाना आ गया हम उसी के गाने को प्ले करेंगे। तो आपका गेम शुरू हो गया है, तो आज गेम भी साथ साथ चलेगा और लव राशि फल भी साथ साथ चलेगा। तो सबसे पहले जो हमारे टाइम से आ गए थे वो 1:35 पर आरोही शर्मा। शुभ दोपहरिया दोनों मैम को जी, शुभ दोपहरिया आपको भी। एंड धर्मेश त्रिपाठी जी आ गए हैं, वेलकम आपका। तबिश खान, गुड आफ्टरनून आपको भी। एंड कमल नयन जी, गुड आफ्टरनून। सबलू जी, शुभ दोपहरिया। चाहत शर्मा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हाँ जी बिल्कुल। एंड तजवर खान, गुड आफ्टरनून आपको भी, गुड आफ्टरनून। सबलू जी लिख रहे हैं हुनूर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। 100% वाली बात बोली है। मोनिका मन्ना डे, गुड आफ्टरनून। कमल नयन जी, गुड आफ्टरनून। और उसके बाद में मोहम्मद कलीम जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। एंड सुंदर से लिख रहे हैं कि अति बहुत सुंदर, मतलब सॉन्ग को लिख रहे हैं। तबिश खान जी, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। और सबलू जी ने लिखा है दान करने से रुपया जाता है लक्ष्मी नहीं, घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है समय नहीं, झूठ छिपाने से झूठ छिपता है सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। एग्जैक्टली यस। अनुष्का जी, गुड आफ्टरनून। आशु जी, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहला ह मैंने दिया था, तो सबसे पहला जो वर्ड आया है वो सबलू जी ने लिखा है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। तो ये गाना यहाँ से शुरू नहीं है सबलू जी, तो हम आपका नेक्स्ट चांस में आपका सॉन्ग लेंगे, ठीक है। अनुष्का जी ने लिखा है, हंस हंस के सनम मुझसे बात करते हैं, ये ऐसे वाला ह से शुरू होना था, ठीक है। तो ये आपने जो लिखा है ना, हाँ मैंने भी प्यार किया है, ये मिड लाइन लिखी है आपने, तो सबसे पहला उस हिसाब से अनुष्का जी ने लिखा है। तो अनुष्का जी के सॉन्ग को हम लेंगे एंड उसके बाद आपको पता है सबसे पहले लव राशि फल की ओर आएंगे। ठीक है, तो हम लव राशि फल को भी सुनाएंगे और हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है वो भी सुनाऊंगी एंड साथ ही साथ लव राशि फल। तो पहली राशि आप सभी को पता है कि पहली राशि होती है मेष राशि वालों के लिए। आज का लव सीजन क्या बता रहा है वो आपको करना पड़ेगा, बस 2 सेकंड का इंतजार, क्योंकि हाँ जी, तो मेष राशि वालों के लिए है आज का दिन, यानी कि देखते हैं क्या है। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी, पहले की अनबन दूर होगी और पार्टनर के साथ शाम को घूमने का मौका मिल सकता है। मेष राशि वालों, यानी आप आज कहीं आप डेटिंग शेटिंग पे जाने वाले हैं। उसके बाद आता है वृषभ राशि वालों के लिए, आपसी तालमेल और रिश्ता मजबूत होगा, घर परिवार से जुड़ी कोई पुरानी भावुक बात सामने आ सकती है, इसीलिए उसे धैर्य से सुलझाएं। मिथुन राशि वालों के लिए है आज का लव राशि फल, साथी के लिए उपहार लेने का अच्छा दिन है, बातचीत में संयम बरतें ताकि किसी गलतफहमी से बचा जा सके। नेक्स्ट आता है कर्क राशि वालों के लिए है कि स्वभाव में आकर्षण रहेगा, घर वालों को आपकी बात पसंद आएगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। तो भाई ये था 4 राशियों का लव राशि फल। अब हम सीधे चलते हैं आज के सॉन्ग की ओर, जो कि अनुष्का ने लिखा था। अनुष्का जी के सॉन्ग को हम लेंगे एंड धर्मेंद्र जी गुड आफ्टरनून एंड शुभ दोपहरिया। ओके, तो अनुष्का के सॉन्ग के साथ चलेंगे और साथ ही साथ चैट बॉक्स में हम अक्षर भी देंगे, तो आप सबकी नजर होनी चाहिए चैट बॉक्स की ओर। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को जो कि अनुष्का ने भेजा है।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

ताजगी और स्नेह बढ़ेगा। करीबियों को सरप्राइज देने का उत्तम दिन है आज, अच्छा वाला दिन है। जो आपके बहुत करीब हैं दिल के, उन्हें आज आप सरप्राइज कर सकते हैं। और कन्या राशि वालों के लिए है कि जल्दीबाजी से बचें और शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। धैर्य रखने से रिश्ते में मजबूती आएगी। कन्या राशि वालों के लिए है कि जल्दबाजी से बचें, शब्दों का चयन सही से करें। हाँ जी, हाँ जी। और धैर्य रखने से रिश्ते वाकई में बहुत मजबूत तो बनते ही हैं। तुला राशि वालों के लिए है कि प्रेम के मामलों में दिन बेहद अनुकूल है। खुला संवाद स्थापित होगा और आपसी सामंजस्य में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि कार्यक्षेत्र की सकारात्मकता का असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। पार्टनर के साथ भरोसेमंद और मजबूत रिश्ता रहने वाला है। तो ये थी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल। तो कमल नयन ने भेजा था, राहों में उनसे मुलाकात हो गई। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और उसके बाद चैट बॉक्स में मैं आपको फिर से दूंगी वर्ड। तो आप बने रहें हमारे साथ गेम में भी और राशिफल में भी।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो चलिए भाई, प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और तीन राशियां बची हैं जो कि है धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो धनु राशि के लिए आज बता देते हैं कि कैसा है उनका आज का लव दिन, यानी कि आज का लव दिन। और उसके पहले बता दूं कि मैंने प्रीति जी के सॉन्ग को लगा दिया है, साची कहूं तेरे, बहुत ही प्यारा सा गाना है। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं धनु राशि। निजी और पारिवारिक रिश्तों के लिए आज का दिन भाग्यशाली है। प्रियजन के साथ सुखमय समय बिताने के लिए आज आपको अवसर मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए कि अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी के साथ शांति से बैठकर बात करें, पुरानी बातें उठाने से बचें। मकर राशि वालों के लिए है कि आज थोड़ा सा संभल कर रहना है। कुंभ राशि वालों के लिए कि जीवन साथी या पार्टनर से बातचीत करते समय संयम बरतें, विवादों से बचने के लिए शांत रहना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट राशि है, यानी कि लास्ट राशि है मीन। अपनों के साथ रिश्ते बेहतर रहेंगे, बातचीत में मिठास घुलेगी और आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो भाई ये था आज का राशिफल, यानी लव राशिफल। तो आइए अब जल्दी से सुन लेते हैं प्रीति जी के सॉन्ग को, क्योंकि जो टाइम है ना वो भागा जा रहा है। और फटाफट जिनकी भी अभी फरमाइश, यानी अभी जिन्होंने भी अभी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो जल्दी से आ जाएं, और जिनके सॉन्ग्स नहीं हुए हैं प्ले वो फटाफट कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट भेजते हैं, मैं नेक्स्ट वर्ड भेजती हूँ, जल्दी से सॉन्ग लिख करके भेजें।

मैंने आपको बताई है कि लास्ट 10 मिनट्स में मैं चाहती हूँ कि जितनों के भी सॉन्ग्स आ गए हैं उनके थोड़े थोड़े सॉन्ग भले, लेकिन मैं सभी की प्ले करके जाऊँ, मतलब अभी जिनके सॉन्ग्स आए हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दो सॉन्ग्स और हैं तो मुझे अभी हाफ हाफ गाने चलाने पड़ेंगे। तो इसके बाद जो गाना है वो मैं लूँगी आशु जी का।

तो भाई जिनके सॉन्ग्स नहीं हुए हैं वो अभी अ वाले जो कि वर्ड भेजा गया था अ, तो उसके अंतर्गत जिसके भी सॉन्ग्स आए हमने उनके सॉन्ग प्ले कर दिए हैं एंड एंड एंड अब हमें दे इजाजत, और जिनके सॉन्ग्स बच गए हैं वो मंडे जरूर से आए चैट बॉक्स में और अपना सॉन्ग लिख करके भेजें, हम जरूर आपके सॉन्ग को पूरा करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चला है हमारे जाने का। हम मंडे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश्करी नैमी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: हाँ जी दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं, यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, लेकर के आपका फोन ही फरमाइशी कार्यक्रम, जिसका नाम है कॉलर ट्यून गोंडा। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। आज दिन है शनिवार, शनिवार यानी कि वीकेंड का वार। और आज के दिन जो प्रोग्राम होता है वो होता है कॉल इन। आपसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, कुछ वादे हैं जो निभा रहे हैं, तो उन वादों में आज एक बहुत खास दिन है मेरे लिए स्पेशली। और मैं वो डिस्क्लोज करूं उससे पहले मैं आज की पहली कॉल लेना चाहूंगी। देखते हैं हमारे साथ में कौन बना हुआ है। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार।
3: राधे राधे मैम।
2: राधे राधे, ओहो पंडित जी, पंडित जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
3: बिल्कुल ठीक है मैम जी।
2: क्या हाल है आपके उधर का, मौसम कैसा है?
3: मौसम जो आपके उधर का वही हमारे इधर का।
2: ओके, मतलब हम दोनों ही गोंडा से बिलोंग करते हैं।
3: जी
2: क्या सुनना चाहेंगे?
3: जाने दिल में कब से है तू,
2: जाने दिल में कब से है तू,
3: जब से मैं हूँ तब से है तू,
2: जब से मैं हूँ तब से है तू। ये किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
3: ज्योति सिंह।
2: ओके, आज कुछ खास है?
3: आज उसका बर्थडे है।
2: ओके, तो भाई आपकी तरफ से क्यों बर्थडे सॉन्ग जाएगा, हमारी तरफ से भी एक दोस्ती वाला नगमा उनके लिए जरूर जाएगा। और उससे पहले भाई, हमारी प्यारी लिसनर, जो कि बहुत ही प्यारी वाकई लिसनर हैं और काफ़ी दिनों से फिलहाल मुझे लगता है व्यस्तता में हैं, लेकिन आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, यानी उनका जन्मदिन है, और उनके लिए ढेर सारी दुआएँ, ढेर सारे तोहफे मिले उन्हें और बहुत सारा प्यार मिले। उससे पहले उनका स्वास्थ्य उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम बना रहे, और आपकी पसंद का ये गाना हम पहुँचाते हैं हम सभी की प्यारी ज्योति सिंह जी के लिए। बने रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वाला डिमांड। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं इस गाने की ओर, लेकिन उससे पहले भाई बता दें एक बात और कि भाई, अगर हमारे पंडित जी ने ये सॉन्ग का डेडिकेशन कर दिया है ज्योति सिंह जी को, यानी जिनका बर्थडे है, बर्थडे गर्ल को, तो फिर हम किस खेत की मतलब बिथुआ है ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये गाना हम पंडित जी की ओर से ज्योति सिंह जी को पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं अपनी प्यारी सी प्ले लिस्ट से एक बहुत ही प्यारा सा, बेहतरीन सा, बहुत ही उम्दा सा दोस्ती वाला नगमा उन तक पहुँचाने के लिए।

क्या बात है भाई, हमें वो दिन याद आ रहे हैं जब हम सभी साथ हुआ करते थे और हम सभी बहुत सारी गॉसिपिंग किया करते थे चैट बॉक्स पे, और दोस्ती के नाम पैगामे तोहफा हम जरूर पहुंचाएंगे ज्योति सिंह जी तक, और मुझे उम्मीद है वो हमें सुन रही होंगी क्योंकि कई सारे लोग हमें रेडियो गार्डन और रेडियो सेट से भी सुनते हैं, चैट बॉक्स में आना पसंद नहीं करते। फिलहाल गाना बहुत ही प्यारा है, सच बताऊं तो मुझे उन दिनों की याद दिला रहा है। थैंक यू सो मच पंडित जी।

और काफी सारी कॉल्स आ रही है लगातार, आप लोग का प्यार बना रहे, वेट करते रहिए। और ये पंडित जी की ओर से हमारी ज्योति सिंह जी को भाई बर्थडे गर्ल आ गई है, मोस्ट वेलकम और बहुत सारी खुशियां आपको मुबारक हो। फिलहाल ये गाना पंडित जी की ओर से आपके लिए बर्थडे गर्ल।

0: और हाँ जी, मेरे पास में काफी सारे कॉलर्स की कॉल आ रही है, कॉल और लेते हैं, फिर आते हैं हम अपनी पसंद का गाना, अपनी प्यारी लिसनर, अपनी प्यारी दिल के सबसे करीब रहने वाली दोस्त यानी ज्योति सिंह जी को पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो
1: प्रणाम भाई जी।
0: हाँ हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, कैसे हैं भाई साहब?
1: बहुत इंतजार करावा थी बहनी।
0: तो कहाँ करी
1: भैया? फोन मिलाए जन अपना, फोन मिलाए जन वो हमारे बच्चा हमारे फोन उठाए लेन करो।
0: ए भैया, हम फोन तो उठाए ले, लेकिन गनवा तनी भर रुकी जाए बिचवा में ही, तब तो हम आपका जोड़ ले। अगर हम मान लो फोन उठाए तो फोन उठावत रही जावे, फिर गनवा के सुनियो के सुनाई, तो तनी सबर कर लिया करो, एक आध दिन ऐसा चल जात है, आप जानत हो। कहाँ हाल है, कहाँ चला गई कमल नैन जी? हेलो।
1: अरे तो ऐसा बता दियो कि हम इतना गदगद हो गए कि कहाँ बताए।
0: कौन बात नहीं, तनी अब गनो बताए दो, कहाँ सुना चाहत हो?
1: फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू।
0: क्या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप ये सॉन्ग?
1: नहीं मैम, कोई आईया नहीं क्या डेडिकेट कर।
0: झूठ ना बोलो, भौजाई घर बाहर कह दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टेक केयर। चलिए फिर चलते हैं भाई, फूल मांगेंगे, बहार मांगेंगे, सब सारा का सारा श्रृंगार मांगेंगे और कमल नयन जी से उधार मांगेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी पसंद का गाना अपनी ज्योति सिंह जी तक पहुंचाते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका, और आते हैं उसके बाद में कमल नयन जी के सॉन्ग के साथ में।

भाई यकीन मानिए ये गाना हमने केवल और केवल अपनी प्यारी और सबसे लाडली बहन यानी कि ज्योति जी के लिए ही हमेशा से सुनना पसंद किया। जब ये गाना प्ले होता है मैं इन्हीं को याद करती हूँ। इसके अलावा एक हमारे लाडले हैं उनको भी याद करते हैं। खैर अभी ये हमसे दो के दोनों ही दूर हैं लेकिन दिल के बेहद करीब हैं और जब भी याद करते हैं तो ये ज़रूर प्रकट होते हैं, जैसे हमारे प्रमुख जी आ गए लुधियाना से। वैसे आप सभी ने कुछ ना कुछ खास जगह बनाई हमारे दिल में और सभी के लिए कुछ ना कुछ खास होता है मेरे पास में। हर किसी का एक स्पेसिफिक प्लेस है और अलग अलग है, कोई भी सेम टू सेम नहीं है। और भगवान की बनाई हुई हर एक अलंकृति हर एक कलाकृति में यही तो खास बात है कि सभी दिखते एक जैसे हैं लेकिन होते एक दूसरे से अलग हैं। एंजॉय करिए है।

0: क्या बात है भाई, मजा आ गया।
1: थोड़े से ना छूटेगा ये दोस्ताना, दोस्ताना।
0: भाई कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं, आप कितने भी गम में हो, कितना भी मतलब परेशान हो, और फोन जैसे उठा नहीं उधर से बात की बजाय ऐसे वाले रिप्लाईज आते हैं। और हम दोस्त, हमारे जितने भी दोस्त हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है, उसके बाद कमल जी आपकी डिमांड आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। हेलो हेलो हेलो, कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी अपना नाम बताएं। हेलो, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। और अभी बढ़ते हैं हम अपने कमलनाथ जी के सॉन्ग की ओर, और एक बार फिर से आपको बहुत सारी खुशियां मुबारक हो, और दुआओं की तरह हमेशा आप आबाद रहें, जहां भी रहें जिंदाबाद रहें। चलते हैं कमलनाथ जी आपके इस डिमांड की ओर, और नेक्स्ट टाइम अगर आपने बोला ना कि कोई है नहीं ना, पक्का मैं बता रही हूँ कि भौजाई से डांट जरूर खिलवाऊंगी। एंजॉय करते हैं।

0: हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम, राकेश वर्मा दुकानदार मंदिर से।
0: जी सर, क्या सुनना चाहेंगे?
1: हमें आज गाना सुना लीजिए, अगर आसमान तक मेरे हाथ से जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते।
0: बस अगर आपका आसमान तक हाथ जाता तो हमारा घर ही वहाँ शिफ्ट कर देते। काहे के लिए चांद तारे वहाँ से तोड़ रहे हैं भाई? भगवान ने बनाया हुआ है, वहीं रहने दीजिए। हम इंसानों ने घर वर बनाया तो वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।

0: हमारे कमल जी का कहना, भाई हमारे ओके से बाहर है चीजें, लेकिन आपको पता है हमारे घर में भैंस है, तो भाई इसलिए हमने आपसे कहा था कि आप हमें गोबर के उपले पहुंचा दीजिए, हम भौरी लगाएंगे, भौरी खाएंगे। हमारी जिंदगी भौरी से शुरू होती है, भौरी पे ही खत्म हो जाती है, इससे आगे मैं कोई दुनिया है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में कुछ भी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर। हेलो,
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
1: पहचानिए आपके दुश्मन।
0: अच्छा, हमारे दुश्मनों में तो अब क्या ही बोले, एक ही नाम आता है।
1: क्या नाम है बताइए,
0: वो हम खुद ही हैं, हम खुद के ही दोस्त हैं और खुद ही के दुश्मन भी हैं।
1: नहीं, इतनी बार कॉल किए हैं, एक भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं आप।
0: आज शनिवार होता है सर, और शनिवार में ऐसे ही मतलब होता है, जब गाने खत्म होते तो ही मैं ले सकती हूँ, गाने के बीच में तो मैं किसी की कॉल नहीं ले सकती, क्योंकि फोन ही फरमाइशी तो, कार्यक्रम है, और आप ऑन एयर होते, आपने लास्ट टाइम भी यही बोला था, इस टाइम भी आप यही बोल रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं?
1: हेलो
0: हेलो। हाँ देखिए, एक तो हमारे फोन महोदय को बिल्कुल पसंद नहीं आए, ऑटो रिसीव कर दिया इसने दूसरा कॉल, आप समझ लीजिए बाकी।
1: तो वही तो कह रहे हैं कि दुश्मनी आप अदा कर रहे हैं।
0: नहीं, हम नहीं अदा कर रहे, नहीं तो फोन की बात है, उसको नहीं पसंद है आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा उसे।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ अब बताएं क्या सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा है, क्या सुनना चाहेंगे? बहुत व्यस्त हैं, और आप जैसे ही बहुत सारे श्रोता पीछे से कॉल लगा रहे हैं लगातार, क्या सुनना चाहेंगे प्लीज बताएं।
1: सुनना चाहेंगे, जब तू पल्लू लहराने लगी, लहरा के घटा तब छाने लगी, परवाना का गाना है।
0: घटा ऐसे छाती है सच में
1: जी, और स्पेशली डेडिकेट है
0: किसको?
1: आरजे प्यारे प्यारे मेरे सुषमन जी को, आकांक्षा जी को।
0: थैंक गॉड कि मैं पल्लू लेती ही नहीं, इसीलिए मैं जींस टॉप पहनती हूँ। शुक्रिया
1: आप।
0: टेक केयर। चलते हैं भाई, सलाउद्दीन जी ने भी अपनी फरमाइश पहुंचा दी। उससे पहले हम अपने दुखरनाज से सुनने वाले लिस्नर यानी अपने पड़ोसी के डिमांड को कंप्लीट करते हैं, वर्मा जी की।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते मैम, राधे राधे, कैसे हैं आप?
0: राधे राधे, बहुत व्यस्त हूँ, अस्त व्यस्त दोनों हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा किधर जाऊँ। हाँ, क्या सुनना चाहेंगे उससे पहले अपना नाम बताएं।
1: अरे अरविंद, अरविंद बोल रहे हैं मैं
0: जी। क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैम आज गाना सुना दीजिए, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में।
0: ओके।

0: जी हाँ दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ। हेलो, नमस्ते, अपना शुभ नाम बताएं।
1: बबीता
0: जी। बबीता जी, क्या सुनना चाहेंगी?
1: क्या मौसम आया है?
0: क्या मौसम आया है बताइए, क्या मौसम आया है?
1: मौसम आया है बहुत अच्छा है।
0: क्या लाया है मौसम?
1: बारिश।
0: ओहो, बारिश के साथ। हेलो, सुकून। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। और इसके अलावा कुछ खाने पीने को भी लाया या ऐसे ही छोड़ा है सब कुछ?
1: खाने के लिए लाया
0: है। हद है, मतलब आपको खुद ही पकाना पड़ेगा हमारी तरह। क्या बताएं, हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलें, सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं। जी जी जी, चलिए तो आपकी डिमांड को आप तक पहुंचाते हैं कुछ ही क्षणों में। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, थैंक यू। तो चलते हैं भाई हम अपने सलाउद्दीन जी की डिमांड की ओर। वैसे पता नहीं कि मुझे सलाउद्दीन जी के नाम के साथ में इतिहास के एक बहुत महान इतिहासकार याद आ रहे हैं, लेकिन हम नाम में जोड़ेंगे नहीं, वरना सच में कहेंगे यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं अरविंद जी के सॉन्ग के साथ, फिर होंगे माई बबीता जी, और फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन जुड़े।

0: गई हैं और पल्लू नीचे गिरा और भीग गया क्योंकि बारिश का मौसम था। और कोई बात नहीं, नहीं देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ कौन है। हेलो
1: जी मैम, नमस्कार, मनी शर्मा बोल रहा
0: हूँ। जी मनी जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बहुत आवाज आ रही है।
1: हम तो अयोध्या से बोल रहे हैं फिलहाल के लिए।
0: जी क्या सुनना चाहेंगे, जल्दी बताएं।
1: जी अजूल सॉन्ग सुनवा दीजिए।
0: अजूल, ओके, टेक केयर सर। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये नेक्स्ट डिमांड हमारे पास में अरविंद मौर्या जी की, जो हमें सुनते हैं मनकापुर से।

0: भाई जाते जाते जो आशीर्वाद दिया ना पंडित जी, बहुत सही दिया है। सदा खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, पर कभी कभी इधर को आते रहो। मजा आ गया पढ़ के मुझे। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, देखते हैं कौन है। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, इरशाद जी क्या सुनना चाहेंगे?
1: सतरंगी रे मन रंगी रे।
0: ओके, थैंक यू।

0: भाई, ये गाना था हमारे अरविंद जी की ओर से, बड़ी प्यारी सी डिमांड थी और बहुत सारे लिसनर हमारे साथ में चैट बॉक्स में बने हुए हैं। गुफ्तगु जारी है, लेकिन इससे पहले अब हमारी प्यारी प्रीमा यानी कि हमारी बबीता जी की बारी है। चलिए प्ले कर देते हैं इनकी डिमांड का ये प्यारा सा सॉन्ग। जी हाँ, शो चल रहा है 3 से 4 के सफर में, मैं आपके होस्ट चंदो सारजी आकांक्षा और नेक्स्ट कॉलर की कॉल भी ले ही लेंगे। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपने नाम को जल्दी से बताएं और अपनी डिमांड को भी उससे जल्दी बताएं।
1: नमस्ते मैम, मैं अनुष्का बोल रही
0: हूँ। जी जी जी, अनुष्का जी, क्या सुनना चाहेंगी?
1: के बरस।
0: हैं?
1: थम के बरस।
0: अब थमा थमा के खाए बरसाने से, हम तो चाहते हैं कि एकदम दमदार बरसे, बे रुके बरसे, एकदम बौछार कर दे चारों तरफ और सब कुछ गीला गीला हो जाए सूखने के लिए हमें।
1: थमके बरसे का तो अच्छा लगेगा।
0: अच्छा, थमके बरसे का तो अच्छा लगेगा,
1: बरस के निकल जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा।
0: हाँ ये भी है। अच्छा, थम थम के बरसे लेकिन बरसता रहे।
1: हाँ,
0: क्या बात है भाई, मजा आ गया। थैंक यू।

नहीं नहीं भाई, अरविंद जी ने हमें मैसेज किया कि बाढ़ आ जाएगा फिर कौन संभालेगा गुंडा वालों को। भाई आपको निकासी के लिए कुछ जो नदियां सूखी पड़ी हैं उसमें उफान आने तक वहां पर पानी को ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि मैंने अभी कल ही देखा है और काफी मतलब दया भी आ रही थी उस हालात को देख करके। सरयू नदी, हमारे घाघरी नदी, उसमें अब जाके थोड़ा बहुत पानी है और सरयू तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है सूख ही गया है। और बीच से एक हिरन इतनी तेज रफ्तार में गुजरा है कल रोड से कि मैं क्या ही बताऊं। इंसानों से इतना डर गए हैं पशु पक्षी हमारे, और उनके घर में हम घुस रहे हैं ना कि वो हमारे घर में, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। हम जंगलों को काट रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं आ रहे हैं।

और एक बात और इन्होंने कही है कि अगर हम लोग मतलब बाढ़ में डूबने लगेंगे तो फिर यही गाना मतलब दोहराएंगे एक दूसरे से, हमारी अटेरिया पे आजा रे सवेरिया, क्योंकि नीचे पानी भर जाए है तो बस इसी वजह से सब अपनी अपनी अटारी पे चढ़ेंगे और एक दूसरे से हाल चाल पूछेंगे। क्या इमेजिनेशन है, मजा आ गया। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन लगातार आप सभी के कॉल्स भी आ रहे हैं प्यारे प्यारे श्रोतागण, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन अब बढ़ते हैं मनी जी के डिमांड की ओर, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके इरशाद जी की, और फिर देखते हैं नेक्स्ट डिमांड मेरे पास में किसकी है। लेकिन उससे पहले मनी जी का सॉन्ग उन तक पहुंचा देते हैं।

0: जी हाँ, और मनी जी की ओर से ये सॉन्ग डेडिकेट हमारी सन्नो शुक्ला जी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार कॉल आ रही है तो एक कॉल और हम लेना चाहेंगे, उसके बाद प्रबल जी की बातों तक आएंगे। हेलो
1: हेलो मैम,

हालात, विचार और सब कुछ इनकी बहनें ही हैं भाई, जो झेल रहे इन सबको बहनें ही कहलाएंगी। क्यों, आप बताएंगी हमारी ये चंगू मंगू जी की जोड़ी। उससे पहले हम पहुंचाते हैं इरशाद जी के सॉन्ग को आप सभी तक। 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय करें आपके अपने फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉल ट्यून गोंडा को। और आज का दिन है शनिवार और शनिवार में काफी क्राउडी होता है आपका फोन, मुझे पता है आप सभी लगातार कॉल कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर अनुष्का जी, जिन्होंने कहा है बरसों लेकिन थम थम के बरसों, जाना कहीं नहीं यहीं रहना, थोड़ा विश्राम करो फिर बरसों, फिर विश्राम करो फिर बरसों, इस तरह से बरसों बरसों बरसों।

0: जी हाँ दोस्तों, आप इरशाद जी की डिमांड को एंजॉय करें, देखते हैं हमारे साथ में कौन है। हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: अमित कुमार
0: जी। अमित जी क्या सुनना चाहेंगे? ओल्ड हेलो
1: हेलो
0: ओल्ड वाला या नया वाला?
1: नया वाला।
0: ओके टेक केयर, थैंक यू। हेलो हेलो
2: नमस्कार
0: हैं?
2: नमस्कार बबुनी या कंचा बबुनी।
0: हाँ भाई साहब, आप कैसन बाड़े?
2: आये बड़ा बढ़िया बानी, अपन सुनाई बड़ा बढ़िया प्रोग्राम लगा रहुआ, मन करता झूमही के।
0: हमका मालूम बात तुमनी के मना एकदम से बौखली आई बा, लेकिन अब हम इससे ज्यादा कुछ ना कह सकत बानी, हेले यही हम छुपाए जाई ज्यादा बेहतर बा। का लागत है?
2: बड़ बढ़िया बा, अपन कही।
0: हम आपन ना कहब, आप अपन कहीं का सुना चाहत बानी आप?
2: हमार बुढ़िया के एगो डिमांड बा कि एगो गाना सुना दी, अभी तो हम जवान है, अभी तो मैला जवाब है।
0: अच्छा, हमका लग रहा है कि आपका हमका गाना सुनावे चाहिए। मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया।
2: अब अपने के खुशी बा जौन गाना सुना दी।
0: हम तो यह सुनाएंगे, कहे कि आपकी बुढ़िया सुनना चाहती है, लेकिन मुझे मालूम है पूरी तरह से जवान है और आप भी जवान है, लेकिन हम आपको यही गाना सुनाएंगे, मैं का करूँ राम मुझे। बाकी आप समझदार, थैंक यू, टेक केयर, ख्याल रखिए, बाय बाय। तो भाई ये कौन थे, इसको भी हम डिस्क्लोज करेंगे आप सभी से, लेकिन इससे पहले अनुष्का जी का ये प्यारा सा नगमा, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ अलका याग्निक जी की, और वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट मोस्ट पॉपुलर लव सॉन्ग ऑफ मॉनसून, एंजॉय करिए।

प्रमुख जी आप परेशान ना हुई, उनका नाम जो है वो मैं अभी डिस्क्लोज करूंगी उनके सॉन्ग पे के आने तक। तब तक वो चाहते थे कि जिस तरह से वो पेश आए तो उन्होंने अपने मतलब कलाओं को भी खेरा, वो उनकी एक स्किल थी तो उसमें हमने दखलअंदाजी नहीं की। लेकिन आप सभी को ज़रूर पता चलेगा कि आखिर में ये महोदय थे कौन जिनको हम सुनाने वाले हैं। मैं का करूँ राम मुझे, हाँ हाँ, बाकी आप समझदार, एंजॉय करिए।

0: और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे पास में किसकी ओर से आई हुई है? ये आई हुई है सुनील कुशवाहा जी की ओर से, और लगातार कॉल्स भी आ रही है, तो एक कॉल मेरा मन करे मैं पिक कर लेती हूँ। ओहो, ये क्या बात है भाई, हमारा फोन आजकल कॉल को ऑटो रिसीव करने लगा है। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। थोड़ा करीब, जी जी थोड़ा तेज बोले, थोड़ा करीब आके बोले, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो, बहुत बिजी हूँ, अपना नाम बताएं, अपनी डिमांड बताएं।
1: गहरा हुआ
0: लेकिन नाम बता दीजिए। गहरा हुआ जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर। चलते हैं भाई दूसरी वाली डिमांड की तरफ, और ये डिमांड है हमारे सुनील कुशवाहा जी की, और इन्होंने अपना नाम तो बता दिया था लेकिन फिर कह रहे थे कि बहते बादल से पूछो, उड़ती नदिया से पूछो, और ना जाने किस किस से पूछो, जबकि हमको पता है इनका नाम है सुनील कुशवाहा। जो हमें सुनते हैं एमपी मैहर से।

0: माय डियर लिसनर, अगर किसी की बात हो जाए तो आप अपनी कॉल्स को प्लीज ड्रॉप कर दिया करें, क्योंकि मैं कट नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर से मुझे कॉल्स आने लगती है, मतलब एक मैं कट नहीं करती हूँ और दूसरी कॉल आने लगती है, तो अच्छा नहीं लगता मैं ऐसे कॉल कट कर दूँ। आपके लिए गलत मैसेज जाएगा कि मैं जानबूझ के कॉल कट कर रही हूँ। तो अगर किसी की कॉल लग गई, उसकी बात हो जाए, तो प्लीज़ आप अपना कॉल ड्रॉप कर दिया करें। फिलहाल देखते हैं हमारे साथ में कौन जुड़ा, काफ़ी देर से कॉल आ रही है। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार,
0: अपना नाम बताएं सर।
1: मैं राहुल पांडे बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी क्या सुनना चाहेंगे राहुल जी?
1: धुरंधर मूवी का सुना दीजिए मैम, दिल पे जख्म खाते हैं जो सॉन्ग है।
0: ओके थैंक यू, टेक केयर। चलते हैं फिर वापस से सुनील जी की डिमांड की ओर।

0: हाँ जी दोस्तों, और अब हम लेंगे नेक्स्ट डिमांड, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ में कॉलर। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं सर।
1: जी अनिल।
0: जी अनिल जी, कहाँ से सुन रहे हैं आप हमें?
1: गोंडा से ही।
0: क्या सुनेंगे सर?
1: बलमा पिक्चर का टाइटल सॉन्ग।
0: ओके, ओ बलमा।
1: जी, ऋषि कपूर वाली।
0: ऋषि कपूर जी का। ओके, थैंक यू सर। चलते हैं अब अमित कुमार जी के सॉन्ग की डिमांड की ओर। तू चीज बड़ी है, आहा आहा।

0: हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। काफी देर से बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। हेलो,
1: राम राम राधे राधे।
0: राम राम राधे राधे, क्या सुनना चाहते हैं आज देवी जी?
1: आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा।
0: ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।

0: हाँ जी, और अमित जी की डिमांड के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट कॉलर की कॉल लेंगे। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: जी हम गुलफ्ता सिद्दीकी बोल रहे हैं संडीला से मैम।
0: ओह माय गॉड, गुलफ्ता जी क्या सुनना चाहेंगी?
1: जी जीत मूवी का तू धरती पे चाहे जहां भी रहे।
0: ओके, अपनी बारी का इंतजार करती रहिए। थैंक यू
1: जी। थैंक यू
0: जी, टेक केयर। हेलो हेलो हेलो हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, हेलो हेलो हेलो हेलो
2: हेलो हेलो, जय माता दी।
0: जय माता दी, कहिए क्या सुनना चाहते हैं हमारे प्यारे कुमार टेलर साहब जी।
2: बुला दूं तेरा प्यार दिल से, दिन आके दी
0: हो। ओके, टेक केयर, थैंक यू। और अब बढ़ते हैं उस गाने की ओर जिसकी डिमांड की गई थी। बता देते हैं किसने की थी इस गाने की डिमांड की गई थी, हमारे प्यारे सबलू सावन जी की ओर से, उनकी बेगम साहिबा के लिए। तो चलिए भाई, डिमांड तो इन्होंने की थी कुछ और, लेकिन हमने पहुंचाया इन तक कुछ और हमारी प्यारी नीना जी, हसीना जी, रवीना जी, करीना जी और उन सभी बहनों के लिए गाना, क्योंकि हमें पता है नेहा जी को ये गाना काफ़ी पसंद है और बड़ा ही सूटेड सॉन्ग लगा मुझे, सिचुएशनल। तो जो हमारे प्यारे बुजुर्ग साहब आए थे वो थे हमारे प्यारे सामरी बल्लम जी, यानी हमारे सबलू सावन जी। प्रमुख जी, आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है, अब एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

0: हेलो हाँ जी
1: नमस्ते
0: नमस्ते, क्या सुनेंगी?
1: अरे क्या सुनेंगे, गाना और क्या?
0: कौन सा?
1: आपका नंबर नहीं लग रहा था।
0: क्या बताएं, बहुत ज्यादा बिजी रहता आज के दिन, हम भी परेशान हो जाते हैं, क्या बताएं। हमें लगता है ट्रैफिक जाम मतलब रोड से उठ के हमारे फोन पे आ जाती है। क्या सुनना चाहेंगे?
1: हफ्ते में दो बार किया करो ना।
0: अरे बाप रे, हफ्ते में अगर दो बार करेंगे तो दो दिन ये हमको ट्रैफिक झेलना पड़ेगा, कैसे झेलेंगे? एक दिन की शिकायत तो दूर नहीं कर पाते, दूसरे दिन की कैसे करेंगे? बताएं क्या सुनना चाहेंगे?
1: लोग आपसे मिलना चाहते हैं तो ये तो करना।
0: हाय घूंघट की आड़ से दिलबर का मुझे ये गाना याद आ रहा है। खैर आप बताएं क्या सुनना चाहेंगे प्लीज?
1: यही जो आपने बोला।
0: ओके थैंक यू सो मच। अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: रेनू तिवारी
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए।
1: नमस्ते
0: नमस्ते। पीछे से बहुत सारी कॉल आ रही है लेकिन माफ करिएगा, हम सारी कॉल एक टाइम पे तो नहीं ले सकते हैं और वक्त केवल 15 मिनट शेष बचा है, तो मैं अभी डिमांड्स को कंप्लीट करना चाहूंगी और कॉल को साइड में रखती हूँ, माफ करिएगा। आप सभी से मैं माजरा चाहूंगी।

शुक्रिया दोस्तों। तो ये थे हमारे सबली सावन जी की डिमांड, और काफी प्यारी सी डिमांड हमने उन तक पहुंचाई है। और अब बारी है हमारे नेक्स्ट डिमांडर के सॉन्ग की। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अगर हम वाकई में, यकीन मानिए आप लोग, सैटरडे के दिन अगर मैं कॉल लूँ ना, तो केवल एक घंटा मेरा कॉल में ही निकल जाए। इतनी ढेर सारी कॉल आती है आप लोग के प्यार के लिए, आप लोग के सपोर्ट के लिए। तहे दिल से बहुत बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, जो कि डिमांड है हमारे समरीन जी के। फिर आएंगे राहुल जी की डिमांड लेके दिल्ली वाले, और फिर अनिल जी की डिमांड होगी, फिर होंगी देवी प्रसाद जी, गुलफशा जी होंगी हमारी, कुमार टेलर साहब होंगे, फिर रेनू जी आपकी डिमांड होगी, जिनकी कॉल मैं नहीं ले पा रही हूँ। समझिए मेरे पास केवल 10 से 12 मिनट ही हैं, तो मैं अब सॉन्ग प्ले करूंगी, माफ करिएगा दोस्तों। आप मंडे को अपनी डिमांड जरूर रखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी की डिमांड कंप्लीट कर पाऊं। उससे पहले मोस्टेस्ट फीलिंगफुल सॉन्ग ऑफ

है दोस्तों, इस गाने का आनंद उठाते रहिए जो कि समरीन जी की डिमांड है। और इसी के साथ में हम चलते चैट बॉक्स की ओर, क्योंकि वक्त हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। और अगर मैं अपने चैट बॉक्स वासियों से नाइंसाफी करूँ तो भी अच्छी बात नहीं है। लगातार पूरे एक घंटे आप सभी का साथ होता है, जो हमें चोरी चुपके भी सुनते हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुनते हैं, जो कार से सुनते हैं, जो एप्लीकेशन से सुनते हैं, जहाँ कहीं से भी सुनते हैं। तो जितने नाम फिलहाल मैं जानती हूँ आप सभी मुझे सुनते हैं, तो उनका नाम लेना तो बनता है। सबसे पहला नाम आया हुआ हमारे पास में, हमारे सबसे पहला मैसेज है मुस्तफ़ा जी का सऊदी अरेबिया से। उसके बाद में हमारे बीच में धर्मेश त्रिपाठी जी, ओके, अनोखी शर्मा जी हैं, ताजवर खान जी हैं, और इन्होंने हमारी तारीफ की है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसके बाद में दरक्षा अंसारी जी, हमारी प्यारी श्रोता सीतापुर से। महेंद्र दीपन जी हैं राजस्थान से। बुद्धि जी, प्राणी बुद्धि जी हैं लुधियाना से। आरजे अमन जी हैं रेडियो हॉट स्टार बिहार से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए प्यारे शब्द भेजने के लिए। और इरशाद जी हैं हमारे साथ में, इरशाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताजवर खान जी हैं, पंडित जी हैं यानी प्रबल जी हैं, और प्रमुख कुमार जी हैं लुधियाना से। इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो हमारे बीच में नीना जी हैं, यानी कि हमारे चंगू जी हैं, ज्योति सिंह जी हैं जो कि आज हमारी बर्थडे गर्ल थी, और इसके बाद में आसिफ खान जी जो हमें मुंबई से सुनते हैं, बहुत ही डिसेंट से हमारे लिसनर। आसिफ खान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों ने बहुत ऐसी चिठोली की है। कमल नैन जी हैं, हरीश चंद सविता जी हैं जो हमें मुंबई से सुनते हैं। इसके अलावा भाई जन्मदिन की ढेर सारी बधाई आई हुई है प्रमुख जी की ओर से, और शब्दों में इन्होंने लिखा हुआ है तो फटाफट से पढ़ लेंगे क्योंकि जन्मदिन के लिए किसी के बतौर तोहफा आया हुआ है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आदरणीय ज्योति सिंह जी को। जीवन आपका महके सदा, जैसे बगिया में खिलती हर कली, हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए, हर शाम खुशियों से भर जाए। ईश्वर की कृपा से आपका हर सपना साकार हो, चेहरे पर सदा मुस्कान रहे, मन में प्रेम और विश्वास, हर कदम पर मिले सफलता बढ़ता रहे, आपका सम्मान और विकास, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, जीवन में कभी ना आए कोई गम। जन्मदिन पर यही दुआ है, खुशियों से भरा रहे आपका हर एक कदम। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आप लोग की कॉल्स भी आ रही हैं, सो सॉरी मैं नहीं ले पाऊंगी। और इसके बाद मेट्स कुमार साहब एमपी रीवा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बाकी नेक्स्ट लिसनर में से हमारे सुरेंद्र यादव जी हैं, मोहित वर्मा जी बने हुए चैट बॉक्स में। इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की बात करें, सबलू सावन जी हैं सांता क्रूज से, मनीष शर्मा जी हैं, और हमारी प्यारी बबीता जी हैं, अनुष्का जी हैं, और हाथियागढ़ से हमारे दीपक जी बड़े दिनों बाद, ताबिश खान जी, दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ताबिश खान जी के अलावा नेक्स्ट मैसेज की अगर हम बात करें तो आप लोगों के चिट चैट हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये नेक्स्ट डिमांड, ओके, नेहा जी भी अगर छूट जाती ना तो हमको डांट पड़ती। हाँ, तो नेहा जी है, और नेहा जी के बाद में आप सभी के मैसेज। और रतन सिंह जी भी है भाई, एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज आया हुआ है, वो भी हंसी का, थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। मोहम्मद कलीम जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, और ओके, तो आज का दिन ऐसा ही जाता है कलीम साहब, माफ करिएगा, मैं एक टाइम पे सभी के कॉल्स नहीं ले सकती, इम्पॉसिबल है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि राहुल जी की है दिल्ली से, और इसको एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। वक्त हो गया है 3:52, केवल 8 मिनट मेरे पास में शेष बची हुई है। बहुत सारी कॉल्स अभी आ भी रही है, लगातार आ रही है, लेकिन मुझे माफ करिएगा, इसके बाद में कॉल नहीं ले पाऊंगी क्योंकि गाने अभी मेरे पास में पेंडिंग है, इसीलिए मैं कॉल उठाती हूँ और गाना प्ले करती हूँ। सैटरडे मेरा यही होता है, लेकिन आप लोग का कहना है कि आप कॉल ले लिया करिए, इसलिए मैंने आज ऐसा भी कर लिया है, पर मैं अब इससे आगे कॉल नहीं ले पाऊंगी। एंजॉय करिए।

और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारी राहुल जी की दिल्ली से, धुरंधर मूवी से दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। और नेक्स्ट डिमांड हमारे पास में है अनिल जी की, अनिल जी को सुनना है। क्या गाना है, वाह, चुप हो गई, लेकिन सुनते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड। ये सॉन्ग बलमा मूवी का टाइटल ट्रैक।

जी हाँ, समय की कमी के कारण माफ करिएगा हमें हमारे प्यारे लिसनर गुलफशा जी। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि है हमारे कुमार टेलर साहब की गौरा चौकी से। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भाई एक प्यारे से लिसनर हैं आनंद जी, जो हमें सुनते हैं सिवान बिहार से। फिलहाल ये गाना और आज की लास्ट डिमांड हम फिर लेंगे।

जिन जिन की कॉल नहीं उठा पाए उनके माजरत चाहेंगे, और जिसकी डिमांड रह गई भाई वक्त की कमी है हमारे पास में, हम क्या ही कर सकते हैं, या तो कॉल उठाए या तो सॉन्ग बजाए। तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम से फिर से वही रूल अपना अपनाएंगे जो मेरा रहता था, एक गाना एंड होता था और हम फिर कॉल उठाते थे ताकि सभी के गाने हम प्ले कर पाएँ, और लगभग जितने कॉल ले पाएँ उतनी ही लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो, थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं, बस इतना होना चाहिए। एक दिन तो ऐसा बनता है बॉस आप सभी से बात करने का, और वो ललक बनी रहनी चाहिए, इसलिए अगर किसी कॉल नहीं उठ रही तो माफ़ करिएगा। फिलहाल ये गाना हमारी प्यारी रेनू जी की ओर से आप सभी के लिए मुझे याद आ गया वो पल जब उन्होंने हमसे कहा था कुछ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं, और इजाज़त दीजिए हमें इस शो से। शो था आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा, आप सभी का प्यार मिला, बेहद सम्मान मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शब्द कम है, लेकिन फिर भी इसके अलावा मेरे पास कुछ देने को नहीं सिवाय दुआओं के। आप सभी बहुत स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
12: कुछ गा दीजिए ना रफी साहब।
13: जी नहीं, मैं गाता नहीं।
12: सुना दीजिए ना जानू।
13: बुरा ना माने तो आप भी गाओ।
12: जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं।
13: दिल को चुप गया।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नाउ लिसनिंग रेडियो ज्ञान 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपकी होस्ट एंड दोस्त अर्जुनति मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है आपका गोधूली, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका शो गोधूली लेकर आता है हर शाम एक ऐसी खास पर्सनैलिटी को, जो होते हैं अपने क्षेत्र में खास, जिनसे जानने को मिलती है बहुत सारी जानकारी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आती है। तो आज हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर चेतन पराशर, जो कि हैं ब्लड बैंक प्रभारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटा। सर, आपका सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: आपने अपना कीमती वक्त निकाला एंड आप हमारे बीच मौजूद हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, आप हमारे लिसनर्स के साथ आज मौजूद हैं और उनसे आज आप बातचीत करने वाले हैं।
2: नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन।
1: तो सबसे पहले सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि भाई हमारे लिसनर आपको नहीं जानते हैं, तो आप एक छोटा सा अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए हमारे लिसनर्स को।
2: मैं डॉक्टर चेतन पराशर हूँ। मेरी जो पढ़ाई और मेरा जो बचपन जो बीता, वो पूरा का पूरा लखनऊ में था। लखनऊ में मेरे पिताजी का निजी आवास है। मैं लखनऊ में CMS थ्रू आउट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ा, फिर मैं JSS मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, फिर मैंने MD किया इन पैथोलॉजी फ्रॉम राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ, और PMS में मैंने ज्वाइन किया था सन 2012 में। उसके बाद फिरोजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, फिर कोविड के समय में मेरा यहाँ पे स्थानांतरण हुआ आपके कोविड हॉस्पिटल गोंडा में 2020 में, और 2020 से मैं अपनी सारी सर्विसेज यहाँ पे गोंडा में गोंडा क्षेत्रवासियों को दे रहा हूँ, और अभी इस समय प्रभारी रक्त केंद्र गोंडा हूँ, जो कि अब आपके ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रशासकीय राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से अब प्रचलित है।
1: ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लखनऊ में ही आपकी पैदाइश है या फिर आप लखनऊ आए थे कहीं से?
2: मैं मूल निवासी हूँ मथुरा का।
1: ओके, ग्रेट।
2: मैं मूल निवासी मथुरा का हूँ। मेरे माँ बाप, मेरा सारा रिश्ते नाते सब के सब मेरे मथुरा में ही है, और मैं यहाँ पे, मेरे फादर जो हैं उन्होंने लखनऊ की ओर रुख किया था सन 1984 में, जब मेरा जन्म हुआ था, तब वो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक क्लर्क के रूप में थे, और वो फिर यहाँ पे उनका स्थानांतरण हुआ लखनऊ में, तब से हम लोग लखनऊ में ही रहे, और मैं फिर यहीं पे अपना पढ़ाई लिखाई मैंने अपनी पूरी की, तो मूल निवासी मैं मथुरा का हूँ।
1: ओके सर, आप अपने बचपन की बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस पोस्ट पर जहाँ आज आप हैं, कि आपने हमेशा से यही एम रखा था कि मैं बड़े होकर MBBS करूंगा और इस क्षेत्र में आएंगे, या फिर 10th के बाद आपके पास ऐसा कुछ, आपने किसी को देखा, आप उनसे इंस्पायर्ड हुए?
2: ये प्रश्न बहुत ही अच्छा आपने पूछा, क्योंकि मेरे घर वाले भी जानते हैं कि मेरी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि थी। मैं हमेशा से या तो बैडमिंटन या टेबल टेनिस का खिलाड़ी बनना चाहता
1: क्या
2: था
1: बात है।
2: और रुचि बहुत थी मेरी बैडमिंटन खेलने में, और मैं टेबल टेनिस में भी बहुत खेला हूँ, कभी स्टेट लेवल नहीं, मैं स्कूल में ही खेलता रहा। फिर 10th में मैंने जब अपना उत्तीर्ण किया ICSE बोर्ड, उसके बाद 12th में ये हुआ कि सब लोग इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स ले रहे थे, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि उनको उनकी इच्छा थी कि वो कि उनका एक पुत्र जो है चिकित्सा में जाए, चिकित्सा क्षेत्र में। तब मैंने अपना बायोलॉजी ली, और फिर मैं PCB लेकर 11th-12th किया मैंने। उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, डॉक्टर बन चुका हूँ।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे साथ होता है, जब मुझे कोई और सब्जेक्ट पसंद हो, घर वाले जब फोर्स करते हैं किसी और चीज को पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा खराब लगता है उस वक्त। आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या?
2: नहीं, मेरा एक लालच था।
1: लालच?
2: हाँ, एक लालच था। सन 2000 की बात है, उस समय नया नया कंप्यूटर आया हुआ था
1: जी।
2: और इंटरनेट भी नया नया आया हुआ था। मेरे घर में कंप्यूटर और मतलब पर्सनल कंप्यूटर PC जिसे बोलते हैं, वो नहीं था। मेरा जो बड़ा भाई है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था।
1: ओके।
2: दो ही लोग हैं हम लोग। बड़े भाइयों में, तो उसने मुझसे कहा कि यार एक घर में कंप्यूटर होना चाहिए।
1: जी।
2: तो उसने कहा कि पापा से बात करो, पापा ने कहा ठीक है मैं कंप्यूटर दिला दूंगा, तुम बायोलॉजी ले लो, तुम्हारे सारे दोस्त मैथ्स ले रहे हैं, तुम बायोलॉजी ले लो और मैं तुम्हें कंप्यूटर दिला दूंगा। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा चलो कंप्यूटर तो घर में आ रहा है, तो हमने बायोलॉजी ले ली। उसके बाद अगले दिन कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर और बायोलॉजी लेके हमने जो कुछ भी किया वो आपके सामने है कि जो है मेरे बड़े भाई ने भी अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर लिया और मैं फिर अपना जो है मैंने अपने जितने भी एग्जाम्स थे वो क्लियर करते हुए फिर अपना चिकित्सा क्षेत्र में अपना जो भी काम शुरू किया।
1: जी, होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि आप ये कर लो इसके बाद हम आपको ये दिला देंगे।
2: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: मुझे भी किया जाता था पहले, एंड उसके चक्कर में हम लोग कर भी लेते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे आज, बिल्कुल, ये बिल्कुल। कर लेंगे, बट मेरे पेरेंट्स भाई मुकर जाते थे कि कौन सी बात है अब अगले साल देखेंगे।
2: नहीं ये तो है, मगर मैंने मुकरने नहीं दिया।
1: क्या
2: हम थोड़े गीत थे, मुकरना तो उनको भी चाहते थे मुकरना, उन्होंने कहा भी था कि जाओ बाहर एक कोई साइबर कैफे है उसमें पूरा महीने का तुम्हारा दे देते हैं, महीने पूरा तुम महीने का उसका तुम्हें रेंट दे दिया करेंगे और तुम वहीं जाके अपना कंप्यूटर कर लिया करो।
1: जी बिल्कुल। तो भाई जैसा सब कहते हैं कि किसी भी इंसान की जो पर्सनालिटी होती है वो उसके बचपन से बनना शुरू हो जाती है, उसके बचपन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसे इंस्पायर्ड करता है। तो आपकी जिंदगी में वो इंसान कौन था जिसने आपको इंस्पायर्ड किया, एंड आपके बचपन में आपका नेचर कैसा था?
2: मैं बचपन में शरारती था बट आई वॉज डिसिप्लिन्ड ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। वो खेलना कूदना सब अलाउ करते थे मगर कोई भी उन्होंने कभी बदतमीजी या फिर किसी तरह की कोई मतलब बहुत ही ऊंचे लेवल की कोई अगर बदतमीजी करे तो उनको पसंद नहीं था। हम लोग पढ़ते भी थे, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलो, मतलब मुझे नहीं मतलब है, तुम अब एग्जाम्स तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, जो चाहे करो, तुम फैसिलिटीज हम सारी देंगे। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे स्वर्गीय विद्याधर पाराशर, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे।
1: Okay.
2: और उनके जो छोटे भाई थे वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे।
1: okay.
2: तो जब भी मैं अपने गांव जाता था तो मेरे दादा की एक छोटी सी कोठरिया थी, कोठरी बोलते हैं इसको,
1: जी हाँ, है ना, जो समझ सकते हाँ,
2: उस जमाने में कहते हैं कच्चे मकान होते थे, तो कोठरिया में उनके जो है छोटी छोटी दवाइयों की शीशियां रखी रहती थी होम्योपैथ की दवाइयों की, और मैं बिना सोचे समझे उनमें से निकाल निकाल के खाता रहता था
1: क्योंकि वो बहुत मीठी
2: होती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो मीठी होती थी और दादा के पास मरीज आते रहते थे गांव के, तो वो उनको वही मीठा मीठा देते रहते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये चलो ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो एक दिमाग में था, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कि हाँ आई थिंक कि डॉक्टर बनने में थोड़ी इज्जत है। हर आदमी जब भी उनके पास आता था तो बाबू जी कैसे हो, चरण स्पर्श, पैर छूना, और दीवान जी नाम था उनका, दीवान जी कैसे हो, ऐसे करके बोलते थे, तो इज्जत बहुत मिलती थी। तो शायद इज्जत के चलते ही मैंने सोचा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में रहा होगा कि डॉक्टर बनते हैं, और If you manifest something, I think, तो आजकल तो ये बहुत चल रहा है कि manifest करो, उस समय शायद मैंने manifest किया होगा कि मुझे बनना है डॉक्टर, तो शायद बन गया।
1: तो मतलब आपको inspired करने वाले आपके grandfather थे, क्या बात है। सर आपका बचपन जान के और आपकी इंस्पायरेशन को जान के बहुत अच्छा लगा, तो अब हम आपके थोड़ा काम की तरफ चलते हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: आप ब्लड बैंक में है, एंड ऑफकोर्स आपको पता होगा कि ब्लड बैंक जैसा ही कोई नाम सुनता है, ब्लड डोनेशन जैसे नाम सुनते हैं, तो लोगों के अंदर एक अलग सा खौफ बैठ जाता है कि अपना खून देना कितनी बड़ी बात है। ये कुछ लोग जैसे अपना खून देते हैं तो वो शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, बट कुछ हैं जिन्हें समझाना पड़ता है कि खून देना कोई खराब चीज नहीं है, एक अच्छी चीज होती है।
2: जी।
1: तो आपको भी ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि आपके पास लोग तो आते हैं लेकिन कोई इंजेक्शन देके भाग जाता है, या फिर कोई बस यही कहता है कि नहीं हमें अपना खून नहीं देना?
2: बिल्कुल, अगर आप किसी जैसे दान होता है तो दान, अगर आप किसी को दान करते हैं कुछ तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वापस वही व्यक्ति या फिर किसी आपने जैसे सपोज करिए राह चलते आपने किसी को कुछ दान किया
1: जी।
2: तो क्या आप अपने मन में सोचते हैं कि कल को मुझे ये व्यक्ति मिलेगा तो मुझे केले संतरे या सेब ला के देगा?
1: बिल्कुल भी नहीं।
2: दान का मतलब होता है दान दे दिया।
1: जी हाँ।
2: दान दिया मतलब भूल जाओ। मगर हाँ आज के परिवेश में रक्तदान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रक्त हम बना नहीं रहे हैं।
1: जी।
2: रक्त बनता नहीं है।
1: जी।
2: रक्त बनाने की कोई मशीन नहीं है। एक व्यक्ति अगर रक्त देगा तो हम उसको बनाएंगे, उससे हम उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे, प्लाज्मा बनेगा, हम उसको संजो के सेफ तरीके से अपने रक्त कोश में, ब्लड बैंक में रखेंगे, उसके बाद किसी को जरूरत होगी तो हम देंगे।
1: जी।
2: रक्तदान के मायने आजकल ये हो गए कि अगर हम रक्तदान कर रहे हैं तो सरकार भी इस तरह की उनकी कोई वो नहीं है कि हाँ, अच्छी बात यही है कि हम लोगों ने रक्तदान करने के लिए, रक्तदान करवाने के लिए बड़ा उसकी कहते हैं, लोगों को इंस्पायर करने के लिए कार्ड्स इशू किए हैं कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप

0: ये पहली चीज तो मैं जो मानता हूँ, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा मानना यह है कि रक्त दो और भूल जाओ।
1: बिल्कुल,
0: मैंने आज तक कभी भी रक्त देने के बाद मैंने ना तो मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे कोई कार्ड दे, मैं तो कार्ड के लिए भी इच्छुक नहीं होता हूँ। मगर हाँ ये है कि कार्ड मुझे जरूरत पड़ेगी, ईश्वर कभी जरूरत पड़ेगी तो हाँ लोग आएंगे आगे बढ़ के, मैं उसके लिए नहीं, जो मेरी व्यवहार है व्यवहार के भरोसे मैं रहता हूँ कि हाँ मेरे व्यवहार अगर अच्छा होगा तो लोग आएंगे देने के लिए, वरना ईश्वर है वो देखेगा। रक्तदान कर दिया मतलब भूल जाओ। और पब्लिक के लिए ये है कि अगर वो रक्तदान करना मतलब रक्तदान अगर आप नहीं करोगे तो आपके परिजन को रक्त कहाँ से मिलेगा। सीधी सी बात है, हर व्यक्ति अगर यही सोच ले कि मैं रक्तदान नहीं करूँगा
1: जी,
0: मैं रक्तदान करूँगा तो कमज़ोर पड़ जाऊँ, तो वो देना बंद कर दें, तो मेरे पास हमारे ब्लड बैंक में कुछ रक्त रहेगा ही नहीं। सबकी अगर यही भावना हो जाएगी तो हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, लोगों से बोलना पड़ता है, कभी कभी हाथ पैर भी जोड़ने पड़ते हैं कि आप आइए आगे बढ़ के आइए और रक्तदान करिए, देखिए कितने फायदे होते हैं, उसके फायदे समझाओ। मगर हाँ ये है कि अज्ञानता के कारण, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, ये होता है कि लोग अभी तक उस भ्रम में जी रहे हैं कि अगर मैंने रक्त दे दिया तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा, अगर मैंने रक्त दे दिया तो मैं किसी लायक नहीं रहूंगा
1: जी,
0: मैं अपने शरीर का जितना भी मैंने खाया पिया है, मैंने जितनी इतनी बॉडी बिल्डिंग करी है, जितना मैंने अपने अंदर शक्ति संजो के रखी हुई है, वो सब चली छिन जाएगी अगर मैंने रक्त दे दिया तो, जो कि कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है।
1: ओके, तो वेल मुझे लगता है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, पहले एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जैसे आपने मुझसे कहा था भाई कि आपको फायदे बताने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ भी आपसे वो फायदे जानना चाहूंगी कि भाई रक्तदान करने से कौन से फायदे होते हैं।
0: बिल्कुल।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले शो, इसका नाम है कॉथली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरशे उन्नति, एंड मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर चेतन पराशर जी। तो सर, जैसा मैं आपसे बात कर रही थी चैलेंजेस के बारे में, एंड आपने उसमें एक वर्ड कहा कि भाई फायदे होते हैं, हमें फायदे समझाने पड़ते हैं। तो हम ब्लड डोनेट अगर करने जाते हैं तो क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं?
5: सबसे पहला तो हेल्थ बेनिफिट ये है कि जैसे आप आजकल देख रहे हो कि हर आदमी जो है अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और बहुत ज्यादा कॉशियस है।
4: जी बिल्कुल।
5: और आए दिन अखबारों में कार्डियक अरेस्ट की जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? आपकी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या है? लाइफस्टाइल गंदी, खराब लाइफस्टाइल वो ये है कि आप तला भुना ज्यादा खाते हो, एक्सरसाइज कम करते हो, स्मोक करते हो, अल्कोहल लेते हो, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस लेते हूँ। स्ट्रेस को तो हम कम नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी स्तर पर बता रहा हूँ कि स्ट्रेस तो मैं कम नहीं कर पाऊँगा, मगर अगर आप एक शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट में ये होता है कि दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, अपना शरीर में से जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं
4: जी।
5: एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। दो भागों में कोलेस्ट्रॉल को ले लें, जितना भी फैट हम खाते हैं उस फैट को शरीर जो है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दो चीजें होती हैं। सरल भाषा में कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। हमें गुड कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में बढ़ाना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? आपके शरीर में जाके आपकी नसों में जम जाता है। नसे मतलब ब्लड वेसल्स में वो जम जाता है, उसकी दीवारों में जम जाता है, वो हार्डन हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। अब अगर वो हार्ट की धमनियों में, वेसल्स में जमने लगेगा आपका कोलेस्ट्रॉल, तो आपके हार्ट में, हार्ट को प्रेशर बहुत फील होगा। मतलब सरल भाषा में बता रहा हूँ, नॉट टू बी टोटली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कि आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसको वर्कआउट करना पड़ेगा पूरे शरीर में खून पहुँचाने के लिए, वो हार्ट आपका स्ट्रेस में आ जाएगा ये मान लीजिए। तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या तो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मैं आपसे कहूँ कि दवाइयाँ खाइए, डॉक्टर से मिलिए, दवाइयाँ खाइए, या एक्सरसाइज करिए, और बुरी अपनी जो आदतें हैं उनको चेंज करिए। एक सरल चीज ये होती है कि आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। ब्लड डोनेट करने से क्या होता है कि आपका शरीर का जो, हम जब एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं सपोज, तो उसमें आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके साथ साथ प्लाज्मा भी बाहर निकलता है
4: जी।
5: प्लाज्मा भी हम निकालते हैं। आप अपना प्लाज्मा देखो, वो पूरा, अगर किसी शरीर में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, आप कभी ब्लड डोनेट करने के बाद हम कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, मतलब प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, प्लेटलेट सेपरेट करते हैं और RBCs रेड ब्लड सेल सेपरेट करते हैं। आप अपना प्लाज्मा देखो कभी, आपको लगता है कि आपने जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत शरीर में ज्यादा है, आप देखोगे तो आपका आपका जो प्लाज्मा है वो पूरा लिपिडेमिक होगा। लिपिडेमिक का मतलब होता है कि दूधिया प्लाज्मा
4: जी,
5: फैट से भरपूर। तो आपके शरीर से जब प्लाज्मा निकल रहा है तो कोलेस्ट्रॉल भी निकल जा रहा है, वो गंदा कोलेस्ट्रॉल जो है वो निकल जा रहा है।
4: क्या बात।
5: तो दिस इज अ इजी वे। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है शरीर में, फैट के कारण जो है आपकी, और BP भी बढ़ता। जब BP, आप BP को आपको कम करना है जैसे, तो या तो बीपी की दवा खाओ या फिर मेरे हिसाब से चलो ब्लड डोनेट कर दो, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा।
4: क्या बात है।
5: तो बीपी कंट्रोल करना और आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल निकालना मेरे हिसाब से आज के परिवेश में, आज की लाइफस्टाइल में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि आप या तो दवा खा के कर सकते हो या फिर नॉर्मली एक्सरसाइज करके भी कर सकते हो। और थर्ड ये बता दिया मैंने आप कि आप जो है ब्लड डोनेट करो, आप बहुत हेल्दी हो जाओ। हर 3 महीने पे डोनेट करते रहो, हर 3 महीने पे आपका कोलेस्ट्रॉल और जो गंदा फैट है वो निकलता रहेगा, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। बीपी की दवाइयां जो खा रहा है वो आप आजमा के देख ले इस चीज को, इसका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है वो आजमा के देख ले इस चीज को। बीपी आप जाओ ब्लड डोनेट करो, हम आपका पहले चेकअप करेंगे पूरा, आपकी सारे टेस्ट होंगे, आप ब्लड डोनेट करो। ब्लड डोनेट करने के बाद आपको हल्का फील होगा, ये मेरी गारंटी, आपका बीपी कंट्रोल में आएगा धीरे धीरे। आप रेगुलर यूज, जो रेगुलरली डोनेट करते हैं ब्लड, उनका कभी भी हाइपरटेंशन नहीं देखा गया है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं देखा गया, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता, एंजाइटी लेवल्स भी कम रहते। तो आपका जो, और तीसरी चीज क्या है कि जैसे आपका शरीर में जो नया रक्त जो है, जो जैसे आपकी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है
4: जी,
5: वो 120 डेज का होता है
4: जी।
5: बनती कहाँ है रेड ब्लड सेल्स? बनते हैं आपके हड्डियों में, लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी दे प्रोड्यूस द आरबीसी ब्लड। आपका ब्लड जो बनता है वो आपकी लॉन्ग बोन्स में बनता है। आप जैसे जैसे ब्लड आप निकालते जाओगे, डोनेट करते जाओगे, आपका शरीर नया बनाता जाएगा। आपके शरीर में जो अमूमन ब्लड होता है वो 5 to 6 liters होता है, 5 to 6 liters। आपने एक बार में 350 ml ब्लड दिया, सपोज करिए 10-11 बार में आपका पूरा 4.5 liters जो ब्लड है आपका शरीर का, वो पूरा रिन्यू हो जाएगा। तो अब जब पूरा ब्लड आपका रिन्यू हो गया है, बचपन से लेकर आप अब जवानी तक आपका जो ब्लड रहा है वो रिन्यू हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे हिसाब से। तो इट्स एन ईजी वे टू एनर्जाइज योर बॉडी, टू गेट रिड ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, टू गेट रिड ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये सब आपका जो है इजी वे आउट है ब्लड देना। मेरे ख्याल से लेट के ब्लड दे दो यार, निकल जाएगा सब कुछ, क्या प्रॉब्लम है आप?
4: बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इसमें आपके फायदे उन लोगों से कई ज्यादा होते हैं जो आपका ब्लड ले रहे हैं।
5: उनको तो मतलब आपके शरीर को स्वस्थ कर रहा है वो पहली चीज। मैं आपको लालच दे रहा हूँ कि देखो भैया आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। आज की दुनिया में हर आदमी जो है सेल्फ सेंट्रिक जाता है ना, वो अब जो है वो ये सोचता है कि मेरा क्या फायदा है इसमें भाई, मेरा जी, क्या जी, फायदा बिल्कुल। तो मैं आपको फायदे बता रहा हूँ कि आपको लालच दे रहा हूँ कि भैया आपका शरीर पहले स्वस्थ हो रहा है, आप दे दो। और दूसरी चीज, आपका ब्लड जब रहेगा तो हो सकता है कि मानवता के नाते भैया कहीं थोड़ा इंसानियत बची हो तो देख के देखो, अच्छा लगता है ना, खून देके देखो
4: जी, अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, काम किया है
5: कुछ, आपने धर्म कर्म का काम किया है ना
4: जी। बिल्कुल। ओके सर, एक बात बताइए, जब भी ब्लड डोनेशन की बात आती है तो शहरों में और गांव में बहुत फर्क आ जाता है, तो सर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अवेयरनेस को लेकर, या फिर लोगों को ये बताने के लिए कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, वो कहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है? गाँव के क्षेत्र में ज्यादा होता है या फिर शहरों में भी उतना ही है जितना गाँव में चल रहा है इस वक्त?
5: नहीं, मुझे गाँव क्षेत्र में जो है काफी कठिनाई लगी कि लोगों को समझाना, जब भी मौका मिला मैंने समझाया, मगर वो खुल के बात कर भी नहीं पाते हैं, गांव के जो लोग हैं वो खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं, अपनी परेशानियां भी नहीं बता पाते हैं। लौट के उनको जाना है अपने आसपास के लोगों में ही, वो लोग फिर अगर हम समझा भी देंगे तो वापस जो है वापस से शाम तक उनको दोबारा से भ्रम हो गया कि अरे उनके कहने मत जाओ, खून देने से दिक्कत होती है, हम बता रहे तुमको। शहरी क्षेत्र में मैंने देखा है कि जो यूथ है दे आर प्रिटी मच अवेयर, अच्छा खासा अवेयरनेस है उनमें, अज्ञानता के कारण ही है जितना मुझे लग रहा है। जैसे जैसे अज्ञानता दूर होगी, अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देखते हैं, रील्स बनती हैं कि आओ कुछ नया करें, खून नहीं दोगे तो खून बनेगा कैसे, खून मिलेगा कैसे। लोग शहर में जागरूक हो चुके हैं, छोटी छोटी सोसाइटीज बनी हुई हैं, उन सोसाइटीज में जाके लोग ब्लड डोनेट करते हैं। गाँव क्षेत्र में मैंने देखा है कि अभी छोटे स्तर पे ही सही, मगर हाँ थोड़ा गोंडा में बताऊं तो हाँ गोंडा में भी छोटे छोटे सोसाइटीज बन रही हैं और संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं। और इस साल देख रहा हूँ पिछले साल के मुकाबले कई संस्थाएं ने जो है ब्लड डोनेट किया है, गर्मी के सीजन में भी। गर्मी के सीजन में अमूमन रक्तदान थोड़ा कम होता है, मगर इस बार रक्तदान अच्छा खासा हुआ हमारे यहाँ। मतलब इतना अच्छा भी नहीं कहूंगा कि मेरे सारे भंडार भर गए, भंडार तो मतलब ब्लड बैंक आपका पूरा भर गया ये तो नहीं कहूंगा, मगर हाँ ये है कि पिछले साल के मुकाबले अवेयरनेस शायद बढ़ी है और लोगों में मानसिकता आई है कि हाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए। कभी भी आपातकाल आ जाता है, जैसे कि कभी कोई, धन्यवाद देना चाहूंगा, पिछले साल एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, उसमें हालांकि दो ही व्यक्ति जो है हमारे हॉस्पिटल में आए थे जो घायल थे, मगर बहुत लोग आए हमारे रक्त केंद्र में और उन्होंने जो है स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपनी इच्छा जताई और कई लोगों ने रक्तदान किया, बढ़ चढ़ के रक्तदान किया और बहुत अच्छा फील हुआ मुझे बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रुप कि लोग आके रक्तदान कर रहे हैं। बट कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप आपदा मतलब आपातकाल का या आपदा का इंतजार क्यों कर रहे हैं डोनेट करने के लिए, है ना? आपका जब भंडार भरा रहेगा तो हमें यार किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा
4: जी।
5: रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आपका ब्लड ग्रुप आपको शायद पता ना हो, आप आइए देखिए आपका शायद ब्लड ग्रुप रेयर निकले, रेयर मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप जितने भी हैं वो रेयर में आते हैं। अगर हमको पता चलेगा हो सकता है कि किसी ऐसा व्यक्ति हो जिसको आगे चल के उसको खून की कमी हो किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को, और आपका हमें पता चल जाए, हम आपका नाम रजिस्टर में लिखे रखें, शायद आपको एक मौका मिल जाए उसकी जान बचाने का, क्योंकि रेयर ब्लड ग्रुप जितने भी होते हैं बहुत कम ही मिल पाते हैं और उनको हमको संभाल के रखना पड़ता है।
4: ओके सर, आपने बात की रेयर ब्लड ग्रुप की जिसमें नेगेटिव वाले आते हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक ये बात भी सुनने को आती है कि हमारा ओ पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव ब्लड दे तो सकता है लेकिन वो किसी से एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम अगर अपना ब्लड दे देंगे और कहीं हमें ही जरूरत पड़ी और हमें ही नहीं मिला तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये जो कॉमन ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं इनको क्या कहना चाहते हैं आप?
5: नहीं देखिए, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ये बहुत ही कॉमन ब्लड ग्रुप है, मैक्सिमम लोगों का वो पॉजिटिव ही होता है।
4: बट वो एक है ना कहावत चल रही है कि अगर हम तो दे देंगे बट हमें कोई नहीं दे सकता है क्योंकि हमारा वो पॉजिटिव है, हम एक्सेप्ट नहीं करते किसी का।
5: नहीं ऐसा नहीं है, आप जब ओ पॉजिटिव, जब सपोज करिए कि मैंने कोई कैंप, हमारे यहाँ कोई शिविर लगा, कैंप लगा, उसमें अगर 20 लोगों ने रक्तदान किया है तो मान के चलिए कि 10 लोग तो ओ पॉजिटिव निकलेंगे ही निकलेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या फिर वर्ल्ड का ही है, तो उसमें ओ पॉजिटिव इज अ वेरी वेरी मतलब कॉमन ब्लड ग्रुप, इट इज नॉट द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो इसलिए आप अगर दे भी देते हैं, ओ पॉजिटिव ने दे दिया अगर, तो ओ पॉजिटिव की होने की जो संभावना है ब्लड बैंक में वो प्रचुर है। ओ पॉजिटिव जरूर होता है हमारे, ओ पॉजिटिव भरपूर मात्रा में मिल जाता है। ओ पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि रेयर हो, मेरा ही ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, अगर किसी को लग रहा हो ऐसी कोई शंका है तो आके भैया मुझसे संपर्क कर लेना, मैं अपना दे दूंगा।
4: क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हाल फिलहाल मैंने अपना पता करवाया था, मेरा भी ओ पॉजिटिव ही है,
5: कहते ना बहुत ही कॉमन है।
4: बट सर जब रेयर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है?
5: अभी तक जो मैंने देखा है कि रेयर ब्लड ग्रुप में ओ नेगेटिव आया है, ए नेगेटिव आया है, ये काफी नेगेटिव तो सारे के सारे ही मुझे, अगर आप पूछें तो सारे ही मुझे बहुत ही कम दिखाई दिए हैं कि ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये सब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं, बहुत ही रेयरली मिल पाते हैं। उनके उनके जो डोनर्स होते हैं उनको भी हम लोग पता लगा के रखते हैं उनका, और जब जरूरत पड़ती है तो उनसे संपर्क भी किया जाता है, मगर हाँ देट इज टोटली वॉलंटरी डोनेशन, वी कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू डोनेट।
4: बिल्कुल। ऑलराइट सर, तो आप मुझे अब ये बताइए कि जब आपके कैंप लगते हैं या शिविर आपके लगते हैं तो आप ब्लड बैंक में प्रभारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती होंगी, तो उस वक्त आपके काम और आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और आप किस तरह से मैनेज करते हैं चीजों को?
5: रक्त केंद्र गोंडा में एक्चुअली अब ब्लड बैंक से नाम जो है ब्लड बैंक का ब्लड सेंटर हो चुका है, जितने भी ब्लड बैंक से सबको ब्लड सेंटर के नाम से बुलाया जाता है, तो रक्त केंद्र बोलते हैं
4: जी।
5: आपके रक्त केंद्र गोंडा में मेरे जो सहकर्मी हैं हमारे साथ में डॉक्टर मेडिकल अफसर्स भी हैं, और हम सबका एक ही काम रहता है कि अगर कभी शिविर लगता है तो पहले से एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है एक दिन पहले ही कि अमूमन कितने लोग आने वाले हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, उनके जलपान की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था सरकार देती है, उनके जलपान की व्यवस्था सूक्ष्म जलपान बोलते हैं, मतलब कि हम उनको ओवरलोड नहीं करते हैं किसी को कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया है लो खाओ भेलपूड़ी, लो खाओ छोले भटूरे, ये सब नहीं होता है, आपको नॉर्मल चीज़ दी जाए, क्योंकि बिकॉज थोड़ा नौजिया लगता है कि ज़्यादा खाने पे आप थोड़ा नौजिया हो जाता है, तो हम पहले एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वी मेक श्योर कि जितने भी लोग डोनेट कर रहे हैं दे आर हेल्दी डोनर्स, उनकी स्क्रीनिंग होती है बेसिकली, उनकी काउंसलिंग होती है, हमारे यहाँ एक काउंसलर है
4: जी
5: जो काउंसिल करता है, तो काउंसलर का काम होता है कि हमारे पास एक कंसेंट फॉर्म होता है, कंसेंट फॉर्म मतलब कि आपने कंसेंट दिया है कि आप मेरा रक्त निकाल सकते हैं, उसको कंसेंट फॉर्म हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हो, कंसेंट फॉर्म में लिखा होता है कि क्या आपने पहले रक्त दिया है, रक्त दिया है पहले तो क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई थी, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ था रक्त देने में, आपने रक्त कब दिया था, कितने साल हो गए, कहीं 3 महीने के भीतर ही रक्त तो नहीं दे दिया है अभी, अभी 3 महीना पूरा हुआ है कि नहीं आपका, क्योंकि हर व्यक्ति एक बार अगर रक्त देता है तो अगले 3 महीने तक रक्त नहीं दे सकता, तो टाइमिंग कि कब उसने डोनेट किया था लास्ट टाइम, खाने पाने में कि कहीं उसको कोई खाना उन उसको मिला है कि नहीं मिला है, रात में सोया है ढंग से कि नहीं सका है, कोई उसको कोई इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है कि कहीं उसने अल्कोहल तो नहीं ले लिया था, उसने कोई मेडिसिन तो नहीं ऐसी खाई हुई है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे लोग जो है एस्पिरिन लेते हैं, एस्पिरिन इज अ प्लेटलेट सेपरेटर, मतलब कि हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है एस्पिरिन, जो कि ज्यादातर हार्ट के पेशेंट्स को बोल दी जाती है
4: जी,
5: इनको डिसलिपिडेमिया एक बीमारी होती है उनको दी जाती है। तो कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं ली है जो कि हार्मफुल है, जिसमें आप जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो सब कुछ हम पूछ के भली भांति उनसे पूछ लेते हैं, उनका वजन चेक कर लेते हैं, वजन कहीं 45 किलो से कम तो नहीं है। 45 किलो से कम होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, इसलिए हम लोग 45 किलो से कम व्यक्ति का नहीं लेते हैं। 45 से 50 किलो तक के व्यक्ति को हम अवॉइड करते हैं, 50 किलो के ऊपर ले लेते हैं। और हीमोग्लोबिन, जो उसका हीमोग्लोबिन है वो हमने उसका जो मानक है वो है 12.5 ग्राम प्रति डेसिलीटर है, तो 12.5 HB हम ले लेते हैं और उससे ऊपर हो तभी लेते हैं। और बाकी उससे पूछ लेते हैं कि कोई कभी कोई बीमारी तो नहीं है उसको, कोई जैसे ट्यूबरक्लोसिस है। टीबी के पेशेंट को हम कभी भी नहीं लेते हैं उसका ब्लड, टीबी के पेशेंट जो है परमानेंट डिफरल बोलता है, मतलब कि हम उससे कभी ब्लड नहीं लेते हैं। HIV पेशेंट से कभी ब्लड नहीं लेते हैं, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट से कभी ब्लड नहीं लेते हैं। और इस तरह से कोई कैंसर का पेशेंट है उसको कभी ब्लड नहीं लेंगे, उससे किसी ने इंजेक्शन लगवाया हो, कोई वैक्सीन लगवाई हो, उसका अलग अलग समय है कि जैसे रेबीज की वैक्सीन है तो अगले एक साल तक आपने रेबीज की वैक्सीनेशन लिया है तो आप अगले एक साल तक नहीं ले सकते हो। टैटू आपने कराया है तो अगले 6 महीने से 1 साल तक आप अवॉइड करो। तो ये सब उसके जो अलग अलग मानक हैं उनसे पूरी पूछताछ कर ली जाती है, उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है, टेस्ट भी हम लोग करते हैं। और प्लस शिविर में तो हम तुरंत टेस्ट नहीं करते हैं, शिविर में तो हम लोग तुरंत पहले ब्लड निकलवाते हैं, फिर उसके बाद थोरो टेस्टिंग होती है जो कि टेस्टिंग हमारे सेंटर पे होती है। और ये सब जब हम पूछ लेते हैं उसके बाद वो स्वस्थ लगता है, हमको फिट लगता है, मेंटली साउंड लगता है, फिजिकली फिट लगता है, देन उसका फिर बीपी चेक किया जाता है। बीपी उसका अगर नॉर्मल है या जो हमारे मानक हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऊपर का या नीचे का जो होता है उसके मानक के अनुसार अगर उसमें आ रहा है वो विद इन दैट नॉर्मल लिमिट्स में अगर वो आ रहा है तो हम तुरंत उससे उसको ओके कर देते हैं, उनसे साइन लेते हैं, तो कंसेंट फॉर्म पूरा हो जाता है, फिर वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर हम अश्योर करते हैं कि जो ब्लड डोनेशन हो रहा है वो सेफ एंड साउंड हो रहा है, मतलब अंडर टोटल एसेप्टिक प्रिकॉशंस हो रहा है, कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, पेशेंट सुकून से है, निकालने वाला सुकून से है, तब ब्लड निकलेगा। ब्लड डोनेशन में मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी जनता जो मेरे सब सुन रहे हैं उनको बताऊंगा, जब ब्लड डोनेट कराओ करने आए आप कभी भी तो जल्दबाजी करने मत आइए, जल्दबाजी अगर है तो आप बिल्कुल मत आओ, आप आराम से सुकून से आओ। ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप जो है जितना सुकून से आप आओगे उतने सुकून से वापस जाओगे, ये हड़बड़ी का मामला नहीं है
4: जी, बिल्कुल
5: है ना।
4: ओके, एंड इसके बाद आप वो कार्ड बनाकर देते हैं?
5: हाँ हाँ, कार्ड हम देते हैं, कार्ड में 3 महीने का टाइम रहता है कि आप 3 महीने के भीतर इस कार्ड को भुना सकते हो, इस कार्ड के एवज में आप रक्त ले सकते हो, 1 यूनिट ब्लड ले सकते हो और अपने बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार को दे सकते हो अगर आप चाहो तो। ये नहीं कि आप पूरे मोहल्ले में किसी को बांट दो, नहीं, आपके नजदीकी रिश्तेदार के लिए होता है।
4: ओके सर, वो जो कार्ड आप बनाकर देते हैं वो सिर्फ 3 महीने ही काम करता है, फिर उसको दोबारा से ही कभी यूज किया जा सकता है?
5: नहीं, एक्चुअली इस कार्ड का एक जो रीजन है देने का वो ये है कि मैंने अगर ब्लड दिया आज
4: जी
5: तो अगले 3 महीने तक मैं ब्लड नहीं दे सकता हूँ। कारण है उसका, कारण है, साइंटिफिक रीजन है उसका कि मैंने आज अगर ब्लड दिया है तो जितना मेरा शरीर से खून निकला है, खून में क्या है, आयरन है
4: जी,
5: आयरन है, तत्व है, मिनरल्स है, जो भी है, वो जितना मेरा आयरन निकला है, क्योंकि ब्लड में आयरन बहुत होता है
4: जी,
5: आपका जितना आयरन निकला है वो आपके नॉर्मल खान पान से देखा गया है कि अगले 3 माह के अंदर उतना ही आयरन जितना आपने दे दिया है उतना ही आयरन आपके शरीर में वापस लौट के आएगा। उसको लगभग 3 महीने लग जाते हैं, 90 डेज लग जाते हैं।
4: ओके,
5: फिर आप 90 डेज बाद यू आर फिट अगेन टू डोनेट ब्लड।
4: ओके,
5: तो हम ये मानते हैं कि अगले 3 महीने तक क्या करोगे अगर जरूरत पड़ गई तो, अगर आप ही को जरूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो आप क्या करोगे। ऐसे में सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि कार्ड उपलब्ध कराएं, कि इस कार्ड को लीजिए, अपने पास रखिए, आपको कभी जरूरत पड़ती है इस विद इन 3 मंथ्स तो आप जाइए ब्लड बैंक में दीजिए और आपका रक्त केंद्र गोंडा आपको देने का वचन देता है कि अगर उपलब्ध है तो हम आपको जरूर जरूर देंगे।
4: ओके, तो वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक का, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और आपसे वापस से काफी सारी बातें करते हैं ब्लड से ही रिलेटेड। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने वाले शो कौतली में।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले शो, उसका नाम है कौतली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरशे उन्नति, एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे गेस्ट डॉक्टर चेतन पराशर जी, जो कि हैं ब्लड बैंक प्रभारी। सर, हम बात कर रहे थे ब्लड डोनेशन की, एंड एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो है, जो लोगों के बीच में मिथ्स रहते हैं कि अगर हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि हम आगे किसी भी काम के ना रहे, यानी कि मेल्स के बीच में रहता है कि हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, और ये सारी मिथ्स मैंने खुद भी कई लोगों से सुने हैं। तो सच में ऐसा होता है या फिर ये सच में सिर्फ एक मिथ्स ही है जो लोगों के बीच में फैली हुई है?
4: देखिए, मिथ्स का क्या, आप वाकिफ हो तो आप सोचो कि जितनी भी मिथ्स थी सब पे, सबको जब नकारा गया तो कैसे नकारा गया, उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया
3: जी।
4: एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रूव किया गया कि ये मिथ है। पहले था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है
3: जी,
4: किसी ने उसको मिथ प्रूव किया
3: जी,
4: बताया गया कि वो गोल है
3: जी।
4: तो किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आप एक्सपेरिमेंट करो ना। मैं कह रहा हूँ कि मिथ जो है वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से, उस समय भी अज्ञानता रही होगी, आदमी ने जो है रिसर्च की, पढ़ाई की, एक्सपेरिमेंट्स किए। हाँ, उस समय इतना एडवांस रिसर्च का माहौल नहीं था मिथ्स प्रूव करने के लिए, मतलब रॉन्ग प्रूव करने के लिए। तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ये लगता है कि खून देने से आपके शरीर में कमजोरी आती है, तो why not do an experiment? आप खुद सोचो कि अगर यही अगर आप सोचने लगे और आपकी कमजोर होने लगा है, तो आपको चाहिए कि जो लोग खून डोनेट कर चुके हैं उनसे अच्छा उदाहरण, उनसे अच्छा समझाने वाला कौन मिलेगा आपको, आप उनसे पूछो। मैं आपको अभी बोल दूं कि नहीं नहीं गलत है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, आपकी ये मिथ है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करो, कोई मुझे विश्वास नहीं करेगा। आई थिंक द बेस्ट वे इज टू खुद रियलाइज इट योर सेल्फ, टॉक टू द पीपल जिन्होंने दिया हुआ है, जो जिन लोगों ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है उनसे पूछिए कि चढ़ाई में कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है। वजह इसके कि मैं अगर बोलूं कि नहीं नहीं कोई, ये सब आपकी वहम है, ये सब भ्रम है, आप, मैं चलिए मैं बोल देता हूं कि है भ्रम है, आपको लग रहा है कि आपके शरीर में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, आपको कहते हैं कमजोरी आ जाएगी आपके, है ना, मानसिक स्तर में कमी आ जाएगी, फिजिकल फिटनेस में कमी आ जाएगी, ये सब मिथ है, ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि ऐसा होता है कि आप जब आप खून दे देते हो तो आप स्वस्थ हो जाते हो। मैंने बोला ना कि आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, आपको दवाइयां कम खानी पड़ती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट के लिए इतना हानिकारक है, वो कम हो जाता है। जो हार्ट के लिए हानिकारक जो चीज है वो कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है हार्ट आपका जो है लंबा चलेगा, लंबा चलेगा मतलब आप लंबा जियोगे, और लंबा जीना ही तो हर व्यक्ति चाहता है कि आप फिट होके लंबा जियो, है ना। और मैं तो ये कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो आप पहले आके एक बार ब्लड डोनेट करो, ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा आप, मैं खुद डोनेट करता रहता हूँ, मेरे यहाँ मेरे कर्मचारी सारे के सारे ऐसे हैं, एक से बढ़कर एक, कि वो खुद डोनेट करते रहते हैं, मैं सबसे मिलवा दूंगा। आप आइए कभी ब्लड बैंक, आके मिलिए, और यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। कि अगर आपको कोई भी आपको लगता है कि क्या ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, क्या खून डोनेट करने से ऐसा हो जाता है, मुझसे आके मिलिए, मैं खुद बताऊंगा। आप चाहे तो ब्लड बैंक में आके, हम ये है कि आपसे मिलवा देंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने 70-70 बार डोनेट किया हुआ है, मैंने 50-50 बार डोनेट किया हुआ है।
3: क्या बात,
4: ऐसे ऐसे लोग हैं आपके गोंडा में ही, ऐसे ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जो कहते हैं हर 3 महीने पे डोनेट करते रहते हैं और हेल्दी एंड साउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल 1% प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, स्वस्थ होंगे वो, आपसे ज्यादा स्वस्थ होंगे, इसकी गारंटी मैं जरूर बोल सकता हूँ।
3: ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अगर कोई हमारा प्रोग्राम सुनकर अगर अभी आपके पास आता है अपना ब्लड डोनेट करने, तो उसे आपसे वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा?
4: आप जो है अपने जिला अस्पताल आपका जो है स्टेशन रोड पे आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा, जिसको जिला चिकित्सालय गोंडा बोलते हैं, जो कि अब मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गया है। आप वहां पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि ब्लड बैंक, ब्लड सेंटर, रक्त केंद्र, रक्त कोष, ये सब अलग अलग नाम है, किसी से व्यक्ति से पूछ लीजिए कि रक्त कोष कहाँ पे है, ब्लड बैंक कहाँ पे है, वो सीधे आपको राह दिखा देगा। आप वहाँ आइए, आप आके मिलिए, वहाँ पे हमारे काउंसलर, हमारे लैब टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स सब मौजूद हैं, और आप बेझिझक आइए। पहले हम आपकी जो भ्रांतियां हैं, भ्रम है, उनको दूर करेंगे, उसके बाद आपसे डोनेशन की बात करेंगे।
3: ओके, मतलब पहले आप टेस्ट करने वाले
4: हैं?
3: हाँ,
4: नहीं, टेस्ट मतलब कि हाँ, जैसे एक अच्छी बात ये भी होती है कि जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसके टेस्ट भी होते हैं, है ना। जैसे आपने ब्लड डोनेट किया तो आपके ब्लड के सारे टेस्ट भी होंगे, और लोग जो है ब्लड टेस्ट के लिए इधर उधर भागते रहते हैं कि पैसे भी खर्च करते हैं। हम तो कह रहे हैं आप आइए यहाँ पे, पता लगाइए, आपका ब्लड, आधे से ज्यादा टेस्ट तो ब्लड के हम खुद ही कर देते हैं,
3: है ना, आयरन के, हीमोग्लोबिन के,
4: आपके CBC कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसमें पता लग जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है, आपका प्लेटलेट का स्तर कितना है। फिर हम बाकी TTIs जिसको बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, DTIs, उनको हम लगाते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिफिलिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस B, C एंड HIV 1 and 2, इन सब की टेस्टिंग होती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, आपका फ्री में टेस्टिंग हो रही है, आप आइए टेस्ट कराइए, और वो भी गोपनीय रखा जाता है। अगर आप हमको इसकी आज्ञा देंगे कि हम आपको बताएं, तभी हम आपको बताएंगे, और ये सब कॉन्फिडेंशियल रहता है, इट इज टोटली कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर। आपको ये आपकी रिपोर्ट्स कहीं पे भी बाहर नहीं जाती हैं, पूरा का पूरा हमारे ब्लड बैंक में रहता है, और सिर्फ आपको ही कन्वे करते हैं।
3: थैंक यू सो मच सर बताने के लिए कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या फायदे होते हैं। बहुत सारे मिथ्स होते हैं, आज भी कई लोग यही यकीन करते हैं कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, हम वीक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी और हमारा ब्लड वापस से नहीं बनेगा। बट वहीं पर कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको अनीमिया जैसी भी अगर कोई बीमारी है, तो अगर आप एक सही तरीके से अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो उसे भी क्योर किया जा सकता है।
4: देखिए, अनीमिया तो ब्लड की कमी को कहते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी को कहते हैं।
3: जैसे कि अगर कोई कहता है कि मेरा 30% आ रहा है हीमोग्लोबिन
4: जी,
3: तो फिर कई लोग खुद को ऐसे में अपने आप को अनीमिया का पेशेंट बोल देते हैं कि हम अनीमिया से ग्रसित हैं, तो हम अपना ब्लड नहीं दे सकते। बट वहीं पर लोग कहते हैं कि आप अपना ब्लड देंगे, अगर आपका 12 से ऊपर है तो आप और भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं।
4: हमारा जो मानक है वो है 12.5 ग्राम। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम है, आप आइए ब्लड डोनेट करिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। उससे कम होता है तब हम लोग उसमें डोनेशन नहीं लेते हैं, फिर वो अनीमिया की श्रेणी में आता है। 10 ग्राम से 8 ग्राम तक मॉडरेट अनीमिया होता है, 8 ग्राम से नीचे वाले को हम सीवियर अनीमिया की श्रेणी में बोलते हैं। तो अनीमिया अगर किसी को है तो पहले तो मैं सलाह यही दूंगा कि पहले वो आयरन के से जुड़े हुए फल खाए, सब्जियां खाए, दवाइयां लेनी हो दवाइयां ले, अपने स्तर को बढ़ाए, 12.5 से ऊपर कर लो, उसके बाद आप डोनेट करो। अनीमिया ऐसा है कि उसको तो आप फल खा के ही, आपके खान पान में कहीं ना कहीं कमी होती है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया इन इंडिया इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में होता है आयरन डेफिशिएंसी, टू बी वेरी प्रिसाइज। आयरन डेफिशिएंसी मतलब हम आयरन युक्त भोजन नहीं कर रहे हैं। आयरन युक्त भोजन में आपका आता है खजूर होता है, चुकंदर होता है, अनार होता है, और गुड़ होता है
3: जी,
4: और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये सब आयरन से युक्त होती हैं। आयरन शरीर में जब जाएगा तभी आपका शरीर हीमोग्लोबिन बनाएगा, खून बनाएगा, और हम इन्हीं सब चीजों से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हमें खानी है चाउमीन तो हम मतलब अपना अनीमिया तो दूर नहीं कर।
3: सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जब कोई इंसान ब्लड डोनेट करके जाता है तो मेनली आप उसे किन चीजों को अवॉइड करने को बोलते हैं? जैसे कि टीवी में दिखाया जाता है, कई लोग देखते हैं कि ब्लड डोनेट किया तो तुरंत ही एक ऑरेंज जूस का ग्लास मिल गया कि हमने ऑरेंज जूस पी लिया, क्या रियल लाइफ में वो तुरंत ऑरेंज जूस देते हैं, या फिर आप लोग कुछ चीजें अवॉइड करते हैं कि आपको इस दौरान तो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं खानी है?
4: जिस दिन डोनेट करते हैं उस दिन हम उनको, जैसे ही डोनेशन होता है उसके बाद हम ये अवॉइड करते हैं कि वो, जैसे सपोज करिए अभी आपने डोनेट किया
3: जी,
4: हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप झुको, अभी आपको झुकना नहीं है, झुक के, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने जूते पहनने के लिए झुक जाते हैं, कहते हैं झुको मत अभी, है ना, थोड़ा चक्कर आ जाएगा, अभी लेटे रहो, पैर ऊपर करके लेटे रहो, चक्कर क्या होता है कि जब अपने आपके शरीर से थोड़ा खून निकलता है तो हम चाहते हैं कि वापस खून जो है वो आपके मस्तिष्क में पहुंचे, तो थोड़ा अपनी अपने पैरों को उठाएंगे तो सारा जो ब्लड है वो टुवर्ड्स आपके ब्रेन की तरफ फ्लो करेगा, तो चक्कर आने का और डिजीनेस चक्कर आना ये सब जो है ये सब नहीं होगा। हम बोलते हैं रिलैक्स करिए, उसके बाद फिर उनको हम एक जूस देते हैं, एक ग्लूकोज बिस्किट देते हैं, एक पैकेट छोटा, खाओ रिलैक्स करो 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स तक हम उनको रिलैक्स करने देते हैं, फिर आप जा सकते हो। आप जो है कोई भारी भरकम काम इतना जल्दी मत करना, खाना खाओ शाम को, मतलब जब भी आपका खाने का जो समय है वो खाना खाओ, धूप में ज्यादा मत निकलना, धूप में जब निकलने में तो वैसे ही चक्कर आ रहा है आजकल, इतनी गर्मी थी अब थोड़ी सही हुई है, तो हम तो अवॉइड करते हैं कि भैया कोई भारी भरकम काम अभी फिलहाल मत करना, और नेक्स्ट डे से अपनी नॉर्मल दिनचर्या स्टार्ट करो और आयरन युक्त भोजन करो।
3: थैंक यू सो मच सर, कोई लास्ट मैसेज?
4: बस मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहूंगा कि गोंडा की जनता को कि आप आइए और रक्तकोश में जो है आप आएंगे तो आपका एक खून का रिश्ता बनेगा हमसे,
3: क्या बात है,
4: और इस खून के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए किसी के कहने पे मत आइए, आप जो है पहले जो है एक्सपेरिमेंट करिए, मतलब आपको लग रहा है कि खून देने से खून कम होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है, खून देंगे आप तो आपके शरीर में नया खून बनेगा, नया खून, नए कपड़े चमकदार होते हैं ना वैसे ही नया खून जो है वो नया एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके शरीर, तो आप आइए बेझिझक आइए, जब चाहे तब आइए, 24 घंटा आपका आपके जिले का रक्त केंद्र 24 घंटे खुले रहता है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, हम मानकों के अनुसार ही रक्त लेते हैं और मानकों के अनुसार ही सेफ रक्त प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ किसी तरह का भी कोई भी परेशानी नहीं आती है, और कभी भी आप स्वतंत्र हैं कभी भी मुझसे संपर्क करने के लिए, मैं आप मेरा पता वही है जिला रक्तकोष जिला गोंडा। थैंक यू
3: सो मच सर, आपना कीमती वक्त निकाल कर आए हमारे साथ बातचीत करने, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली आपसे,
4: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहेंगे हम, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना FM जे जे विज्ञान असली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, बाय बाय, टेक केयर।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

करार। और फाइनली वो सैटरडे आ गया है एंड यस वेलकम टू माय शो, आपके आरजेबीना वाला शो, गुंडा मस्त मसाला आरजेबीना वाला आपका स्वागत करता है इस बेहतरीन सी शाम में, जहां बातें होंगी, जहां प्यार के जज्बातों के जो खेल हैं उनको हम लोग ट्विस्ट से अनट्विस्ट करेंगे, और जितने भी अनटोल्ड क्वेश्चंस हैं उनसे आप रूबरू होंगे। हो सकता है वो सवाल आपके मन में भी, आपके जहन में भी किसी कोने में बैठा आपसे सवाल कर रहा होगा कि भाई पूछ लेना, क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना हैरान है, आखिर क्या है तेरे दिल में ऐ बंदे, क्यों तू इतना गुमसुम परेशान है। तो परेशानी का होगा जहाँ सोल्यूशन, वहाँ होती है आरजे बीना एंड डॉक्टर लव। वेलकम टू द सैटरडे, जहाँ बातें होती हैं आपके प्यार से जुड़ी, आपके दिल से जुड़ी, आपके जज्बात से जुड़ी, और जज्बातों का खेल जिन्होंने आपके दिल को इसी सितार की तरह बजा दिया, जैसे बीच में आके मेरी ज़िंदगी को ऐसे वाइब कर दिया, वैसे ही आपकी ज़िंदगी को भी वाइब्रेट करके रखा है। तो मैं चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में ये सितार वाइब्रेट ना करें, आपकी ज़िंदगी को स्मूथली एक गिटार की धुन पे बजने दें। तो मैं तो जैसे कि आपको बता रही हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी बेहतरीन नहीं बजाया, नहीं सुना, तो प्लीज़ अपने मन का रेडियो बजाइए और आरजे बीना के साथ 6393316429 पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। एंड यस, इट इज़ वेरी रियल दैट अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, वो भी सही जगह। देखो, शेयर करने का मतलब ये भी होता है कि आप कहीं भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर दो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही जगह अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हो ना, तो सोल्यूशन के बजाय उस प्रॉब्लम का फालूदा ज़रूर बन जाता है। तो मेरे साथ आप लोग भी बजाइए अपने अपने मन का रेडियो, एंड यस, मन का रेडियो बजेगा दोस्त तो सोल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा बॉस। तो चलिए सुनते हैं फिल्म रेडियो से मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट और सभी का फेवरेट गाना,

आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपको फीलिंग आए कि कोई दिल ले गया पर वापस ला के दिल दे भी गया? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, दिल लेके फिर कोई दिल दे के गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको, क्योंकि गाना सुनिए फिर इसके बाद वाला गाना आपको आंसर भी दे।

भाई दिल लेके जाने वालों की कमी नहीं है, पर हाँ ये भी बताऊं कि बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो दिल लेके वापस दिल वापस नहीं करते हैं। हाँ लेकिन एक दिल देना पड़ता है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: सुबह बस से आज भी ना आप लोग के साथ है और भाई करनी है बहुत सारी बात, तो किस लिए हो देरी मेरे जनाब। फिलहाल गुड इवनिंग धर्मेश, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। और यस, डॉक्टर लव वाली शाम में आप सभी का स्वागत है। एंड यस, कल तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी मूवीज़ वाली, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में आप लोग बहुत दिनों से जानना चाह रहे थे, लेकिन आज जो जानने वाली चीज़ है वो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, क्योंकि जैसे कि आप सभी ने देखा है कि आज जज्बातों का खेल तो चलता ही रहता है और लोग दिल लेना ऐसा करते रहते हैं। पर हाल ही में मैंने एक न्यूज़ देखी, भाई किडनी दे के कोई वापस मांग रहा है। अब सोच रही होंगी आरजे बिना कोई हंसाने वाली बात कहने वाली होंगी। नो, आई एम एब्सोल्युटली सीरियस। मैं बिल्कुल सीरियस मोड में आप लोगों से बात कर रही हूँ कि अभी जल्दी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें एक कपल है जो कि काफ़ी एक दूसरे से प्यार करता है, और कपल में जो एक मतलब फीमेल है हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं, इनकी दोनों किडनी फेल हो जाती है और उनके पति उनको अपनी एक किडनी दे देते हैं। प्यार में जैसे दिल दे दिया वैसे ही किडनी भी दे दी, और मुझे लगता है अब गाना बनाना पड़ेगा, किडनी देनी ही पड़ती है, किडनी लेनी ही पड़ती है। तो जी हाँ, उन्होंने अपनी किडनी अपनी पत्नी को बड़े ही प्यार से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मोहब्बत से कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के कहीं जाए ना, और उसे अपनी किडनी दे दी, जिससे कि अब मेरी पत्नी उनकी पत्नी आराम से रह सके। लेकिन कुछ ही सालों बाद पत्नी ने डाइवोर्स दे दिया अपने पति को, और पति ने क्या कहा खुद सोच के बताइए। हंस रहे हैं ना? हंसने की जरूरत नहीं है। पत्नी ने जब डाइवोर्स ले लिया तो पति ने कहा कि भाई मुझे ना मेरी किडनी वापस दे दो। और भाई इस न्यूज़ को देख के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब एकदम तहलका मच गया कि कैसे भाई ऐसा संभव है कि कोई किडनी दे के वापस मांग रहा है। जी हाँ, जनाब ने अपनी किडनी दी और जनाब अपनी किडनी मांगने लगे, बोले अगर मेरी किडनी वापस नहीं करोगी तो मुझे $1.2 million वापस दो पैसे के तौर पे, नहीं तो मैं अपनी किडनी किसी तरह से भी ले लूँगा। और उन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया। तो भाई ऐसा अगर आपके साथ हो फिलहाल तो इंडिया में भी किडनी का लेन देन चलता है, लेकिन हाँ पति पत्नियों में कम सुना है, लेकिन अभी दिल वाला तो सभी का सुना है कि दिल देते हैं। तो दिल लेने देने का भी काम जो है ना आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो फाइनली आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई आपसे आके कह देगा कि मेरा दिल वापस करो। तो चलिए तब तक के लिए ये गाना सुनिए और एंजॉय करिए दिल देने और लेने के सफर को।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास?
3: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
4: डॉक्टर लव वाली शाम में आप सभी का स्वागत है और डॉक्टर लव हमारे साथ हमारी शाम में मौजूद हैं। डॉक्टर लव कैसे हैं आप? सबसे पहले अपने दिल का हाल बताइए और किडनी का हाल बताइए।
5: एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
4: What about the kidney?
5: Kidney is on its place.
4: मतलब इधर उधर तो नहीं हुई?
5: एकदम।
4: हाँ, आपने किडनी का लेन देन तो नहीं किया है कहीं?
5: हम खसखाते नहीं हैं ज़रा भी।
4: मतलब आपकी भाई 30 पत्नियाँ हैं, हो सकता है कोई किसी दिन कह रही हो कि भाई मेरी किडनी थोड़ी सी गड़बड़ा गई, एक थू दे दो।
5: नहीं, तुम कहेंगे इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे।
4: क्योंकि अभी मैंने न्यूज़ के बारे में आपको तो बताया ही कि एक जनाब US के थे, उन्होंने अपनी पत्नी को किडनी दे दी, पत्नी ने दे दिया तलाक, फिर वो अपनी किडनी मांगने लगे।
5: ये कोई बात नहीं।
4: अब फिर कह रही है नहीं देंगे तो कह रही है मुझे $2 million, मुझे पैसा दो।
5: मतलब अगर आपने किडनी दे दी तो हमारे इसीलिए हमारे यहाँ किडनी नहीं दी जाती है।
4: दिस इज लाइक द खुन्नस। मतलब देखिए, बात तो उसकी सही है, भाई ने अपनी किडनी निकाल के दी, दो किडनी भगवान ने दी, भाई चार छठू होती तो बात लगती। एक दो ठू किडनी जिसमें अगर उसकी खराब हो जाए तो बेचारा किससे कटोरा लेके भी मांगेगा। उसने अपनी एक किडनी दे दी तो उसको भी सोचना चाहिए था, तलाक तो नहीं देना चाहिए था।
5: नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। मतलब किडनी लेकर तलाक देना ये गैर कानूनी है,
4: तो इस बात को लेकर उसने कोर्ट में याचिका बाकायदा दायर की है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ डॉक्टर लव
5: जी,
4: कि अगर किसी इंसान ने अपना दिल दिया, वो अपना वापस दिल मांगना चाह रहा है, क्या वो कोर्ट में केस कर सकता है?
5: नहीं कर सकता है।
4: कायद किडनी वाले कर सकते हैं, दिल वाले नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत, सरासर धोखाधड़ी है।
5: दिल देना दिल लेना है सौदा खरा खरा। अब आपने जब दिल दिया तो फिर
4: सामने वाले अगर दिल सामने दिया। मान लीजिए सामने वाले ने अपना दिल दे दिया।
5: हाँ।
4: ठीक, दे दिया।
5: हाँ।
4: लेकिन उधर से दिल वापस नहीं मिला,
5: तब तो तुरंत
4: नहीं
5: तो
4: इस पहले मामले में बात हो रही है।
5: अच्छा, इस मामले में बात हो रही है, तब तो तुरंत। भाई मेरा अनुमान है कि तुरंत पहले ये जो है वो एफिडेविट करा लेना चाहिए कि हम यहाँ से दिल दे रहे हैं, उधर से आपको दिल देना हो तो स्वीकार।
4: तो वही मतलब दिल को लेके इतनी बातें होती हैं, लेकिन दिल को लेके कोई सिक्योरिटी की बात नहीं आज के
5: डेट। हाँ, मतलब एफिडेविट होना चाहिए इसका जो है वो।
4: गुड इवनिंग सबलू जी, कैसे हैं आप? तो एफिडेविट हो या जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है दिल को लेके बहुत सिक्योर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल दिल के मामले में बड़े धोखाधड़ी हो रही है।
5: बहुत धोखाधड़ी है, अब क्या बताएं।
4: यहाँ एक से इधर दिल ले लिए, एक से उधर दिल ले लिए। मैंने तो ये भी देखा है कि लड़के, मतलब लड़कियां भी कर सकती हैं मैं भी, लेकिन लड़कों को मैंने ज्यादातर देखा है कि अपनी मतलब एक गर्लफ्रेंड बना ली है कॉलेज में, उसका दिल तो ले ही रही है, साथ में उसकी सखी का भी दिल लेके घूम रहे हैं।
5: अच्छा, ये बात।
4: पैंट में दो जेब है तो मतलब सब यूटिलाइज ही कर डालेंगे क्या?
5: हाँ, मतलब क्या,
4: एक जेब में एक दिल रख ली, एक जेब में एक दिल रख दिए, कहेंगे कि पीछे भी दो ठू जेब है, उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे।
5: मतलब लड़कों का आप जो है जेब वो दिल रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, केक करने
4: के लिए। जी जी बिल्कुल जी। और बताइए आज आपके क्लिनिक पे कोई ऐसा?
5: अरे बहुत जबरदस्त क्लिनिक पे आया तुरंत जो है वो। समय उनका खराब चल रहा था, हमने समय सही कर दिया।
4: किसका?
5: उन्हीं का जो आए थे।
4: अच्छा, क्या हुआ था उनको?
5: अब उनकी जो है वो पत्नी उनसे हमेशा जो है नाराज रहती थी।
4: किस बात से? पत्नियां तो आज हाँ, सभी की नाराज रहती
5: है। हमने कह दिया कोई बात नहीं, तुम नंबर दो, हमने नंबर दे दिया, फिर पत्नी भाग गई। हमने कहा टेंशन खत्म।
4: पत्नी कहाँ भाग गई?
5: भाग गई,
4: चलो मारा नहीं, यही सही है।
5: हाँ।
4: मैं तो कहती हूँ पत्नी भाग जाए वो ठीक है।
5: हाँ।
4: दाग अच्छे हैं, पत्नी आपको पैक करके ना जाइए। भाई मैं तो सुनी सिलेंडर काट डाल। मतलब लड़कियाँ आजकल कितनी, मतलब कहते हैं ना कि लड़कियाँ चांद पे जा रही हैं, तो वाकई में लड़कियाँ चांद पे जा रही हैं। और बहुत मतलब मैं दिमाग की बात करूँ कि साइंटिस्ट दिमाग है लड़कियों का। सिलेंडर को बाकायदा नीचे से काटा, सिलेंडर में बॉडी को पैक किया, फिर बाकायदा वो क्या कहते हैं उसको, बिल्डिंग मशीन आती है, फिर बिल्डिंग कर डाला भाई, फिर सिलेंडर पहुंच गया सिलेंडर वाले उधर में, वो कौन सा वो स्टेशन होता है रिफिलिंग के लिए, तो पता चला गैस नहीं जा रही है, सिलेंडर बहुत भारी था।
5: अरे क्या बात है
4: भाई, निकला बॉडी।
5: तो मतलब ये आप एकदम अपडेट रहते हैं।
4: हम आजकल बहुत अपडेट बैठे हैं।
5: मतलब आप, मतलब ऐसे विचारों को अपने मन में जगह मत दीजिए।
4: नहीं मैं जगह थोड़े देरी मैंने तो न्यूज देखी तो मैंने सोचा आपसे साझा कर दूं।
5: हाँ नहीं मतलब हम
4: सतर्क रहें सतर्क मतलब मैं उन लड़कों को सतर्क कर रही हूँ भाई, अगर पत्नी जाने का प्रयास कर रही है भागने का या घर छोड़ने का तो चुपचाप से व्हाट्सएप मैसेज देख के आप आंखें बंद कर लीजिए कि मैंने कुछ देखा नहीं। चैट देखी तो एकदम आंखें मूंद लीजिए नहीं तो परमानेंट मूंद लेंगे।
5: पत्नी का मोबाइल तो बिल्कुल मत चेक कीजिए, पाबंदी एकदम मत लगाइए, जो कहे वो लाकर दे दीजिए। जानकारी ही बचाव है
4: और क्या।
5: सुरक्षा रखिए अपनी पूरी,
4: स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए।
5: हाँ सुरक्षित
4: नहीं तो सुरक्षित होने में टाइम नहीं लगेगा।
5: मतलब
4: जनहित में जा रही है।
5: हाँ जनहित में जा रही है।
4: हम तो भाई जागरूक कर रहे
5: हैं, जागरूक कर रहे हैं, बहुत जरूरी है जागरूक करना।
4: मतलब जागरूक ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपको भी, वैसे तो आप एक्सपीरियंस हैं, आपके पास तो रोज ही ये सब मामले आते ही रहते हैं, शंका से भरे हुए मामले। और एक जो वो लड़की आई थी उसका क्या हुआ, जो कह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड जो है किसी और लड़की से बात कर रहा है, उसको डाउट है लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रही, उसका क्या हुआ?
5: हमने दोनों को हटा दिया रास्ते से।
4: मतलब
5: क्या किया आपने?
4: मतलब क्या किया
5: कि आवश्यकता क्या है जो तुमको प्यार करने की?
4: आवश्यकता आवश्यकता आविष्कार की जननी
5: है, मम्मी है तो हम मम्मी है ठीक है, लेकिन वो आवश्यकता ने आविष्कार को जन्म दिया है। आपको लगता है कि आवश्यकता आविष्कार को जन्म दे सकती है?
4: आवश्यकता आविष्कार तो ऑब्वियसली, जैसे आपको आवश्यकता है घर में किसी मतलब ऐसे कपड़े की जिसको आप क्या करें बाइक पोछ सके, तो आपको आसपास दिखता कोई भी पत्नी का दुपट्टा आप पोछने लगते हैं, फिर उसके बाद आपके ऊपर आविष्कार हो जाता है दो चार बेलन का।
5: अच्छा,
4: तो यही आविष्कार आवश्यकता थी, फिर आविष्कार हो गया।
5: मतलब ये आत्म अनुभव बता रही हैं आप?
4: नहीं आत्म अनुभव नहीं बता रहे हैं, आपके क्लिनिक पे आने वाले लोग जो बताते।
5: अच्छा
4: हैं।
5: ये वही
4: क्लिनिक पे बैठती किस लिए हूँ, सुनती ही तो रहती हूँ। ये आधे मामले तो आपके क्लिनिक के ही हैं।
5: आधे मामले क्लिनिक के हैं, मतलब हमको तो लगता है 75% 75% में ऐसा हो रहा है।
4: हाँ वो टावर वाला मामला भूल गए, जो अभी डीएम बंगले के पास एक औरत दो बच्चों को लेकर टावर पे चढ़ी थी।
5: हाँ चढ़ी थी,
4: क्या स्टोरी थी बता दीजिए।
5: पता नहीं स्टोरी क्या थी, हमको स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमको
4: बड़ी खतरनाक थी,
5: खतरनाक।
4: वो आपके यहाँ भी आई थी लेकिन आपने उस दिन क्लिनिक बंद किया हुआ था, गए थे आप अपनी सखियां कह रही हूँ पत्नियों के साथ कहीं रासलीला करने।
5: हाँ तो हम जाते हैं
4: तो आप जान रहे हैं उसके साथ समस्या ये थी कि उसको अपने पति के साथ नहीं रहना था, बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन मुझे उसका ये सही लगा भाई, टावर पे चढ़ गई, किसी को हार्म नहीं किया।
5: अच्छा टावर पे चढ़ गई, फिर क्या हुआ?
4: फिर क्या हुआ, फिर सब अधिकारी लोग गए भी जल्दी की तो बात है, न्यूज में आया था, आप सुनते नहीं
5: न्यूज।
4: आपके यहाँ पूरा मतलब लिख के देके गई थी कागज पे कि डॉक्टर साहब हमको ये समस्या, हमको जरा सा ये सलूशन दे दीजिए कि हम अपने पति को बाइज्जत मतलब डाइवोर्स दे के अपने मतलब बॉयफ्रेंड के साथ अपने दोनों बच्चों के साथ रह सके।
5: लेकिन हमको ये लगा कि जो है वो जो पति के साथ नहीं एडजस्ट कर पा रही है वो बॉयफ्रेंड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी।
4: अच्छा क्यों नहीं कर पाएगी?
5: अरे क्यों भाई, दो बच्चे हैं उसके।
4: भाई आपको पीली शर्ट नहीं पसंद, आपको सफेद तो पसंद है ना।
5: अब हम आपको एक चीज बताए, यही जो है महिलाओं के, हम अपनी पत्नी के साथ जो है वो चले गए अभी परसों की बात है शर्ट खरीदने।
4: श्रोता लोग अगर आपके घर में भी ऐसी कोई अनसुलझे सवाल या ऐसे मन में ख्याल आ रहे हैं तो 6393 नंबर आप ही के लिए।
5: हाँ तो परसों हम गए अपनी पत्नी के साथ शर्ट खरीदने।
4: क्यों आपके पास शर्ट नहीं थी?
5: नहीं शर्ट थी, पुरानी हो गई, उसने कहा नई शर्ट ले लो, हमने कहा चलो।
4: क्यों नहीं क्यों खरीद रहे हैं, मतलब आजकल तो वो चल रहा है ना खरमाश शर्ट।
5: कुछ भी चल रहा हो, नहीं मानती है वो सारी चीजों को।
4: नहीं मानती है?
5: हाँ?
4: नहीं मानती है इतनी। हाँ? सारी हैं तो 30 शर्ट पा गए खटखट।
5: नहीं नहीं तो अब एक शर्ट हम ले, उन्होंने कहा कि शर्ट दिखाओ तो उसने शर्ट दिखाई, तो 5-6 रंग की शर्ट दिखाई, तो उसने कहा कि ये लाल वाली शर्ट अच्छी है। तो अब कौन सा ऐसा पति है दुनिया में जो पत्नी की बात न कर दे। हमने कहा हाँ लाल वाली शर्ट अच्छी है, उन्होंने कहा ये तुम पर खिलेगी बहुत, हमने कहा हाँ बहुत खिलेगी। तो उसने कहा लेकिन ये लाल वाली शर्ट हमारे पास है, हमने कहा हाँ लाल वाली शर्ट हमारे पास है। तो उसने कहा नीली वाली ले ले, हमने कहा नीली वाली ले लो, कहीं तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी, हमने कहा हाँ हमारे ऊपर अच्छी लगेगी, कहीं लेकिन इसका रंग उतर भी सकता है, हमने कहा हाँ रंग उतर भी सकता है। तो हमने कहा नीली वाली को न लो, ये सफ़ेद वाली ले लो, हमने कहा हाँ सफ़ेद वाली ले लो। उन्होंने कहा लेकिन जरा गर्मी आ रही है, जाओगे जो है धूल वगैरह पड़ेगी, एक दिन से ऊपर पहन नहीं पाओगे। हमने कहा हाँ, एक दिन से ऊपर नहीं पहन पाएंगे। तो कहीं सफ़ेद वाली नहीं लेते हैं। हमने कहा मत लो। उसने कहा ये पीली वाली ठीक रहेगी। हमने कहा हाँ ये पीली वाली ठीक रहेगी। उन्होंने कहा पीली वाली ले लेते हैं। हमने कहा पीली वाली ले लो। कहीं थर्सडे को इसको पहन लेना। हमने कहा थर्सडे को इसको पहन लेंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास पीली है भी नहीं? हमने कहा बिल्कुल हमारे पास पीली शर्ट है भी नहीं। उन्होंने कहा एक है जो गंदी हो गई है। हमने कहा एक है जो गंदी हो गई है। अब उसने अंततः नीली के अंत में हमको लगता है वो नीली वाली ठीक रहेगी। हमने कहा हाँ नीली वाली ठीक रहेगी। अब उसने नीली वाली शर्ट ले ली।
4: पीली वाली नहीं ली?
5: नहीं ली।
4: क्यों?
5: मैं
4: नीली वाली को तो रंग उतरने वाला था
5: मतलब। हाँ तो ने कहा लेकिन इसका रंग उतरेगा? नहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं उतरेगा। कहीं क्योंकि मुफ्ती की। हमने कहा मुफ्ती की है। तुमने कहा यही ले लेते। हमने कहा बिल्कुल
4: नहीं। आप मुफ्ती का प्रचार कर रहे हैं?
5: नहीं, हम बता रहे हैं कि रंग उसका नहीं उतरता है।
4: अच्छा
5: अच्छा। अब हुआ ये कि इत्तेफाक के साथ उन्होंने कपड़े भिगोए और नीली वाली ने रंग छोड़ दिया।
4: पीली वाली नीली हो गई कि सब?
5: अब सोचिए, अब जब नीली वाली हो गई तो उसने हमारी पत्नी ने हमसे कहा देखा तुम हो दो कौड़ी के इंसान, अकल तुम्हारे पास है ही नहीं। मैं कह रही थी नीली वाली रंग छोड़ेगी लेकिन तुम माने नहीं। मैंने कहा आपने कहा था तो जो पत्नी कहे वही सही है। मतलब पत्नी के विरोध में जाना
4: खाता ना वही पत्नी जो कहे
5: कहे वही सही। हम तो यही
4: तो चलिए कोई बात नहीं। ये सब सही और गलत का जो कहते हैं ना कि झमेला यही चलता है,
5: झमेला चलता रहेगा।
4: हम प्यार के सौदे की बात करते हैं जो कि बिल्कुल खरा है और खरा ही रहेगा,
5: खरा ही रहेगा।
4: लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म गुड न्यूज। अगर आपकी जिंदगी में भी गुड न्यूज नहीं आ रही है काफी दिनों से, डॉक्टर लव से करे संपर्क। शुभ संध्या शिल्पी जी, कैसी हैं आप? शुभ संध्या कमल जी, वापस से आपका स्वागत है। डॉक्टर लव ये सब आपके बहुत प्यारे से मतलब लिसनर हैं और साथ ही मुरीद भी कह सकते हैं। आपकी बातों को बहुत दिल से फॉलो करते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

0: सो डॉक्टर लव, आपके मन में जो सवाल है वो अपने श्रोताओं से कर ही लीजिए ना, कि आजकल ये लोग या तो शादी कर चुके हैं या संन्यास ले चुके हैं।
1: मतलब अगर आपने विवाह नहीं किया है तो हम जनहित में जारी ये कहते हैं कि ना ही कीजिए।
0: क्यों
1: न कीजिए? मतलब जरूरी है कि यदि इंसान दुखी
0: है। कहते हैं सबलू जी, डॉक्टर लव ने मरीज को रोजाना 10 किलोमीटर चलने को कहा। साल भर बाद मरीज ने डॉक्टर लव को फोन किया, अफगानिस्तान पहुंच गया हूँ, यहीं रुक जाऊं या रूस की तरफ निकल जाऊं?
1: ऐसे
0: आज्ञा मानेंगे आप लोग तो सच में आप लोग ही अच्छे शिष्य माने जाएंगे, अच्छे मरीज माने जाएंगे, और आप जैसे मरीजों को ही सफलता मिलती है। देखिए अफगानिस्तान पहुंच गए और आने वाले समय में गिनीज वर्ल्ड बुक में आपका
1: नाम
0: हो जाएगा दर्ज। बुद्धि जी बिल्कुल आ गए हमारे साथ, शुभ संध्या। सविता शास्त्री जी शुभ संध्या, डॉक्टर साहब की तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसी हैं आप और क्या हाल है आपके, और कैसी हैं आप, माहौल कैसा है आपके गोरखपुर का, बारिश वरिश हुई कि नहीं? हमारे गोंडा शहर में तो बारिश हुई, बारिश के साथ साथ आंसुओं की भी बारिश मुझे लगता है आज हुई है, क्योंकि अक्सर मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ शनिवार को बारिश जरूर होती है, क्योंकि डॉक्टर लव से मिलने वाले लोगों की जो है गोंडा शहर में तांता लग जाता है और आधे से ज्यादा आंसू बहाते हैं, और इसी वजह से गोंडा शहर में बारिश हो जाया करती है।
1: ये हुआ कि बाढ़ ना आ जाए इसलिए हम बहुत कम पेशेंट देखते हैं।
0: हाँ भाई, शनिवार को मैं तो कहती हूँ मतलब किश्तों में देखिए, जिससे जमीन पानी का जो बहाव है उसको बर्दाश्त। मैं तो उधर गोनार्द के पास थी, जैसे लग रहा था मैं बह ही जाऊंगी। तब आपको कॉल किया कि कुछ मरीजों को हंसाइए।
1: हाँ मतलब एकदम, हाँ तुरंत हमने मरीजों से कहा, हमने कहा कल आना, समस्याएं आपके पास ज्यादा है, अब हम सोच रहे हैं लिमिटेड कर दें, 25 मरीज कर दें, क्या लगता है आपको?
0: टॉप 25 कर दीजिए, मतलब हफ्ते भर हम लोग क्या करें, मरीजों का एक मतलब लिस्ट बना लें और 25-25 करके हर दिन बांट दें।
1: हाँ 25-25 करके, मतलब 25 से ऊपर।
0: लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में कोई बाउंडेशन नहीं लगा पाऊंगी भाई, मेरा प्रोग्राम हफ्ते में एक दिन आता है और हर दिन आपको मतलब हर दिन आप देखते हैं अपने क्लिनिक पे, तो अपने 25 लगाइए चाहे 50, मेरे पे तो आपको सारे मेरे शो में आपको सारे मरीजों को बराबर टाइम देना पड़ेगा।
1: बराबर टाइम, एकदम बराबर टाइम है। शनिवार को नो लिमिट।
0: आप चाहे एक दो दिन खाना पहले ना खाइए, लेकिन आने के बाद यहाँ सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है।
1: बिल्कुल तैयार, एकदम तैयार बैठे। कहीं तो खड़े भी हो जाए।
0: नहीं नहीं नहीं सर जी, खड़े होके कैसे जवाब दे पाएंगे? जवाब तो कोई भी मतलब इंसान जो है वो बैठ के भी दे सकता है। हाँ। ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल का उत्तर बैठ के ही दिया जाता है, क्यों डॉक्टर साहब?
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: अच्छा आपके यहाँ भी रोज शाम को बारिश हो रही है? देखिए डॉक्टर लव का देन है, आपके यहाँ भेज देते हैं, जब यहाँ बहुत ज्यादा मरीज हो जाते हैं तो कहते हैं कि जो एक काम करो, एक बार गोरखपुर का चक्कर लगा के आओ, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे।
1: हाँ, और हमने जो वादा किया था कि हम गोरखपुर में बरसाएंगे तो बरसा रहे हैं, अब आप बताइए कहाँ कहाँ बरसात है।
0: अच्छा कहाँ कहाँ बरसात है, चलिए देखते हैं। फिलहाल जहाँ भी बरसात होगी आपकी एक मरीज का कॉल।
2: हेलो
0: शुभ संध्या, आपका शुभ नाम। हेलो शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
2: मैं पहचान गई होंगी मेरा नाम।
0: कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे दिमाग में नाम याद नहीं आ रहा है।
2: मैम मेरा नाम बताइए, आप जानती हैं?
0: अरे पहले आप सवाल और अपना नाम तो बताइए, डॉक्टर लव नहीं जानते हैं आपका नाम। निशा
2: जी आप जान गई,
0: तो डॉक्टर लव से बात करिए। डॉक्टर लव आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं।
2: तो मेरा दो समस्या है आज।
1: अरे आप 200 लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं।
2: सर सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम।
2: सर मेरे पास दो समस्या है, पहला समस्या तो ये है कि हम इससे कोई काम कहा जाता है तो हम भूल क्यों जाते हैं सर?
1: बिल्कुल ये बात बहुत बहुत अच्छी बात है, ये
2: हम
1: बात
2: भूल जाते हैं।
1: हाँ क्योंकि आप काम करना चाहती हैं बहुत समर्पण के साथ, इसलिए भूल जाती हैं।
2: तो हम क्या करें कि हम भूले ना, हम बहुत भूल जाते हैं।
1: आप एक घर वालों को कह दीजिए कि हमको कोई काम ना बताओ, ना वो बताएंगे ना आप भूलेंगे, ये सिंपल, ये तो बहुत साधारण बात है। आप भूल जाती हैं तो
2: कुछ करना नहीं है,
1: कुछ नहीं करना है। साफ साफ घर वालों से कह दीजिए कि भैया हम काम करना भूल जाते हैं, इसलिए हमको मत बताना काम आज के बाद।
2: बताइए क्या करना है, भूल जाते हैं इसका उपाय बताइए।
1: उपाय ये है कि घर वालों से बता देना है कि आप हमको काम मत बताइए।
2: अच्छा अच्छा। हाँ। और दूसरी समस्या तो ये है कि सिंपल की हमारी कॉल नहीं लगती है।
1: जी
2: किसी के पास कॉल नहीं लगती, सिंपल नहीं लगती है।
1: सिंपल मैम के पास
2: नहीं रहती।
1: हाँ, चूँकि वो सिंपल जी हैं तो वो नॉट सो सिंपल हैं, तो
2: उनके फोन नहीं रहता है सर।
1: हाँ, उनके फोन में बैटरी नहीं रहता है।
0: ये बात तो सही।
2: अरबीना मैम उनके पास में उनके फोन में नेटवर्क रहती है, फोन कनेक्ट हो जाती है, सिंपल मैम में नेटवर्क ही नहीं रहता, फोन ही कनेक्ट नहीं होती है।
1: हाँ, अब ये नेटवर्क की समस्या है। आप एक काम क्या कीजिए, जब आपको सिंपल मैम को फोन मिलाना हुआ करे
2: जी,
1: तो अपना फोन जो है वो साबुन से आप धुल लिया कीजिए।
2: साबुन से हाथ धुल लें?
1: नहीं, फोन धुल लें। हाथ धुलने से क्या दिक्कत है?
2: फोन धुल
1: लें। हाँ, साबुन से फोन धुलिए, विम बार साबुन से फोन धुलिए, स्क्रबर से उसको साफ कर दीजिए, उसके बाद मिलाइए, देखिए फोन मिलेगा।
2: सर खराब नहीं हो जाएगी जब अंदर पानी चली जाएगी फोन?
1: बिल्कुल नहीं खराब होगा, बस आप सिंपल मैम के टाइम पर अगर आप मिलाएंगी तो नहीं खराब होगा। अगर नेटवर्क संबंधी फोन में कोई समस्या है तो पहले विम बार से धुलाई करें, इसके बाद फोन मिलाए। हाँ,
2: तो पकड़ लेगा?
1: पकड़ लेगा, ऐसा पकड़ेगा कि फिर छोड़ेगा नहीं।
0: वाह क्या बात।
2: क्योंकि मैंने वैसे मैम मेरी देखती नहीं, इसलिए मुझे कॉल करना पड़ता है तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ती, इनके फोन में सबके फोन में पकड़ता है।
1: हाँ, तो बस उनके फोन को जब मिलाना हो तो उसके पहले आप विम बार से धुलिए।
0: दुख की बात है सर।
2: सर और ठीक है?
1: जी और ठीक है।
2: ओके सर, थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो भाई नेशा की समस्या का समाधान हो गया। मुझे लगता है ये समस्या बहुत लोगों की कॉमन समस्या है कि कोई काम बताता है तो वो काम हम भूल जाते हैं। और सबलू जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब कोई अच्छी दवाई दे दीजिए, सिर दर्द हो रहा है बहुत, डॉक्टर लव जांच करने के बाद। अच्छा, ये कुछ सिचुएशन बता रहे हैं कि डॉक्टर लव से किसी ने कहा कि दवाई दे दीजिए, सिर बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर लव ने जाँच की और इस समय और उन्होंने बताया कि इस समय आपको आराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं नींद की गोलियाँ दे रहा हूँ, इन्हें रात को अपनी बीवी को खिला देना। क्या बात है, सरदर्द पति का है, दवा पत्नी को दी जाएगी।
1: तो सरदर्द क्यों है?
0: अच्छा,
1: इसलिए हमने सरदर्द को सुला दिया।
0: वाह क्या बात है। हाँ। आपने मतलब कितने आसानी से समस्याओं का समाधान निकाल दिया है। आप वाकई में डॉक्टर नहीं, आप सुपर हीरो बनने वाले हैं आज की डेट में।
1: हम बन चुके हैं।
0: क्या कहना, मतलब आपके लिए जितने शब्दों का प्रयोग किया जाए वो कम होगा। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना आप ही के साथ इस प्यारी सी शाम में। और अगर आपको भी लग रहा है कि आपके दिल के मोहल्ले में कोई ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो भाई आपके लिए ही डॉक्टर लव बने हैं, आप कर सकते हैं बात। तो आइए सुनते हैं गाना दिल के मोहल्ले। हम लुटके बेबिया के तेरे मोहल्ले, लेट्स एंजॉय।

0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपको ये सितार वाला म्यूजिक बहुत पसंद है, जैसे आने से पहले ही आपने बता दिया था कि वो तबला और सितार वाला म्यूजिक बता देना, आज मैं वही पूरे मतलब मेरे प्रोग्राम में चलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इससे मरीजों का दिमाग ठंडा रहता है, क्या ये बात सच है?
1: एकदम एकदम बहुत जबरदस्त, मतलब म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव।
0: म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, फूड मतलब खाना, म्यूजिक मतलब संगीत और लव मतलब प्यार। म्यूजिक प्यार का खाना है,
1: बिल्कुल निसंदेह। आप कभी भी देखिए तो मतलब आपको लगे।
0: कभी प्यार को खाना खाते तो नहीं देखा। आप में से कौन ऐसा जुल्मी है जिसने कभी देखा है म्यूजिक का मतलब क्या? मैं नहीं आ रहे, मतलब क्या कंफ्यूज कर डाले, प्यार को क्या खाते हुए, संगीत खाते हुए किसी ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा भाई।
1: नहीं देखा मतलब वो असली में खाता थोड़े है, लेकिन जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत में संगीत बहुत आवश्यक है।
0: संगीत ना होते क्या? आपकी शादी में तबला तक बजा नहीं था, बता रहे हैं कि
1: हमारी शादी में बिस्मिल्ला खां का सहनाई बजाए थे।
0: कह रहे हैं कि म्यूजिक बहुत जरूरी है, इनकी शादी में तबला तक नहीं मतलब बैंड बाजा भी नहीं था। काहे जैसे इनकी सर्जरी की बारात निकली, हम लोग गए थे इनकी शादी में, हम छोटे छोटे थे, बहुत छोटे
1: बहुत छोटे थे,
0: तो मतलब मेरी सरबाला बनने की उम्र थी, लेकिन मैं सरबाला लड़की थी तो इसलिए सरबाला बन नहीं पाई, तो मतलब मैं शादी में बढ़िया घूमते टहल रही
1: थी। आप सहबाली बनी थी?
0: सहबाली, हाँ, यस यू आर राइट। तो डॉक्टर लव मतलब भैया ऐसे घोड़ी चढ़े मतलब चल दिए शादी में दूल्हा बन के, तब तक भाई तूफान आ गया, जैसा कि डॉक्टर वाला काम इनका तब भी चलता था, मरीजों ने अपना मतलब आह भरी रोना शुरू किया, डॉक्टर साहब हमारा मरीज है, तो तुरंत मतलब तूफान उठा, ऐसा तूफान उठा, बैंड बाजा से उड़ के इधर उधर चितरा गया, शादी के मंडप में पहुंचे, टेंट तंबू तनात सब गायब, खाली मतलब दुल्हन मिली
1: उसी से
0: मतलब वो 500 गाली दे रही थी, तू कराई मकायो रहा, तू कराई मकायो रहा। भाई मतलब डॉक्टर लव की उस समय जो हालत थी ना, ये तो कहिए शादी हो गई, मतलब जैसे कहते हैं ना शुरुआत, पहली शादी हो गई, थोड़ा सा आधा बाधा आई, किंतु बाकी शादियों में बढ़िया एकदम नाचते गाते हुए डॉक्टर लव गए। हाँ भले म्यूजिक नहीं बजवाया, कह रहे हैं म्यूजिक मेरी शादी में छाछता नहीं है, तो म्यूट मतलब इमेजिन करो कि गाना बज रहा है, ब्लूटूथ लगा के सब अपने कानों में म्यूजिक सुनो और नाचते हुए जाओ। इन्होंने कहा था क्या कहते हैं, ब्लूटूथ्स आर मैंडेटरी फॉर माय शादी, जैसे कहते हैं ना कि शादी में जूते बहुत जरूरी हैं, वैसे इनकी शादी में सबके पास ब्लूटूथ बहुत जरूरी था। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आपका शुभ नाम? हेलो, नमस्कार जी, आपका शुभ नाम?
2: अंसारी बात कर रहा हूँ
0: जी, कैसे हैं अंसारी जी? शुभ संध्या।
2: शुभ संध्या मैडम, बस आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है।
0: बिल्कुल, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और गीत भी कभी कभी सुना दिया करें मंडे को। फिलहाल डॉक्टर लव आपसे जानना चाहते हैं क्या समस्या है
1: जी, क्या समस्या?
2: डॉक्टर साहब नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मुझे दर्द बहुत है, तो मैं हॉस्पिटल गया था।
1: तो कहाँ दर्द है ये तो बताइए।
2: बस सीने में दर्द है सर।
1: सीने में दर्द है
2: जी, तो मैं हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ पे हमने हर दुख सहन, हर घाव सहन, और बचेनीन तकाल से, और कुछ लोग हमका चकमा दे के भगे अस्पताल से, और ये लालचो और गुरूर और घमंड से बचन, और अब सुना है कि हर घाव ठीक होते भाई माल से
1: जी,
2: अब हर घाव ठीक होते अस्पताल में रेग माल से।
0: वाह वाह,
1: क्या बात, क्या बात है, मतलब रेग माल से जो है वो आपने इलाज कराया और आपका इलाज ठीक हो गया। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक सलाह दूंगा, आपके दिल में अगर दर्द उठा है तो आप दो दिल कर लीजिए
2: जी सर।
1: हाँ, उसका तरीका आपने गाना सुना होगा वो, ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में,
0: हाँ, हाँ,
1: एक टूट भी जाता
0: तो
1: इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। तो फिलहाल आप एक कोई सुंदर नवयुवती देखिए और उसका दिल ले लीजिए, जब आपके पास दो दिल रहेगा तो आपके दिल में तकलीफ नहीं रहेगी।
0: क्या बात हाँ।
2: क्या बात, वो तो बात सही है सर।
1: हाँ।
2: मगर हमने एक जमाने में
1: जी
2: कि दिल लगी से दिल लगाया था
1: जी,
2: दिल लगी के घर गए और दिल लगी ने मुस्कुराया, हम उसी से मर गए।
1: मर गए तो फिर जिंदा कैसे हुए? ये तो बात सही है।
2: तो सर जिस जगह मोहब्बत की कीमत न हो और उस जगह सर झुकाने से क्या फायदा?
1: क्या फायदा?
2: और जब वो तसव्वुर में आते नहीं तो मेरे मुस्कुराने से क्या फायदा?
1: क्या फायदा? तो तसव्वुर में आइए पहले, आप मुस्कुराइए, वो तसव्वुर में आएंगी।
2: जी सर।
1: हाँ बिल्कुल आएंगी। और बहुत बढ़िया शायरी की आपने, ऐसी शायरी अगर आपने उनके सामने कर दी तो तुरंत आपके पैरों में गिर पड़ेंगी और पूछेंगी कहाँ थे नाथ अभी तक आप।
2: जी सर।
1: हाँ सर, नाथ से हमको याद आ गया, बिना जी आपको होता है
0: क्या?
1: हमारी जो है वो एक स्टूडेंट, उसका प्राइमरी में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ की जो टीचर्स थी नई नई, तो वहाँ के उनके जो फोर्थ क्लास कर्मचारी था उनका नाम था प्राणनाथ। अब देखिए, ये देखिए आपकी भी अगर आपकी कहीं जॉब लग जाए तो यही काम कीजिएगा। तो ये हुआ कि भाई उन्होंने जो है वो पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? चलो बड़ी हिम्मत करके तो उसने कहा जी प्राणनाथ। अब वो काम करना है, प्राणनाथ जी यहाँ आइए, प्राणनाथ जी पानी पिला दीजिए। अजीब लगता। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे काम करते हैं, सर नेम पूछ लेते हैं। तो टीचर ने कहा अच्छा अपना सर नेम बता दीजिए। तो उसने कहा स्वामी। तो कहें आपको अपने घर में लोग प्यार से क्या कहते हैं? तो उसने कहा जी बलमा। मतलब हाँ कहीं मोहल्ले वाले आपको क्या कहकर बुलाते हैं? तो उसने कहा सजना। अब समझ में नहीं आ रहा है महिलाओं के वहाँ पर लेडी टीचर्स के कि उस चपरासी को वो क्या कहकर बुलाएं? प्राणनाथ, स्वामी की, सजना की, बलमा। तो ऐसे मुमताज जी आप भी कोई बढ़िया नाम रख लीजिए। हाँ
2: अब आप ही जो बताइए वो हम नाम रख लेंगे सर।
1: आप अपना नाम बलमा रख लीजिए।
2: बलमा
1: बलमा बलमा
2: बलमा बलमा फिल्म हमने देखा है, सुनील शेट्टी की फिल्म है सर।
1: हाँ तो बलमा नाम रख लीजिए। और जो आपको कहे कि बलमा, इसका मतलब आप हो गए उसके बलमा शौहर, और इंशाल्लाह दो दिल तुरंत आपको मिल जाएगा।
0: बिल्कुल सही बताया आपने।
1: तो नाम में कंफ्यूजन है?
2: नहीं सर, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब अगर इजाजत हो तो कह दे सर।
1: हाँ बिल्कुल कह दीजिए, उसमें इजाजत की क्या बात।
2: बिछड़ कर जिंदगानी में अंधेरा क्यों किया तूने?
0: वाह वाह,
2: निभाना जब न था वादा तो वादा क्यों किया तूने?
1: तूने
2: और खुद अपनी गलतियों को बताता नहीं कोई, और मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई। और उसने मेरी नजर को पामाल कर दिया, हमने जो हुकूमतों का घरौंदा बनाया था।
1: क्या बात, मतलब पामाल करके चली गई वो।
0: क्या बात, क्या बात।
1: लेकिन तब आपका नाम मुमताज था, आज से आपका नाम है बलमा।
0: आज से आपका नाम बलमा।
2: ठीक है सर
1: जी, बिल्कुल आप बलमा नाम रखिए और दो दिल लीजिए।
0: तो भाई मुमताज जी का मुझे लगता है नामकरण तो हो गया, लेकिन मैं भी कहना चाहती हूँ कि इश्क हुआ तो दिल ने बोला।
1: क्या बात,
0: मतलब सबने अपने अपने जज्बात बताए, तो मैंने सोचा मैंने भी कुछ लिखा है तो वो मैं आप लोग के नाम कर दूँ। कहते हैं कि इश्क हुआ तो दिल ने बोला, अब तो दुनिया रंगीन है, जेब ने धीरे से कान में फुसफुसाया, भाई महीने की सैलरी अभी नहीं है, रोज रोज गुलाब ले जाओ चॉकलेट भी साथ ले आओ। रोज रोज गुलाब ले जाओ और चॉकलेट भी साथ ले आओ, प्यार अगर सच्चा करना है तो यूपीआई भी फटाफट चलाओ।
1: यूपीआई भी फटाफट चलाओ, क्या बात।
0: वो बोली तुम चांद हो मेरे।
1: चांद हो मेरे, मतलब सर पे बाल नहीं था क्या?
0: देखिए बागे भावनाओं को समझिए, कवि से ज्यादा मतलब सवाल नहीं करने चाहिए।
1: नहीं आप कवि,
0: कवि ऑलरेडी सोच समझ के ही लिखता है। वो बोली तुम चांद हो मेरे, दिल खुशी से झूम गया, फिर बोली बस महीने में एक बार दिखना, सारा रोमांस धुआं हुआ। हेलो हेलो
3: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, कैसी हैं अनु?
3: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताइए आप कैसे हो?
0: आप अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नाराज हैं।
3: नहीं, अब नहीं हूँ।
0: अब नहीं हूँ, अच्छा। तो सवाल डॉक्टर लव से आज कुछ पूछा जाएगा या फिर आज डॉक्टर लव को ऐसे ही जाने दिया जाएगा?
3: मैम पहली बात तो अब आप ना मुझे नाराज होने ही नहीं देंगे, तो फिर मैं नाराज कैसे होंगी? हाँ, एक बात ये जरूर है कि आपकी अनु अभी नन्ही बच्चों की, मतलब जैसे छोटे से बच्चे रहते वैसे ही है अभी भी, जल्दी से गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है, पर जल्दी से मान भी जाती है, बड़ा जिद्दी है।
0: क्या बात है, जिद्दी होना भी जरूरी है, समय के साथ जिद जो है हमारी ताकत बन जाती है। फिलहाल ये बताओ कैसे,
3: अगर आप लोगों के आगे जिद नहीं दिखाएंगे तो फिर जिद कहाँ दिखाएंगे?
0: हाँ, जिद हमारे गांव में, मतलब जिद दिखाने के बड़े अलग अलग तरीके, फिलहाल तुम लौटती नहीं हो, ये अच्छी बात है। लौटना मत, बाकी तुम जिद करना, ठीक है?
3: लौटती नहीं हूँ।
0: नहीं, मेरे यहाँ मतलब देखा है मैंने, बच्चे लोट लोट के जिद करते हैं, तो लेकिन तुम लौटती नहीं हो, ये अच्छी बात है।
3: क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ी हो गई हूँ,
0: मतलब पहले लौटती थी,
3: थोड़ा सी समझदार,
0: पहले लौटती थी।
3: नहीं, पहले भी नहीं लौटती थी, कि लौटना ज्यादा पसंद नहीं था।
0: अच्छा, कपड़ा गंदा हो जाता है।
3: हाँ, फिर तुरंत नहाना पड़ता है।
0: हाँ, और मम्मी धुलाई भी कर देती होंगी अलग से।
3: हाँ, दिन भर में 10 बार नहलाती मम्मा।
0: तो डॉक्टर लव से क्या सवाल आज करोगी?
3: मैम सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और सवाल की आपसे रिक्वेस्ट भी है और डॉक्टर लव से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि रेडियो पे अभी आप लोगों का शो अच्छे से नहीं आ रहा है।
0: क्या अच्छे से, मतलब आवाज नहीं जा रही है?
3: ना, सरसराहट रहती है बहुत, साथ क्लियर आवाज नहीं आती है।
0: सरसराहट, ये तो बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि बादल आ चुके हैं बीच बीच में और वो हमारी आवाज को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं।
3: मैं आज नहीं, अभी पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ ऐसे हो रहा है, तो मैं सोचती थी ऐसे होगा, दो तीन बार ऐसे देखा, लेकिन एक दिन सुबह होता है तो मैं सोचती ऐसे कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन मतलब दिन चढ़ता है सही हो जाता था। एक दिन देखा ओपन माइक भी नहीं सुन पाई, एकदम से आवाज ही नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा था कोई बात कर रहा है, पर क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से सही हो गया, तो हमको लगा ये वही से कोई फॉल्ट है।
0: बिल्कुल, इस समस्या पे मुझे लगता है कि हमें शोध करना पड़ेगा। और और हमारी अनु के पास और क्या समस्या है?
3: तो कोई समस्या नहीं है, अभी आपकी अनु अच्छी है,
0: ठीक है, इंतजार है।
3: लेकिन सबसे बड़ी समस्या सरप्राइज
0: का, सरप्राइज का इंतजार हो रहा है।
3: जी, इंतजार करिए आपकी सरप्राइज, आप ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, बहुत जल्द पूरी होगी, पर थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, जहाँ आपने इतना दिन इंतजार किया था, थोड़ा सा और कर लीजिए।
0: हाँ, मैंने बचपन में पढ़ा था इंतजार का फल मीठा होता है, इसीलिए
3: बहुत ज्यादा मीठा होगा बहन।
0: अब लग रहा है ज्यादा मीठा होगा,
1: बहुत ज्यादा मीठा
3: वास्तव में होगा मैम मीठा। फिर जब सरप्राइज आपको मिल जाएगा उसके बाद आप बात करना, सब बताना है कि मीठा है या नहीं है।
0: अब मुझे लग रहा है मीठा ही होगा। थैंक यू अनु।
3: Okay,
0: आपका भाई। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी। थैंक यू
3: जी मैम, इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैं अच्छा। इससे बड़ा सवाल मेरे लिए यही है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ।
1: अनु जी, एक क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ।
3: जी सर, पूछिए।
1: दो प्रश्न है और दोनों के उत्तर एक ही है। ब्राह्मण क्यों प्यासा था, गधा क्यों उदास था?
3: सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है।
1: जी मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण क्यों प्यासा था, गधा क्यों उदास था? एक ऐसा आंसर दीजिए जिसमें दोनों के उत्तर छुपे हों, दोनों उत्तर प्रश्न के उत्तर आ जाएं।
3: ब्राह्मण क्यों प्यासा था,
1: गधा क्यों उदास
3: था? तो ब्राह्मण कभी प्यासा ही नहीं होता है।
1: तो नहीं, था भाई, था। ब्राह्मण क्यों प्यासा था, गधा क्यों उदास था? कंपाउंड
3: सर, मेरे हिसाब से
1: ब्राह्मण
3: कभी प्यासा नहीं होता।
1: अरे वो है भाई, हम प्रश्न कर रहे हैं तो है। अब इन दो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, लेकिन उत्तर एक होना चाहिए।
3: सर मेरे हिसाब से एक ही उत्तर है कि ब्राह्मण कभी प्यासा ही नहीं होता,
1: नहीं ब्राह्मण
3: गधा कभी उदास भी नहीं होता, क्योंकि कहते हैं गधा गधा मतलब उसको कुछ भी नहीं पता, वो हमेशा खुश रहता, कभी उदास भी नहीं होता।
1: नहीं नहीं, आप उत्तर नहीं दे पाए।
0: अनु जल्दी से इस सवाल पे शोध करो और जल्दी कॉल करके बताओ, नहीं तो डॉक्टर लव जो है ना परेशान कर डालेंगे इसी सवाल पे बैठ के।
3: जी मैम, ओके मैम, देखते हैं।
0: थैंक यू अनु। सो अनु से बात हो गई, हमारे साथ मौजूद हैं अनिल शास्त्री जी, गोरखपुर से। स्वागत है आपका, कैसे हैं और क्या हाल है सबसे पहले तो ये बताइए। और आपसे आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिल गई है कि आज कल आपके यहाँ रोज शाम को बारिश हो रही है। डॉक्टर लव की देन है, ये अपने मरीजों को सीधे वहाँ रोने के लिए भेज दिया करते हैं और इसीलिए बारिश हो रही है। डॉक्टर लव से बात करिए अगर आप चाहते हैं दिन में भी बारिश हो आपके यहाँ। गुड इवनिंग सबलू जी लिखते हैं कि एक हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर लिखी थी कि सच्ची बात। क्या लिखा था भाई, देखते हैं कि अगर दिल खोला होता आपने यारों के साथ तो आज नहीं खेलना पड़ता औजारों के साथ।
1: खोलना पड़ता
0: क्या? अगर दिल खोला होता अपने यारों के साथ तो आज नहीं खेलना पड़ता औजारों के साथ।
1: आज नहीं खोलना पड़ता, वो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक।
0: अरे तब डॉक्टर लोग दिल के साथ खेल ही तो रहे हैं।
1: हाँ नहीं नहीं, मतलब अगर यार के साथ दिल खोल लिए होते तो औजार के साथ न खोलते।
0: लोटा, उत्तर लोटा है।
1: हाँ लोटा न था। जी हाँ बिल्कुल सही।
0: मतलब
1: ब्राह्मण क्यों प्यासा था? क्योंकि लोटा नहीं था। और गधा क्यों उदास था? क्योंकि गधा जब लोट लेता है तो उसकी उदासी खत्म हो जाती है।
0: तो वो लोटा नहीं था।
1: हाँ तो लोटा न था।
0: क्या खतरनाक आंसर है। हेलो
4: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आपके पास रेडियो की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम करें।
4: जी मैम बंद कर दिया। नमस्कार, मनी शर्मा बोल रहे हैं भटपुरा गोंडा से।
0: अरे मनी कैसे हैं आप आजकल एकदम, मतलब एक महीने बाद मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ।
4: अरे आप लोग ध्यान ही नहीं देते, क्या करें।
0: ध्यान कैसे देंगे, आप दिखेंगे, आप सुनाई देंगे तब तो हमें पता चलेगा। मुझे लगा भाई ज्यादा पैसा है, कहीं बाहर विदेश उदेश ना चले गए घूमने।
4: अरे नहीं ऐसी कोई बात,
0: ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बताइए हाल चाल कैसा है आपका, दिल का मतलब दिल सही जगह है, आपका भी दिल कहीं और चला गया निकल गया?
4: नहीं अभी तो हमारा दिल कहीं नहीं गया है, फिलहाल के लिए अपने घर के पास है।
0: अरे वाह क्या बात है, तो डॉक्टर लव से क्या सवाल है?
4: सर जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार। नमस्कार,
4: और बताया सर क्या हाल?
1: जी बस आशीर्वाद आपका। आप बताइए आप कैसे हैं?
4: सर जी हाल हमारा यही दिक्कत है कि एक दिन जो है
1: जी
4: परबल भाई के साथ में हम गए थे गोंडा।
1: हाँ?
4: और वहाँ बारिश हुई और हम लोग खूब नहाए, और भी मेरा जो है आवाज बदल गया है खुद।
1: आवाज आवाज आपकी बहुत अच्छी हो गई है।
0: तो समस्या आपको परबल भाई के साथ जाने से हुई या बारिश से हुई?
4: नहीं वो तो भाई कहीं जाते हैं तो परबल भाई को लेकर जाते हैं, लेकिन भीग गए ना उनको बोले नहीं भीगना, लेकिन हम कहे आज भीग के गाड़ी चलाओ।
1: हाँ भीग के गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है, और आज आपकी आवाज में
0: कहते हैं पेट्रोल कम लगता है।
1: नहीं और जो है वो आप आज आपको आपकी बचपन वाली आवाज मिल चुकी है, इतनी मिठास है।
4: आए थे एक आपकी जो गली नहीं है वो स्टूडियो के पीछे, वहाँ आपकी वो जो है बाइक खड़ी थी।
1: हाँ मेरी बाइक खड़ी थी
4: जी।
1: नहीं वैसे हम हेलीकॉप्टर चलते हैं, तो बाइक हमारे कंपाउंडर की खड़ी रही होगी।
4: अच्छा हमें लगा आपके बताए कुछ लोग की सर की वो है बाइक।
1: नहीं हम सीधे, चूंकि हमको जो है अमेरिका लंदन मैक्सिको सब जगह जाना पड़ता है, तो हम अपना हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं उसी से जाते
4: हैं। हाँ सर जी तो बताइए इसका क्या इलाज करवाएं?
1: क्या
4: वही हमारी आवाज आ नहीं रही है पुरानी वाली?
1: आवाज आपकी पुरानी वाली से बहुत बेहतर हो गई है। अगली बार बारिश होगी तो आप सर नीचे करके पैर ऊपर करके आराम से बारिश में भीगेगा 15 मिनट, आपको आपकी पुरानी बारिश यानी पुरानी आवाज वापस मिल जाएगी। हाँ अगली बारिश का इंतजार कीजिए, और जब बारिश हो तो छत पे चले जाइए, सर नीचे कर लीजिए, पैर ऊपर कर लीजिए, 15 मिनट तक नहाइए बारिश में, और अपनी पुरानी आवाज पुनः प्राप्त कर लीजिए।
4: और सर जी एक क्वेश्चन और है आपसे।
1: जी
4: यार सर जी कहीं आप जैसे आपके पास इतनी पत्नियां हैं।
1: जी जी
4: सर जी अभी तक हमारा क्यों नहीं सेट हो रहा है?
1: आपका सेट हो रहा है लेकिन आप सेट करना नहीं चाह रहे?
4: नहीं सर जी अभी तो फिलहाल के लिए कोई कुछ नहीं।
1: तो आप हमारी 30 पत्नियों को देख लीजिए और जो आपको पसंद आए ले जाइए, हाँक ले जाइए उसको।
4: अच्छा चलिए ठीक है, कब आए, कहाँ मिलने, मतलब मिलेंगे आप?
1: ये हमारा हमारी क्लिनिक पर आ जाइए, हम आपको क्लिनिक से ले चलते हैं घर पर।
4: एड्रेस बताइए।
1: एड्रेस यही अपने एफएम का एड्रेस, यहीं पर शनिवार को आइए 8 बजे, तो मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ, जो आपको पसंद आए उसको लेकर जाइए। पत्नी के लिए मतलब हमारे होते हुए कोई पत्नी के लिए परेशान होता है तो हमको तरस आता है।
4: अरे जी बहुत आप, बहुत धन्यवाद,
1: आप ले जाइए तो कम से कम हम दूसरा दो ठो करें इधर।
4: नहीं बिल्कुल सर, मुझे जो पसंद आएगी हम ले आएंगे।
1: हाँ कम से कम दो तीन ले आइएगा, ताकि हम दो तीन नहीं कर पाए। अब पिछले जान लीजिए 2 सालों से हम जो है वो विवाह नहीं कर पा रहे हैं।
4: अच्छा
1: हाँ, तो अगर आप
4: 551 हो जाती
1: है। हाँ ज्यादा हो जाती है।
4: अरे वाह, कैसे संभालते हैं सर जी?
1: वो अनुभव है और आपको भी हो जाएगा अनुभव।
4: हमें तो अभी एक का भी अनुभव नहीं मिला है।
1: नहीं आवश्यकता आविष्कार की जन्ने है, आप एकदम
0: बिल्कुल, आप बिल्कुल प्रयास करिए, डॉक्टर लव के घर जाइए और अपने लिए एक पसंदीदा सुकुमारी ले आइए।
4: बिल्कुल मैम धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच मनी फॉर योर कॉल। तो मनी से बात हो गई और मनी की समस्या का समाधान भी निकल आया, और मतलब 29 लोगों का कल्याण करेंगे, और इसमें से अगर आप भी चाहते हैं कुमार तो कल्याण करा सकते हैं अपना। फिलहाल आप काफ़ी दूर रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो कल्याण कराने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और तुलसी की कड़ा पिला दिया जो ये मनी, हाँ तुलसी का काढ़ा पी लें तो भी इनका गला सही हो सकता है, लेकिन गला सही करने के लिए तुलसी का काढ़ा बनाने वाली भी चाहिए, तो इसके लिए इन्हें थोड़ा सा मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा, डॉक्टर लव से मिलना पड़ेगा। और भाई देखिए, मैंने देखा कि लोग अपना नाम बदल के अपना कल्याण कर रहे हैं, और कल्याण करने के साथ साथ समय भी हो चुका है हमारा और लोगों का कल्याण करने का, तो हम लोग चलते हैं अपने क्लिनिक पे, और इसको जो समस्या है वो हमारे डॉक्टर लव से आके क्लिनिक पे मिले, और अगले शनिवार का इंतजार करें, और अपना डायल नंबर याद रखे 6393 3164 29। और देखिए कॉल आ गया है, और चलते चलते अगर कोई कॉल आए तो समझ लो कि वो कॉल अच्छा है, बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ, और बिना देरी के अगर हम कॉल को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो हमें बात भी कर लेनी चाहिए जल्दी से, देखते कौन है हमारे साथ। हेलो
5: हेलो
0: हेलो, शुभ संध्या, गुड इवनिंग
5: जी। हाँ मैं, हम गोरखपुर से बोला था। नहीं
0: शुभ संध्या, कैसे हैं अनिल जी, क्या हाल है?
5: अरे हाल तो बहुत बुरा है, मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी।
1: जी जी
0: डॉक्टर साहब, आपके इंतजार में है, क्योंकि चलते चलते वो अपने किसी भी मरीज को छोड़ के जाना नहीं चाहते।
5: नहीं तो डॉक्टर साहब, हेलो
1: जी नमस्कार।
5: नमस्कार डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे पूछना था।
1: जी जी,
5: आजकल मुझे एक भूलने की बीमारी हो गई है।
1: हाँ?
5: कि जब मैं कोई बहुत अच्छी खूबसूरत महिला देखता हूँ।
1: हाँ, हाँ?
5: तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं शादीशुदा।
1: ये जान लीजिए ये खुशखबरी है।
5: खुशखबरी है,
1: ये गुड न्यूज है।
5: तो डॉक्टर साहब, नहीं तो डॉक्टर साहब हमको प्लीज इसका इलाज बता।
1: इलाज ये है कि मतलब आप जो है अपनी पत्नी जो खाना बनाती हैं बेलन, उसको अपनी गाड़ी के जो है वो सामने जहाँ पर वाइजर है वहाँ पर लटका लीजिए,
0: जहाँ भगवान की फोटो लगाते हैं ना।
1: हाँ
0: वहाँ भी रख सकते हैं,
1: या तो मतलब अपनी जेब में रख लीजिए। तो जैसे
5: अरे वो अब सुनिए, वो तो ऐसा कर दी है कि कल परसों मेरे हाथ पैर सब जगह अपना नाम लिख दी।
1: हाँ
5: अब बताइए कहाँ कहाँ उनको लटका।
1: नहीं बिल्कुल, आप खाली बेलन ले साथ में लेकर चलिए कि अगर आपकी निगाह कहीं भी गई तो वो बेलन आपको याद आ जाएगा। और अपनी
5: अच्छा,
1: पत्नी
5: जाएगा।
1: हाँ अपनी पत्नी से कहिए कि कम से कम हमको 20 ये 20 बेलन हमको मार।
5: आप तो 30-30 लेके चलते हो।
1: हाँ
5: अरे कम से कम हम 1-2 तो जाए।
1: अरे आप 1-2 हो चुके हैं भाई।
5: अरे मतलब उसमें 2 हो जाए
1: जब पत्नी। हम आप चाहते हैं कि आप 1-3 हो जाए। 2
5: नहीं, हाँ 1-3 हो जाए।
1: हाँ तो बस ठीक है, तो मतलब हमारी वाली में से कोई वाली चलेगी?
5: नहीं महाराज, अब किसी की तो मैं लेके नहीं जाऊंगा ना।
1: अच्छा तो जिसको आप देख रहे हैं वो भी तो किसी की है ही है।
0: अरे क्या पता जो ना हो उसको देख रहे हैं आप, तो डॉक्टर लव क्यों दूसरे का घर खराब करने पे लगे।
1: खराब
5: बताइए इनको।
1: हाँ नहीं वो बात हम नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ऐसे एक ही पत्नी को झेल पाना आजकल दिक्कत कर रहा है।
5: आप पीस पीस कैसे झेलते हैं सरकार?
1: देखिए, हमने अवतार लिया है, हम साधारण मनुष्य नहीं है, मतलब परमादत के कारण साधन धन।
5: अरे तो यही गुण सिखा दीजिए डॉक्टर साहब
1: जी,
5: कि मैं भी कम से कम कुछ अवतार का गुण प्राप्त कर लूं, ताकि कुछ ध्यान और वो क्या बोलते हैं
1: योग,
5: हाँ ये सब मैं करना चालू कर दूं।
1: जी बिल्कुल, आप करना,
5: ताकि हमें भी कुछ मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब तो आप जो है दोबारा विवाह करना चाहते हैं?
5: अरे मैंने विवाह की बातें नहीं की।
1: अच्छा, मतलब आप जब किसी स्त्री को देखते हैं तो आप
5: तो लगता है कि वो मेरी पत्नी है?
1: अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: ये तो सही,
1: या इसका मतलब आप भारतीय संस्कृति का पालन कर रहे हैं।
5: अयम
1: निजा परोवेत गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये छोटी सोच वाले रखते हैं जिनकी
5: मैं
1: सोच
5: तो कभी कहता नहीं हूँ कि ये मेरा नहीं है,
1: नहीं।
5: मैं तो कहता नहीं हूँ कि किसी और का है।
1: भैया उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, जिनका हृदय बड़ा होता है वो पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं।
0: ध्यान दीजिएगा, इनकी पत्नी भी सुन रही हैं।
1: तो अब
5: बिल्कुल बिल्कुल सुन रही हैं।
1: हाँ, सबके भाई को अपना भाई मानिए, सबकी माँ को अपनी माँ मानिए, और सबकी पत्नी को
5: सबकी बीवी को बीवी मानिए।
1: हाँ,
0: आज बेलन से रोटी तो नहीं बनेगी घर में।
1: नहीं, अब देखिए हमने असल में भारत में
5: नहीं, नहीं, शाम के समय आज हम रोटी खाएंगे भी नहीं, चावल खाएंगे
1: नहीं,
0: नहीं तो आज रोटी बन भी नहीं पाएगी।
1: नहीं, हम आपको बताएं, भारत में इसमें कुछ गलतियां बहुत ज्यादा हैं।
5: अच्छा,
1: जैसे जब हम छोटे थे तो हम प्लेज आपने याद होगा पढ़ते होंगे इंडिया इज माई कंट्री,
0: भारतम अस्माकं मातृभूमि मातृभूमि प्राणभूमि प्रेतम।
1: नहीं, इंग्लिश वाला इंडिया इज माई कंट्री,
0: ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
1: अब ये देखिए, हमारी कंपाउंडर साहिबा ने ये सेंटेंस बोला, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर,
0: एक्सेप्ट वन।
1: हाँ जी, ये कहाँ बोला, ये
0: एक्सेप्ट वन,
1: एक्सेप्ट वन नहीं बोला, ये लिखा नहीं, ये लिखा नहीं है भाई। अगर सभी भारतवासी हमारे भाई
5: साहब के संगत में रहेंगी तो भाई उनकी जो असिस्टेंट होती हैं वो तो बहुत सही हो जाती है डॉक्टर।
1: ऑल इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में कहे तो गड़बड़ नहीं बोलना चाहिए।
0: देखिए डॉक्टर लव, तब स्कूल में थे, अब आप प्लेज कहीं पढ़ते हैं, सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं?
1: नहीं, प्रतिज्ञा क्या हुई? प्रतिज्ञा वो ही जो आपने की और अभी तक निभाई जाए। उसमें आपने झूठ बोला, हमने नहीं बोला कभी। हमारे वाले पापा ने हमसे कहा कि तुम प्लेज क्यों नहीं करते, हमने कहा आप हमको इंग्लैंड भेजेंगे, हमने कहा नहीं भेजेंगे,
0: शादी में कहाँ करूँगा।
1: हाँ, तो हमने कहा तो बताइए, तब ऑल इंडियन साथ में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तुम अपने पापा को चलो भाई बोलूँ, मम्मी को बहन।
0: आप लोग आप पूछ रहे हैं कि इनकी 30 पत्नियाँ कैसे हैं, बचपन से ही पर्टिकुलर थे।
1: हाँ,
0: तो इन्होंने क्लास छठी से ही तैयारी शुरू कर दी थी, एक एक टू सेट कर रहे थे।
1: हाँ,
5: अच्छा,
1: तो हमने प्लेज
5: तो नहीं। डॉक्टर साहब कुछ ज्ञान हमें भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल, ये ज्ञान है, आप जो है सेटिंग के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ।
5: अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुरु मान लूंगा।
1: हाँ, जो है वो पहली चीज तो जब आप घर से चलिए तो हल्का सा गुड़ खा कर चलिए।
5: चलिए ठीक है।
1: अच्छा, और ध्यान रखना गुलगुला नहीं खाना है।
5: बिल्कुल ठीक है,
1: ताकि ये लोग कहें कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, तो वो कहावत आप पर चर्चा सुननी चाहिए। दूसरा, जब आप किसी स्त्री को देखिए और आपको नया याद रह जाए कि आप शादीशुदा हैं, तो उसके पास आप जाइए और कहिए कि आप,
5: अरे यही दिक्कत है, मैं भूल जाता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, यही मैं भूल जाता हूँ।
1: तो आप उनसे कहिए कि आपकी साड़ी का रंग बहुत अच्छा लग रहा है।
5: अच्छा,
0: सूट पहना हो तो।
1: हाँ, कहिए आपके सूट का रंग बहुत अच्छा लग रहा है।
0: फिर
1: उसके पश्चात आप उससे कहिए,
5: अगर वो सूट ना पहना हो, टी शर्ट और जींस पहना हो
1: तो उससे कहिए टी शर्ट हो। आपको कपड़े को बताने कि आपने कपड़े, आपके कपड़े का रंग बहुत अच्छा है, आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसके किस्मत में आप आएंगी। और इसके पश्चात आप तुरंत प्रपोज कर दीजिए, आई लव यू।
5: अरे मतलब
0: घर में तो मतलब बेलन तैयारी रखी,
1: जैसे आपने कहा आई लव यू, सामने वाला आपको एहसास दिला देगा कि आप शादीशुदा हैं।
5: अच्छा
1: जी, कल के देखिए पहले
5: नहीं, नहीं, अगर, नहीं, नहीं, अगर ये शब्द बोल देंगे तो हमको खुद एहसास हो जाएगा कि हम शादीशुदा।
1: हाँ, बस आपको सामने वाले की स्त्री की तारीफ करना है और आई लव यू बोलना है, फिर वो आपको स्वयं एहसास कर देगी कि आप विवाहित हैं।
5: डॉक्टर साहब मैंने पूछा है मेरी मेमोरी का क्या करेंगे आप, तो इसको बताया नहीं आपने।
1: तो मेमोरी मैंने कहा कि आपको इतना ही तो बताना है, आपका कपड़ा बहुत अच्छा है।
0: मेमोरी वॉच ही कर दीजिए,
1: मतलब
0: नहीं मेमोरी बना दीजिए।
1: अब वो सामने वाले पर छोड़ दीजिए, मेरा दावा है सामने वाला आपको बता देगी कि आप विवाहित हैं।
0: क्या बात
1: जी, आपको याद आ जाएगा, तुरंत याद आएगा।
5: चलिए ठीक है, तो आप... मैं सुबह से निकलता हूँ, शाम को तो आ ही जाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि दरवाजे पे शायद जो महिला दिखाई दे रही है हमारी पत्नी ही।
1: हाँ ये हो सकता है, मतलब आप जी, तुरंत
5: ये, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको,
5: थैंक यू डॉक्टर साहब
1: जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अनिल जी, और आपका
5: ओके, आप लोगों को भी बढ़िया बढ़िया सलाह देने के लिए थैंक यू।
0: मुझे लगता है बहुतों के लिए महत्वपूर्ण सलाह रही होगी
5: जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: शुक्रिया। तो भाई अनिल जी की समस्या का समाधान हो गया, और ना सिर्फ अनिल जी की समस्या, मुझे ऐसा लगता है जितने ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो शादीशुदा नहीं है, वो लोग हैं भी, तो मुझे लगता है सबके लिए ये सजेशन है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना मेरे सारे लिसनर्स के लिए, और इसी के साथ आरजे बीना और डॉक्टर लव को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए अपना वाला शो गुंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, मंडे को फिर मिलेंगे इसी वाइब के साथ, कॉल इन शो में आपकी आवाज़ सुनेंगे और करेंगे पूरे देश को संगीत में, और आप बजा रहे हैं अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा के लिए आपकी। स्टे ट्यून्ड।

वाह व्हाट अ लवली सॉन्ग ना। इस गाने को मैं रोज सोचती थी कि मैं प्ले करूंगी, लेकिन मैं रोज जैसे ही अपनी ये हॉट सीट पे बैठती हूँ तैसे भूल जाती थी ना। तो फिर आज मैंने इसको दिमाग में याद करके रखा था और मैंने सोचा था इस गाने को आज मैं अपनी फरमाइशी की महफिल में जरूर प्ले करूंगी। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना गुंडे मूवी का, और आप लोगों ने आई एम डैम श्योर कि अपनी फरमाइशों को भेज दी होगी। लेकिन उसके पहले अनिल वर्मा जी का सैदापुर से कहना है कि चाय में चीनी कम हो तो चलता है, पर तुम्हारी मुस्कुराहट के बिना दिन कहाँ ढलता है। तुम जब भी रसोई में जाकर कुछ बनाती हो कमबख्त उस सादे से खाने में भी इश्क का जादू जगता है। सो चलिए एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, प्रमुख कुमार लुधियाना से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, अनुष्का श्रावस्ती से, धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से, मुस्तफा जी साउदी से, आवाज विकास गोंडा से, रवि मोहम्मद मुशीब बाराबंकी से, ताजवर खान आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, इरफान शाह जी आपका तो तहे में दिल से फिर से स्वागत है, और कमल नैन आपका भी स्वागत है, वेलकम इन योर शो। तबिश खान स्टे ट्यून्ड, सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल लंगर गोंडा से आप सभी का स्वागत है। अब इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना मैं हूं ना। सो एंजॉय करते हैं मैं हूं ना का टाइटल ट्रैक सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी और जो सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

है ये तुमको इंतजार में होना हमने एंजॉय किया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल वाला नगमा हमारी आशा मिश्रा जी की फरमाइश पे जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों, और जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रमुख कुमार की लुधियाना से, और प्रमुख कुमार जी को लुधियाना से सुनना है गाना गुड्डू की लहरे का। सो एंजॉय करते हैं, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है। ये बहुत ही तरंगी सा, बहुत ही यूनिक सा गाना सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रमुख जी की फरमाइश पर जो की है लुधियाना से। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी, प्रमुख कुमार जी की फरमाइश थी, वो है लुधियाना से। सो लुधियाना से दौड़ती भागती हुई दोस्तों ये वाली फरमाइश आई हुई थी। आप लोग को ये गाना कैसा लगा मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। रामपाल माधोपुर गोंडा से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल संतोष कुमार जी गिलोली से। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। ये गाना तो पता नहीं कौन से गोले पे हमको लेके चला गया था, लेकिन अब अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की। और अनिल वर्मा जी हैं सैदापुर से। और आपको पता है क्या, अनिल वर्मा जी को सुनना है गाना मेरी जिंदगी है तू, तो सत्यमेव जयते 2 का ये वाला गाना एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ अनिल जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सॉन्ग हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पे जो की है सैदापुर से। नाउ नाउ नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का

वाओ दोस्तों, हमने एंजॉय किया है अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा तड़कता भड़कता बीट्स के साथ में नगमा, सिर्फ और सिर्फ हमारी अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। सो क्या चलें अगली फरमाइश गीत की तरफ, फरमाइशी गीत की तरफ जो आपने दिल से निकाल के भेजी है और हम यहाँ पर प्ले करेंगे उस गाने को और हम सभी मिलकर एंजॉय करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? आई नो, आई सच में नो, सो एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश। हमारे पास में अगली फरमाइश है मुस्तफा जी की सऊदी से और मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है बहुत ही खूबसूरत सा गाना ये पर्दा हटा दो। सो एंजॉय करते हैं ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

नहीं, हमने एंजॉय किया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना दुनिया रे दुनिया। वेरी गुड वेरी गुड। सो एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा उदित नारायण की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सबलू सावंत मुंबई से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल। सो क्या हाल चाल है ये भी बताओ ना चैट बॉक्स में। मुझे बहुत सुनापन सा दिखाई दे रहा है और मुझे अपने आप में बहुत अकेलापन सा लग रहा है। सो मेरे इस अकेलेपन को मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया। मींस मेरे इस अकेलेपन को तेरी यादों में बहुत ही खूबसूरत सब बनाने के लिए आ जाइए चैट बॉक्स में और थोड़ी सी गॉसिप्स कर लेते हैं ना, थोड़ा सा पंचायत कर लेते हैं। आप लोग को तो पता ही है कि लेडीज को बिना पंचायत के खाना नहीं हजम होता है, तो प्लीज मेरा खाना ही हजम करवाने के लिए आ जाइए और ढेर सारी गॉसिप्स करते हैं ना एक दूसरे से मिलकर। इसे एंजॉय करते हैं हमारी ये वाली फरमाइश, मीन्स धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश जो की है आवाज विकास गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आप लोग से एक बात कहना था कि जब मैं बोलती हूँ तो बोलते हो कि बहुत बोलती है, और जब मैं नहीं बोलती हूँ तो बोलते हो कि नहीं बोलती है। अब बताओ इसमें मैं क्या करूँ, बोलूँ या ना बोलूँ। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गोरे मुखड़े दिल काले काले, लेकिन मेरा मुखड़ा तो गोरा है लेकिन मेरा दिल तो काला नहीं है दोस्तों। सफेद हो सकता है, नीला पीला हरा गुलाबी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अपना एग्जैक्ट कलर भी हो सकता है जो होता हो, लेकिन भाई लेकिन दिल काला तो नहीं है। तो कभी कभी ना कुछ चीजें मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ। अक्सर पता है क्या दोस्तों, ज्यादातर गाने लोग रिलेट कर लेते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर लोग वही गाना सुनना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं से, किधर ना किधर से उनकी जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करती हूँ। क्यों सही गाना मैंने, और मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ गाने मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उसको कहीं ना कहीं से मैं अपनी लाइफ में उसको रिलेट कर सकती हूँ, इसलिए मैं वो गाना सुनती हूँ। और जब भी वो गाना सुनूंगी तो जिस पॉइंट पे मैं उसको रिलेट करती हूँ वो वाला फ्लैशबैक भी मुझे आने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में इट्स कुमार की एमपी रीवा से, और इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना मुझे ले चल मंदिर आहा। तो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा लुटेरे मूवी का सिर्फ और सिर्फ अलका याग्निक पंकज उदास की आवाज में हमारे इट्स कुमार की फरमाइश पर, जो की है एमपी रीवा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाओ, मुझे ले चल मंदिर हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सनगमाल का याग्निक पंकज उदास की आवाज में लुटेरे मूवी का सिर्फ और सिर्फ इट्स कुमार की फरमाइश पर, जो की है एमपी रीवा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। एंड दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की। और आपको पता है क्या, रवि को कौन सा गाना सुनने में बार बार आपसे ये क्यों पूछती हूँ कि आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, ऐसे लगता है कि मैं हर बार आप लोगों से कोई भविष्यवाणी करवा रही हूँ, हर बार आप लोगों के एकाग्र होने का टेस्ट ले रही हूँ। और मेरी लैंग्वेज देख रहे हैं कितनी मिक्सिंग हो गई है, कहीं कभी इंग्लिश बोल देती हूँ, कभी हिंदी बोल देती हूँ, कभी कहीं ना कहीं से उर्दू के शब्द भी इंक्लूड कर लेती हूँ, कैसे करती हूँ ना। लेकिन कोई बात नहीं, इसको रखते हैं साइड में और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की। और आवाज विकास गोंडा से रवि को सुनना है ये पता नहीं कौन सा गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाओ, ये डिवोशनल सॉन्ग हमने एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है ताजवर खान की, और ताजवर खान को सुनना है गाना ओ साहिबा। सो एंजॉय करते हैं दिल है तुम्हारा मूवी का ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ ताजवर खान की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमें एंजॉय किया है दिल है तुम्हारा का ये नगमा सोनू निगम की आवाज में सिर्फ और सिर्फ ताजवर खान की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब को बाराबंकी से सुनना है गाना ये जो तेरी पायलों की छनछन है से एंजॉय करते हैं अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की आवाज में। मासूम का ये वाला नगमा बहुत ही मासूम सा नगमा हमारे बहुत ही मासूम से मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर। अब ये बताइए इतनी बार मासूम आई मीन MMM आया है तो इस जगह पे कौन सा अलंकार यूज किया जाएगा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

बन के दीवाना मेरा पीछा न कर तेरी मेरी यारी हूँ मस्त सिंह है। तो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र दीपेन के राजस्थान से, और महेंद्र को सुनना है गाना मेहंदी रंग लाई। सो एंजॉय करेंगे ये वाला नगमा, और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा सीधे 9 बजे तक आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडम मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए,
2: आईडी की तरफ से भेजिए, या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
3: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
4: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
5: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
6: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
7: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
6: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज वाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सनगमा रामलीला मूवी का। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी शो फरमाइशी में, आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। और सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना बरसात है लगने लगा है डर। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, उदित नारायण की आवाज में ये बहुत ही रोमांटिक नगमा हमारे सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

खिड़कियाँ बंद कर लो। अच्छा जी सुरेंद्र जी, खिड़कियाँ बंद कर लो। हमने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सनगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में हमारे सुरेंद्र जी की फरमाइश पर। और वैसे भी आज का गोंडा का मौसम तो ऐसा ही दोस्तों कि सब रोमांटिक हो रहे होंगे, हर दिल रोमांटिक हो रहा होगा, वो दिल जो सिंगल होगा वो भी रोमांटिक हो रहा होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। कमल नयन को सुनना है गाना अंगूरी अंगूरी। सो एंजॉय करते हैं जानवर मूवी का ये गाना सपना अवस्थी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ कमल नयन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से आपका भी स्वागत है। वैसे किसको किसको हरा अंगूर अच्छा लगता है और किसको किसको काला वाला अंगूर अच्छा लगता है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अच्छा सवाल है ना।

कमल नयन की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निशा की, पटेल नगर गोंडा से। और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है हमेशा की तरह एज यूजुअल थोड़ा सा दर्द भरा नगमा, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार भरा नगमा। सो एंजॉय करते हैं रंग मूवी का ये गाना दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया है, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। रंग मूवी का था ये गाना, अलका याग्निक जी की थी ये दर्द भरी आवाज। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। ये तो फरमाइश थी निशा की पटेल नगर गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों अभिषेक की, और उनको सुनना है गाना आने वाला पल जाने वाला है। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की फरमाइश पर, जो की है शायद गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आने वाला पल जाने वाला है। हमने एंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे अभिषेक जी की फरमाइश पर, जो की है शायद गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुरेश कुमार जी की चौक से, और सुरेश कुमार जी को चौक से सुनना है गाना ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सो एंजॉय करते हैं फिर से किशोर कुमार जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जो हर एक के दिल में बसता है। स्टेट

मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा सुपर डुपर डुपर हिट नगमा किशोर कुमार जी की आवाज में। अब बढ़ेंगे हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है सुनीता जी की गुड़वा घाट गोंडा से। उनको सुनना है गाना डोला रे डोला। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो दोस्तों हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। मींस बहुत सवाल बनता है, क्यों? क्योंकि कल है संडे, संडे मींस पंडे, पंडे मींस हॉलीडे, मींस मैं कल नहीं आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। कल आप लोग, आप सभी अपनी फरमाइशी की महफिल में एकत्रित तो जरूर होंगे लेकिन अपने आरजे मनु के साथ में। मिलते हैं सीधे मंडे को। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं मंडे को। आई रियली लव दिस सॉन्ग। सुनीता जी थैंक यू सो मच।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9 45 583 53 46।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व केनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब
6: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेस्ले 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम आ चुका है भाई बहारे गजल, और मैं हूँ अनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और आज की शाम तो ऐसे भी आप सभी के लिए खास होती है, क्योंकि आज का जो हमारा दिन होता है वो होता है गजलें हमारी, गीत आपके। तो हम एक गजल सुनाते हैं आपको, आप एक गीत सुनाते हैं, फिर हम गजल सुनाते हैं, फिर आप गीत सुनाते हैं। तो आज एक छोटा सा गेम आपके साथ खेलने की इच्छा है, अगर आप तैयार हैं तो आप हमको फोन कीजिए और हम आपसे प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर आपको हमको तुरंत देना रहेगा। अगर आप ने अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी हैं और आपको लगता है कि लगभग लगभग सभी फिल्मों पर हम कुछ बता ले जाएंगे, तो आप में फ़ोन कीजिए और आपका प्रश्न जो हमसे होगा उसका उत्तर आपको तत्काल देना होगा। जरा एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं आपके साथ और इसके बाद चलते हैं गीतों पर। तो भाई जिसको भी ऐसा लगता हो कि अमिताभ बच्चन जी की उन्होंने लगभग फिल्में देख ली हैं, उनके बारे में जानकारी है, तो वो हमको कॉल करेंगे। आपका कॉलिंग नंबर वही है 6393316429। और अमिताभ बच्चन जी की ही फिल्म से रिलेटेड मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपने अमिताभ बच्चन जी की लगभग लगभग सभी फिल्में देखी और आप जवाब दे सकते हैं, तो हम चाहेंगे कोई भी शुरुआत कर दे भाई। ये शुरुआत मैं साथ कर सकते हैं भाई, दादा अनिल शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको जी। शुभ संध्या, श्री तेज नारायण शुक्ल जी भी हैं, प्रणाम है आपको, चरण स्पर्श है। शुभ संध्या मुनसर जी, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है भाई। और मल्लिकाएं आवाज़ हमारे साथ हैं, शिल्पी बनर्जी जी, शुभ संध्या मनु जी, चरण स्पर्श आपको प्रणाम और शुभ संध्या आपको भी। निरंकार मिश्रा जी भाई हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं अंग्रेज़ी के, अच्छा लगता है आपसे मिलकर, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ संध्या। तो चलिए भाई, अगर किसी को लगता है कि अमिताभ बच्चन की फिल्में उन्होंने देखी हैं और उन फिल्मों से कोई प्रश्न अगर किया जाए तो वो उत्तर दे ले जाएंगे, तो अगर ऐसा है तो आपके फोन की हमें प्रतीक्षा है। आज एक थोड़ा सा खेल खेलते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं गजलों की तरफ। देखिए हम आपको समय देते हैं 9:38 और 52 सेकंड हो चुके हैं, यानी एक मिनट का समय आपको हम देते हैं, यानी 9:39:52 तक, क्योंकि जो हमको ऐप पर सुन रहे हैं वो आहो देखिए फ़ोन आ चुका है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
1: नमस्कार
0: जी, नमस्कार, क्या बात है भाई, हिम्मत की आपने, बहुत शानदार हिम्मत की।
1: हमने भी एक शराबी देखी है।
0: हाँ नहीं, अमिताभ बच्चन हाँ। की फिल्म से हम एक प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है, क्या आप तैयार हैं?
1: अब देखो मालूम होगा तो बताएंगे भी
0: हम। अच्छा चलिए, और नहीं मालूम होगा तो फिर गीत तो आपसे सुनेंगे ही हम। अमिताभ बच्चन की ऐसी कौन सी फिल्म है, जैसे डबल रोल होता है ना, किसी फिल्म में डबल रोल होता है, दो रोल होता है ना फिल्मों में।
1: हाँ, ऐसी जैसे नया रास्ता है, हाँ, कई फिल्म है,
0: कई सारी ऐसी फिल्में जहाँ पर हीरो ने डबल रोल किया है। अमिताभ बच्चन ने अपनी किस फिल्म में ट्रिपल रोल किया है?
1: तीन रोल
0: अमिताभ बच्चन की किस फिल्म में है?
1: शायद आखिरी रास्ता है क्या?
0: आखिरी रास्ता में डबल रोल है, दो है।
1: अच्छा, डबल रोल है, एक और है, तीन रोल है वो। आप तीन रोल किया है ये कंफर्म है?
0: हाँ, तो उस
1: हाँ
0: उस मूवी का नाम बताना है आपको। जी नहीं निरंकाल मिश्रा जी, डान में डबल रोल है, ट्रिपल नहीं है।
1: देश प्रेमी तो हो नहीं सकता?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: और उनका आखिरी रास्ता तो नहीं है?
0: नहीं है, नहीं नहीं है। देखिए किसी का फोन आ चुका है, इसको उठाएं क्या हम? हेलो,
2: हाँ सर नमस्ते।
0: जी नमस्कार,
2: राजेश सिंह मार्ग।
0: अरे क्या बात है भाई, भाई जानकार श्रोता का फोन आ चुका है। जी
2: महान फिल्म है सर?
0: हाँ बिल्कुल सही उत्तर, फिल्म का नाम है महान, बिल्कुल सही। ये
2: उसमें गाना था जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, किशोर कुमार ने गाया था।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ बिल्कुल, क्या बात है। तो राजेश जी ये बताइए, इतने दिनों से आप गायब कहाँ थे, मतलब इतने जानकार श्रोता होने के बावजूद?
2: अगर हम जानकार नहीं सर, सभी लोग जानकार हैं।
0: हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, आपने जो है फिल्म का नाम एकदम सही बताया
2: जी। अब आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया तो क्या थोड़ा जवाब दे दे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: जी जी जी, थैंक यू सर।
0: जी प्रणाम। जी हाँ भाई, महान फिल्म अमिताभ बच्चन की आई थी, जहाँ पर उन्होंने तीन रोल किए थे। हेलो
2: हेलो, आप पर रेडियो ना चल रहा क्या?
0: रेडियो अगर नहीं चल रहा होता तो हम बोल कैसे रहे होते, मतलब चल
2: रहा है? आवाज चल रहा है ना
0: जी।
2: आप गाना सही नहीं चल रहा है?
0: सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है।
2: नहीं चल रहा मेरे रेडियो में।
0: अच्छा तो आप ऐप पे सुन सकते हैं हमको, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐप पे सुन रहे हैं।
2: रेडियो पे सुन रहा हूँ, आ नहीं रहा मेरा रेडियो पे।
0: हाँ थोड़ा ट्यून करके देखिए, तो हो सकता है कोई गड़बड़ हो।
2: रेडियो पे नहीं, काफी देर से मैं लगाया हूँ, आड़वे लगाया तो आड़वे नहीं आया, अभी मैं आवाज सुन रहा हूँ।
0: जी तो हम देखते हैं कोई तकनीकी समस्या है तो उसको दूर करते हैं।
2: रेडियो पे नहीं आ रहा, बाकी मोबाइल पे आ रहा होगा।
0: जी जी,
2: कोई बताया नहीं आपको फोन करके?
0: जी नहीं।
2: देख लीजिए।
0: जी देखते हैं, धन्यवाद आप। जी हाँ भाई, तो अब चलिए, अब आपको हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई सविता शास्त्री जी, चरण स्पर्श आपको, शुभ संध्या आपको भी। और जी हाँ, उत्तर दे दिया है, महान फिल्म थी। मनुष्य जी शुभ संध्या, गुड मॉर्निंग, हमारी गजल में आपका स्वागत है, क्या बात है भाई। और जी अब चलिए शुरू कर देते हैं, आपके सामने प्रश्न रखते हैं, किसी भी फिल्म में आपको एक गीत सुनाना है, लेकिन शर्त ये है कि उस फिल्म में उस हीरो का या जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन का, आप जो भी कहें, तो नायक या नायिका, इन दो में से किसी का भी एक रोल डबल रोल में हो। आपको कोई भी किसी भी फिल्म का गीत सुनाना है, शर्त यह है कि नायक या नायिका, इन दोनों में से किसी का भी रोल डबल हो। राजेंद्र कुमार जी की का कोई फिल्म है कि कोई फिल्म है, उनका डबल रोल है। धर्मेंद्र जी की कोई फिल्म है, उनका डबल रोल है, उसका कोई गीत। हेमा मालिनी का कहीं डबल रोल है तो उनका कोई गीत। पहला प्रश्न आपके लिए यही है। अब गीतों की श्रृंखला में तो आपको गीत सुनाना है, लेकिन शर्त यह है कि नायक या नायिका, इन दो में से किसी का एक रोल डबल होना चाहिए। आप हमें फिल्म का नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि ये नायक हैं ये नायिका है जो डबल रोल में है और ये उस फिल्म का गीत है। तो देखते हैं भाई कौन करता है पहली इस चुनौती को पूरा और गाना सुनाता है हमको। तो आप सभी की प्रतीक्षा है भाई, तो देखते हैं कार्यक्रम का प्रारंभ। मतलब राजेश सिंह जी ने तो हमारे कार्यक्रम की आधारशिला रख दी है पहला प्रश्न करके, लेकिन अब दूसरा प्रश्न जो आपसे गीतों के लिए है उसमें कंडीशंस आर अप्लाइड, नियम एवं शर्तें लागू हैं। और जी हाँ, देखते हैं हमारे पास पहला फोन किसका आया है। हेलो,
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार। अरे दर्द कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: ये फिल्म दुल्हन का, हाँ ठीक है
0: जी।
1: एक फिल्म है ये दुल्हन, जिसमें जितेन का डबल रोल है, जो शुरू में हाँ डॉक्टर बन के जो है जाता है किसी का इलाज करने के लिए, तो वो फिर वो नावे डूब जाता है, फिर वो उसी का इंतजार रहता है, तो आखिरी में एक जितेन फिर मिलता है, डबल रोल है। फिल्म का नाम है दुल्हन, हेमा मालिनी की हीरोइन है।
0: क्या बात है जी, तो उसका कौन सा गीत
1: है? पागलों की तरह, अब वो पागलों की तरह अपनी पति को ढूंढती रहती है, गाती रहती है, और उसे ये विश्वास रहता है कि मेरा पति मर नहीं सकता, वो जिंदा है, आएगा जरूर। हाँ। तो इसलिए वो दिखाया जाता है बाद में
0: जी।
1: गीत है लता की आवाज का।
0: क्या बात
1: है। की जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, तब देखना हाल मेरे दिल का हो लोगों, सब देखना। आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, तब देखना फिर परदेसिया याद आने लगा है, फिर परदेसिया याद आने लगा है, पलकों पे गम का बादल छाने लगा है, छाने लगा है। ओ बरसों पड़ेंगे ये नैना, सब देखना आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, सब देखना।
2: धन्यवाद।
0: क्या बात है। अच्छा, दर्द आपके कंठ पर अच्छा भी लगता है, मतलब दर्द वाला कोई भी गीत आप गाते हैं तो एकदम लगता है कि उस सीन को आप जी रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ भाई, तो सुरेश कुमार जी ने डबल रोल पर गीत गा दिया है। अगर आप में से कोई और भी ऐसा कोई गीत गाना चाहे तो हम आपको समय देते हैं कि आप किसी भी फिल्म जिसमें नायक या नायिका का रोल डबल हो उसका कोई भी गीत जो आपको अच्छा लगता हो वो आप गाएं। और जब तक आप नहीं गाते हैं तब तक चलिए भाई, क्योंकि गज़लें हमारी हैं, गीत आपके हैं, तो एक प्यारी सी गज़ल आपको सुनाते हैं, जिसके बाद लौटेंगे आपकी गीत की तरफ। तैयार रखिए अपने आप को, ऐसी कोई भी फिल्म जिसमें नायक या नायिका का रोल डबल हो उस फिल्म का कोई भी गीत आपको गाना है। जी हाँ, अभी हम एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद प्रश्नों को अपनी ओर बढ़ाएंगे। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए, सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके और खास। लेकिन इसके पहले फोन आ चुका है मेरे पास।
2: हेलो
0: हेलो हेलो
3: हेलो नमस्कार सर।
0: अरे दादा चल स्पष्ट, कहीं से रेडियो की आवाज थोड़ी आ रही है तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए।
3: लेकिन आपके में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है डॉक्टर मनु भाई।
0: जिस जीप दादा मतलब क्या आवाज नहीं आ रही है?
3: नहीं आवाज आ रही है लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो मैं राजेंद्र कुमार जी का डबल रोल है पिक्चर में
0: जी
3: गया आसमान।
0: हाँ क्या बात है,
3: कौन है जो सपनों में आया,
0: कौन है जो दिल में समाया। वाह वाह वाह। लेकिन इसका एक स्टंजा वो जो सुनाएगा, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती है।
3: क्या मतलब?
0: मतलब ये स्टंजा जरूर सुनाइएगा, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है।
3: अब मेरे पास तो उसका अगर आप भेज दें तो या तो हमको थोड़ा याद दिला देंगे तो शायद मैं गाऊं।
0: जी ये आपने जो बताया है गीत वही है मतलब जो मैं आपने बोला है।
3: नहीं नहीं आप सही हो, तीन स्टंजा गाना है।
0: हाँ हाँ
3: तो लेकिन नहीं है चार स्टंजा का जिसको आपने बोला
0: जी।
3: मौत को रुक आती नहीं बोले।
0: हाँ जिस्म को मौत तो आती है लेकिन
3: वो मेरे पर ये शब्द मेरे को या, गाना याद है, लय याद है लेकिन उसका वो नहीं याद है।
0: अच्छा
3: मैं थोड़ा सा शब्द भूल सकता हूँ।
0: जी जी कोई बात नहीं,
3: तो पहले मैं सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ।
0: जी जी जी जी।
3: कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया।

कौन है जो दिल में समाया, लो चुक गया तुम भी इश्क मेरा रंग लाया।

0: मंजिलों पे बढ़ा जा रहा, मंजिलों पे बढ़ा जा रहा। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया। थैंक
1: क्या बात है दादा, क्या बात है। लेकिन मतलब आज आपने बिना मुकरी लिए वो जो क्या कहते हैं अलाप, बहुत बढ़िया गाया।
0: थैंक यू सर।
1: मतलब हमको लग रहा था एकदम झुक गया आसमान के, राजेंद्र कुमार को हम देख रहे हैं। बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा। तो इसी के साथ
0: जो
1: हम
0: आपने बोला था, आपने जो बोला था
1: जी
0: कि वो एक्चुअली क्या ना, मेरे पास वो का लिरिक्स नहीं आ जाता।

0: रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया,
1: बहुत सुनिए आपने गाया।
0: कौन है जो दिल में समाया, जो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया।
2: अरे नहीं, आप लोगों से सीख कर हम भी गुनगुनाने की कोशिश करते हैं।
1: नहीं भाई, हम भी आप लोगों से सीखते हैं।
2: नहीं,
1: पूरा नाम मेरे को याद नहीं।
2: नहीं नहीं, वही बात है, मतलब हम आप लोगों से ही सीखते हैं और गुनगुनाने की कोशिश करते हैं कि गुनगुना लें। मतलब
1: ऐसी कम से कम आपने अप्रिशिएट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, मतलब हम आप ही लोग से सीखते हैं भाई, हमारे श्रोता हमारे गुरु हैं।
1: अरे हम गुरु नहीं है, बस श्रोता है, मान सकते हैं।
2: जी अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो क्या उनको भी सुन लें इसी समय, जिनके बिना आप अधूरे हैं?
1: अच्छा सुन लीजिए, सुना दें आपको एक गाना याद है? हाँ तो भाई बोल रहे हैं भाई।
3: हेलो
2: जी, चरण स्पर्श।
3: हाँ तो सही है।
2: कैसी
3: और
2: है?
3: कैसे हूँ?
2: बस आपका आशीर्वाद, और आपके आशीर्वाद से धीरे धीरे हम भी गाना सीख रहे हैं।
3: नहीं बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा है, सीख जाइए, बहुत अच्छा, हम लोग बहुत आगे निकल जाइए।
2: हाँ, मतलब आप ही लोग से सीख रहे हैं, हम सोच रहे थोड़ा बहुत सीख ले आ गए हैं तो।
3: जी।
2: वैसे आप जो गाती हैं वो बेमिसाल गाती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। और
3: अरे नहीं नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं भी कहीं ना कहीं से सीख के इन सब पूछ के ही गाती हूँ।
2: मतलब बहुत यूनिक टेस्ट रहता है आपका।
3: हाँ जी जी,
2: आपके गाने
3: जो छूट गई है ना मेरी आदत बहुत दिनों से, एकदम गुमनाम गाने वगैरह हो गए, तो आपके प्रोग्राम में जब आए हैं जब से
2: जी,
3: तब थोड़ा से वही पुरानी चीजें आ रही हैं, तो धीरे धीरे याद आ रहा है।
2: नहीं,
3: इनका मतलब आप ही के प्रोग्राम को है।
2: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आपने जो सुनाया था वो हसरतें हजार बातें कहे जमाना, या जिसमें वो चुपके फिल्म का वो गीत आपने जो है चुना था आपके सजन सावन में, मतलब आपका जो कलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन होता है, वो बहुत शानदार होता है। मेरे दिल का
3: हाँ, तो अभी वही सब निकल रहा जो मुझे खुद पसंद था एक समय, ये सब गाने
2: जी।
3: तो अब धीरे धीरे आ रहा है, अब आने वाले समय में फिर नए फिल्मों का आएगा।
2: जी जी जी, तो फिलहाल हम आज आपसे क्या सुनने वाले हैं?
3: आज आपने कहा ना डबल रोल वाला।
2: जी जी
3: हाँ, तो उसमें मौसम फिल्म का है, उसमें शर्मा टैगोर का दो रोल है, एक माँ एक बेटी का
2: जी।
3: तो उसका गाना है ना रुके रुके से कदम।
2: हाँ, क्या बात है, क्या बात है।
3: इसमें कोशिश कर रही हूँ गाने के लिए।
2: जी जी
3: ठीक है, तो शुरू करें?
2: जी निसंदेह।
3: रुके रुके से कदम,
2: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो

0: आप माफ कीजिएगा लेकिन आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है।
1: अच्छा अब आई
0: जी,
1: पता नहीं कैसे वहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है बार बार।
0: नहीं यहाँ से तो कोई डिस्टरबेंस,
1: तो कहाँ से शुरू करें फिर से?
0: हाँ शुरू से, क्योंकि एकदम नहीं आवाज नहीं आ रही थी।
1: अच्छा अच्छा ठीक है। रुके रुके से कदम रुक, अरे क्या है, नहीं आ रही आवाज?
2: आ रही है, आ रही है, बोलो ना।
1: मेरी आवाज नहीं आ
0: रही? जी आ रही है, आ रही है।
1: हेलो
0: जी, हाँ आपकी आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर है।
1: अच्छा अच्छा अभी आ रही है आवाज?
0: जी बिल्कुल आ रही है।
1: अच्छा तो लगाऊं मैं बाद में?
0: ठीक है ठीक है, देख लीजिए।
1: हेलो
0: जी, हाँ
1: शुरू करें
0: जी।
1: रुके रुके से कदम रुके
0: जा, लगता है नेटवर्क का कोई इश्यू है बारिश वगैरह की वजह से। चलिए हाँ अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपसे मिलते हैं इस प्यारी सी गज़ल के उस पार, और अब कोई शर्त नहीं है भाई, अब आप जो गाना चाहें वो गा सकते हैं। और जी हाँ देखते हैं, मैसेज कोई और जुड़ चुका है।
3: हेलो
0: हेलो,
3: सुरेश कुमार
0: जी? जी दर्द कुमार जी, प्रणाम।
3: प्रणाम
0: जी,
3: एक मूवी है हसीना मान जाएगी।
0: हसीना मान जाएगी जी?
3: जी हाँ, डबल रोल
0: किसका?
3: शशि कपूर। शशि कपूर बबीता
0: जी,
3: बबीता सिंगल है, शशि कपूर डबल है
0: जी।
3: चले के साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलकर।

0: हमें जीने न देगी तुम्हारी ये निगाहें, समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगी दुआएं, चले थे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलकर। ओ बड़ा प्यासा है ये दिल, इसे मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले के साथ मिलकर। धन्यवाद।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, जोरदार ताली आपके लिए। बहुत ही प्यारा गीत गाया है आपने, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद आपको। जी हाँ, देखते हैं अब कौन हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, आपकी आवाज ये बहुत दूर से,
2: हेलो
1: ये बहुत दूर से आवाज आ रही लगता है।
2: हेलो,
1: क्या आपने रेडियो को ऑन कर रखा है क्या? अगर ऑन कर रखा है तो आवाज उसकी थोड़ी कम कर दीजिए। हेलो
2: जी जी जी जी जी हेलो
1: जी
2: जी सर, हेलो
1: जी, प्रणाम
2: जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार
1: जी, आपका शुभ नाम।
2: अरे सर, हम आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी
1: जी,
2: और आज मुलाकात हो गई
1: जी। क्या बात है, मतलब
2: और आपके कुछ ऐसी खबताएं हैं
1: जी
2: कि जो भी आदमी सुन ले वो आपको कोई भूल नहीं सकता है।
1: अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोगों का स्नेह है।
2: ये तो मेरा सौभाग्य कि हमारा फोन आपकी तरफ पहुंच गया।
1: अरे नहीं नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि भाई आप जैसे श्रोता से हम बात कर रहे हैं।
2: नहीं नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है सर।
1: नहीं, आप निसंदेह आपने उन शब्दों को समझा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।
2: सर, आपकी जो गौरवपूर्ण बातें हैं, जो आपकी जो दिशा निर्देशन है
1: जी,
2: उससे लगता है कि वाकई मोड़ा में आज भी लोगों में एक, मतलब एक आज भी मोड़ा में लोगों की क्वालिटी पैदा है
1: जी, वो तो हर जगह है।
2: तो सर, हम चाहते थे
1: जी जी
2: कि एक हम अपने मन का गाना है और हम आप आपके रिकॉर्ड से सुन सकते हैं
1: जी जी।
2: तो सर, अगर आप सहायक कष्ट करें तो हम सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा, गाना आप सुनना चाहते हैं?
2: जी जी जी, सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा, हमको लगा कि सुनाना चाहते हैं।
2: नहीं, सुनना चाहते हैं
1: जी। तो क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: तो क्रांति का एक गाना है
1: जी,
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी,
1: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
2: जी जी जी
1: जी, ठीक है। तो 10:25 पर ये गीत हम लगा देंगे आपके लिए।
2: 10:25 पर
1: जी, अभी चूंकि कालीन प्रोग्राम चल रहा है तो आज हमारे श्रोता लोग गा रहे हैं
2: जी जी जी जी,
1: तो हम 10:25 पर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए जिंदगी की ना टूटे लड़ी ये जरूर रहेगा। और कल हम उपस्थित रहेंगे शाम को 6:30 से 10:30 तक, और कल के लिए मतलब जो हमारा प्रोग्राम होता है वो 8:30 से 9:30 फरमाइशी प्रोग्राम होता है, आप हमें कल भी फोन कीजिए और बताइए तो कल हम आपका गीत
2: सर, आप कोई गाना सुनना चाहते हैं क्या?
1: हाँ, अगर आप सुना दे तो सुना दे।
2: नहीं ठीक है, अगर आपका आदेश होगा तो उसका पालन किया जाएगा।
1: जी जी,
2: तो सर हम कोई गाना आप तक प्रेषित करें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो इसी गाने को हम प्रेषित कर दें जो हमें थोड़ा सा गुनगुनापट में थोड़ी सी मुझे याद है।
1: जी जी जी,
2: तो ठीक है सर, हम बोलते हैं।
1: जी जी निसंदेह।
2: जिंदगी की ना टूटे लरी, प्यार कर ले प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लरी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ठीक है सर, ओके सर।
1: जी हाँ, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। और इसके पश्चात तो देखते हैं भाई कौन मेरे साथ पुनः जुड़ चुका है। हेलो,
3: नमस्कार। नमस्कार, फिर से मैं हूँ।
1: अच्छा, फिर से आप ही हैं। जी
3: मैं आपको जब बोला आपने कि कोई भी गाना सुना सकते हैं,
1: जी
3: तो मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ।
1: जी तो पहले हम उनसे तो सुन ले जिनसे हमने नहीं सुना है।
3: वो दरअसल मैं सुना दूं फिर सुनाएंगे कि मैं पहले उनको सुना दूं?
1: अब आप जैसा समझिए, वैसे स्त्री प्रधान देश
3: है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं
4: आवाज। हेलो
1: जी, प्रणाम
4: जी। खुश रहिए, अभी तो वो गा रहे हैं।
1: जी
3: उसके बाद तुम गाना, उसके बाद मैं गाऊंगा।
1: तो आप गाइए, उसके बाद उनको गाने का मौका देते हैं।
4: अच्छा, तो अभी तो गा रहे हैं ना आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं उनकी?
1: जी जी, आप फिलहाल गाइए।
4: अच्छा, मैं गाऊं?
1: जी
4: ठीक है। रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले। रुके रुके से कदम,

0: धन्यवाद सर।
1: क्या बात है भाई, और यकीन मानिए इतना प्यारा गाया आपने, और इस गीत को हमने इसके पहले कभी सुना भी नहीं था, ये सच्चाई है।
0: अरे मौसम फिल्म में बहुत अच्छा हिट है अपने समय का था ये गाना।
1: हाँ, मतलब उस समय हम पैदा नहीं हुए थे शायद, हमको लगता है तो अपने समय का रहा होगा ये हमारी नहीं नहीं मतलब वास्तव में हमने नहीं सुना, मतलब आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, कहीं भी झूठ नहीं बोले, रुके रुके से कदम क्या बताएं।
0: हम लोग के समय में यूनिवर्सिटी में कॉलेज की ओर से दिखाया गया था फिल्म।
1: हाँ, रुके रुके से कदम
0: बहुत पसंद आया था।
1: एक बार फिर से आप पहली पंक्ति बोल दीजिए, रुके रुके से कदम।
0: क्या क्या
1: मतलब पहली पंक्ति क्या है? रुके रुके से कदम,
0: रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले,
1: रुक के बार बार चले।

0: हाँ
1: से कम 20 ही हो,
0: हाँ सही
1: तो
0: बात।
1: अपनी तो है।
0: हाँ अपनी है तो है। हाँ अपनी वाली
1: क्या
0: 200,
1: बात है।
0: क्या बात है। लेकिन मतलब संगत का सर देखिए, मतलब इतना अच्छा गला, इतनी अच्छी आवाज़, इतना अच्छा गीतों का चयन, और अपने आप को भूली हुई थी। हमको तो बहुत अच्छा लगा कि चलिए कम से कम इस प्लेटफॉर्म ने बहुत से सोते हुए लोगों को जगाया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई दो राय नहीं।
0: तो दादा अब आपसे क्या सुनने वाले हैं हम।
1: मैं जानवर पिक्चर का गाना सुनाना चाहता हूँ आपको, मेरी मोहब्बत जमा रहे, तो
0: अरे क्या बात है, क्या बात है
1: मैं कोशिश कर रहा हूँ।
0: जी दादा।
1: मेरी

तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है सदा रहेगी मेरे मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है सदा रहेगी ये लप तड़प के यही कहेगी, सदा रही है सदा रहेगी।

मैं तुम्हें कचा, मेरी नजर में तुम्हें कचा, मेरी नजर में तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनेगी सदा रही है, सदा रहेगी मेरी मोहब्बत जवान।

मैं जल कर तेरा मिटेगी, सदा रही है सदा रहेगी मेरी।

0: धन्यवाद सर। क्या थोड़ी आवाज मेरी फट रही थी।
1: क्या हा? बात है। और आज मामला 50-50 पर है, समझ लीजिए। मतलब हमारी
0: लेकिन थोड़ी मेरी आवाज फट रही थी।
1: नहीं नहीं वो तो, लेकिन आपने जो पहले वाला गीत गाया था
0: जी,
1: वो बहुत शानदार गीत था। इसमें फंसा है, उसमें नहीं फंसा था।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया दादा गाया आपने। और भाभी जी कोई मेरा प्रणाम कहिएगा।
0: धन्यवाद सर, बिल्कुल कहेंगे
1: जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श
0: होत रही है
1: जी। हाँ भाई, तो अब कई सारे गायक कलाकार अभी हमारे पास ऐसे उपस्थित हैं जिनकी मधुर आवाज हमने अभी अपनी कानों से सुननी है। भाई हमारे साथ शिल्पी बनर्जी जी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन

0: फोन अभी तक नहीं आया है। जी हाँ, मतलब तो कार्यक्रम जो है अधूरा कैसे रह सकता है। और भाई हमारे प्रशांत जी भी अभी हमको नहीं दिखाई पड़े। जी हाँ, तो अब देखते हैं कौन हमारे साथ जो अब जुड़ चुका है। हेलो।
1: हेलो।
0: चरण स्पर्श
1: खुश रहिए सर जी, कैसे हैं?
0: आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद।
1: बहुत देर से ट्राई कर रहे थे।
0: नहीं, अच्छा तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और
1: अरे क्षमा प्रार्थी नहीं, ये तो अच्छा है ना कि हम लोग का कार्यक्रम बिजी रहता है।
0: हाँ नहीं, आपके ही पक्ष से गाया जा रहा था। और आज तो मतलब संगीता जी ने गजब का गीत सुनाया।
1: हाँ बहुत अच्छा गाया। पहले गा रही थी तो आवाज नहीं आ रही थी उनकी।
0: हाँ लेकिन वो मतलब रुके रुके से
1: बहुत खूबसूरत गाना है सर। आपसे कैसे बाकी रह गया, इतना बढ़िया गाना उन्होंने गाया था।
0: हाँ मतलब ये हम मतलब इत्तेफाक है कि हमने नहीं सुना।
1: बहुत खूबसूरत गाना है
0: रुके रुके से कदम
1: जी। आज मैं सोच रही हूँ किशोर कुमार जी का गाना एक दो आपके लिए।
0: है, है, क्या बात है।
1: हमें तुमसे प्यार कितना
0: ये हम नहीं जानते। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग।
1: शुरू करें सर?
0: निसंदेह।
1: वैसे तो सोच रहे थे कि आप बोल रहे थे कि जो क्या बोलते हैं डबल रोल वाला, तो मैं तभी ट्राई कर रही थी डॉन पिक्चर का गाना गाने के लिए।
0: हाँ?
1: अमिताभ बच्चन में ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। अब आप बताइए दोनों में से कौन सा गाऊं?
0: हमको लगता है कि थोड़ा सा हेलन जी को छोड़ते हैं और उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं।
1: किनकी तरफ?
0: अरे किशोर कुमार जी की तरफ बढ़ते हैं।
1: चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं सर।
0: जी निसंदेह।

0: सकते तुम्हारे बिना, भूली तुमसे प्यार। थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। वास्तव में हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। बहुत प्यारा गीत है ये, बहुत प्यारा।
0: मुझे भी बहुत पसंद है सर,
1: बहुत पसंद है। हाँ
0: इसमें एक एक शब्द में इतने फीलिंग्स है।
1: हाँ वास्तव में हाँ। और
0: बहुत
1: एक जो है
0: अच्छा
1: वो ताबिश खान ने लिखा, वाह क्या आवाज है माशाल्लाह।
0: धन्यवाद सर जी।
1: जी बहुत अच्छा लगा। आती रह कीजिए हमारे, आप महफिल की शोभा बढ़ाती रह कीजिए।
0: धन्यवाद धन्यवाद सर,
1: अच्छा चल स्पर्श।
0: खुश रहिए सर।
1: जी हाँ भाई, तो ये शिल्पी जी, और देखते हैं जी हाँ कोई और जुड़ चुका है मेरे साथ, देखते हैं कौन है मेरे साथ। हेलो।
2: हाँ जी सर नमस्कार।
1: ओह, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दुनिया के सबसे गहरे सागर अर्थात प्रशांत महासागर जी की आवाज है।
2: जी सर बिल्कुल सही पहचाना आपने सर।
1: मतलब क्या कोई हमसे गलती हो गई है, आप खफा से हो गए हैं कि खफा हो गए हैं?
2: अरे सर हम खफा होके जाएंगे कहाँ।
1: नहीं ऐसा थोड़े ना है कि गोंडा में रहना है तो मन्नू मन्नू कहना है, ऐसा कुछ नहीं
2: ऐसा प्रेम की भाषा में कह सकते
1: हाँ।
2: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये बात है। नहीं पिछले बुधवार को आपकी उपस्थिति नहीं मिली हमको, तुमने कहा कि क्या बात।
2: हाँ सर थोड़ा जो है फोन मिलाए थे लेकिन काफी व्यस्त एंगेज होने की वजह से सर फोन लग नहीं पाया था।
1: नहीं मतलब दो तीन बार आप मिला ले कीजिए तो फिर लग जाता है अंततः।
2: और सर कैसे हैं।
1: बढ़िया, आशीर्वाद आपका।
2: चलिए सर टाइम का वेस्ट न करते
1: जी
2: हुए
1: जी
2: सर हम एक
1: बिल्कुल।
2: गाना आपको सुनाते हैं, मन्ना डे जी का गाया हुआ।
1: हाँ क्या बात है।
2: ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो

उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के

लगा के गुमसुम है चांदनी, तुम्हें भी नहीं देता मौसम का इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मात फिदाए, उठा धीरे धीरे वो

ढूंढे ऐसे सपने को इस रात की जगमग में।

0: धीरे वो चांद प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के गुम तुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई प्रशांत जी, क्या बात है। मतलब उदित नारायण से लेकर के और एकदम मन्ना डे तक आपने इस गीत को हूबहू उतार दिया है।
0: जी जी, मैंने पूरी कोशिश की सर।
1: जी हाँ,
0: और ये गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है।
1: मतलब ये इस गाने की आपने लगातार प्रैक्टिस की है, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव है और आपसे जरा सी भी गलती नहीं हुई है।
0: जी नहीं, पूरी सर कोशिश किया है, गाने तो खैर बहुत अच्छा है।
1: बहुत अच्छा है और उससे अच्छा गाया आपने।
0: जी जी, धन्यवाद आपको। मेरी कोशिश यही रहती है कि सबको पसंद आए।
1: जी, और आता भी है, लोग कहते भी है कि भाई प्रशांत जी कहाँ गए अगर आप नहीं आते हैं तो।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, हम आपको धन्यवाद कहते हैं सभी को।
1: क्या बात है भाई, अपना स्नेह अपना प्रेम और अपनी आवाज हमारे साथ बरकरार रखिए।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको।
0: ओके सर, शुभ रात्रि।
1: जी शुभ रात्रि। जी हाँ, तेरे नाम सुनील का वाह क्या बात है, ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत अच्छा भाई जी। तबिश खान जी का कहना है, मनीष शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित है। जी हाँ, और अब घड़ी की सुइयां बता दी हैं कि आपसे मत लेने का वक्त आ चुका है। जी शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल रविवार है, कल आपसे मिलेंगे ठीक 1 बजे आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
2: सिर्फ किसी माध्यम से आज एक सच्ची घटना के माध्यम से जब जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है ब्रह्म राक्षस की। भूत प्रेतों में तो कोई भी योनियां हो सकती हैं, उनके अनेक नाम भी होते हैं, जैसे भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल। ये सभी हमें डराने के लिए काफी हैं और हमारी हकीकत की दुनिया को बदलने के लिए काफी हैं। अब मैं कहानी पर आती हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था नथीलाल। नथीलाल को लोग शर्मा जी कहकर बुलाते थे। शर्मा जी भी लोगों के लिए एक मसीहा से कम नहीं थे। घर में किसी के भी कोई शुभ कार्य हो तो लोग शर्मा जी को ही याद करते थे। हर घर में उन्हीं से पूजा करवाई जाती थी। पर उनके घर की अगर बात करें तो स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, और घर की बात करें तो घर भी बहुत छोटा था। एक दिन शर्मा जी के मन में ख्याल आया, उनके घर से दूर खेत में एक बड़ा पीपल का पेड़ लगा था। वह बहुत ही पुराना था और घर चूंकि छोटा था तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस पेड़ को कटवा कर घर बनवा लिया जाए, क्योंकि जहाँ घर बना था आसपास खाली जमीन नहीं थी। यह विचार उन्होंने अपनी पत्नी से भी साझा किया। पत्नी तो बहुत दिनों से रट लगाई थी कि घर बनवा दो। ऐसा सुनते ही पत्नी उनकी बहुत खुश हो गई, मानो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। देखते देखते पेड़ को कटवा कर घर बनने का कार्य शुरू हो गया। पर पेड़ के कटने के अगले दिन से ही घर में कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी शर्मा जी के। शर्मा जी जो काम करने चलते उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती। घर का सामान लेने जाते तो रास्ते में पैसे गिर जाते। घर से स्कूल बच्चे पढ़ने के लिए जाते, रास्ते में उन्हें चोट लग जाती। ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं होने लगी, लेकिन शर्मा जी ने उन्हें आम घटना समझकर भुला दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन अब शर्मा जी बड़े परेशान से रहते। अब इसी परेशानी के साथ ही उन्होंने नए घर में गृह प्रवेश कर लिया था। पर गृह प्रवेश के दौरान ही कुछ ऐसे अपशकुन हुए जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता था, जैसे नारियल का सड़ा हुआ निकलना, घर के सामने नींबू का कटा हुआ मिलना और उनमें से लाल रक्त जैसा कुछ मिलना, घर में एक जानवर की लाश मिलना। ये सारी चीजें शर्मा जी को परेशान कर रही थी, पर ज्यों त्यों वो घर में आके रहने लगे। सामान भी सब जगह रख दिया गया। अगले दिन सुबह शर्मा जी के व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखा। वो छोटी सी बात पे चिल्लाने लगे, आंखें लाल करके अपने बच्चे को मारने लगे। ये चीज शर्मा जी की पत्नी ने पहली बार देखी थी। वो शर्मा जी को स्तब्ध होकर देख रही थी और बचाने का प्रयास भी नहीं कर रही थी। जैसे तैसे ये समय बीता। शर्मा जी अपने पूजा पाठ के लिए गांव में निकल गए, पर पूरे दिन शर्मा जी की पत्नी के मन में यही ख्याल आ रहा था, वो इंसान जिसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, वो अपने बच्चे को हैवानों के जैसे क्यों मार रहा था। मन के वहम को समझ के शाम होते ही उसने खाना बनाया और शर्मा जी का इंतजार करने लगी। घड़ी में 10 बज चुके थे, अभी तक शर्मा जी का कोई अता पता नहीं था। कुछ समय और बीतने के बाद शर्मा जी की पत्नी अब अपने बड़े बेटे को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी शर्मा जी को देखने के लिए कि वो किसके घर पे इतनी लंबी पूजा करवा रहे हैं। देखते देखते आधा गांव घूम चुकी थी, पर शर्मा जी किसी के घर नहीं थे। पास ही एक छोटा सा आम का बाग था। बाग के पास कुआं था। कुएं के पास कोई बैठा नजर आ रहा था, पर अंधेरे की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा था। शर्मा जी की पत्नी ने अपने बेटे से कहा, टॉर्च जलाओ और जरा चेहरे पे देखो कौन है। जो ही टॉर्च की रोशनी जली, सामने शर्मा जी बैठे दिखे और इतना देखते ही शर्मा जी की पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? घड़ी में समय देखा है क्या हो रहा है? चलिए घर चलिए। इतना सुनते ही शर्मा जी पास में पड़े एक पत्थर को उठाते हैं और अपनी पत्नी के सर पे दे मारते हैं और सीधे घर चले जाते हैं। शर्मा जी की पत्नी के माथे से खून बहने लगता है। जैसे तैसे वो अपने बेटे के साथ वापस घर आती हैं और मरहम पट्टी करने के बाद खाना देती हैं और पूछती हैं, आपको क्या हो गया है? पर शर्मा जी बिना कुछ जवाब दिए ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह का नज़ारा कुछ और ही था। शर्मा जी बिना पूजा पाठ किए खाने पे बैठ जाते हैं और बच्चों को अनायास डांटने लगते हैं। पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। शर्मा जी की पत्नी हैरान थी और उन्होंने पूछ ही लिया, आखिर आपको क्या हो गया है? आप पूजा क्यों नहीं कर रहे? बच्चों को क्यों डांट रहे हैं? और रात को भी आपका व्यवहार कुछ सामान्य नहीं था। इतना सुनते ही शर्मा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, मेरे घर को तोड़कर तूने अपना घर बना लिया है। और फिर तेजी से हैवानों की तरह खाना खाने लगते हैं। शर्मा जी की पत्नी ये सब देखकर दंग रह गई। खाना खाने के बाद शर्मा जी फिर से चिल्लाते हुए बोले, मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए और कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उनकी पत्नी को भी अब शक हो गया था, ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया उनके पति पर है। वो ऐसी बातें तो पहले कभी नहीं करते थे, और तो और वो लोगों के घर पूजा करने भी अब नहीं जाते थे। अब घर के खर्चे में भी मुश्किलें आने लगी थी। शर्मा जी को देखकर अब उनकी पत्नी का मन भी बैठने लगा था। एकाएक उनके मन में ख्याल आया कि पास वाले मंदिर में जाकर क्यों ना वहाँ के पंडित जी से बात की जाए और जो भी घर में हो रहा है वो सारा कुछ बताया जाए। अगली सुबह पंडित जी से मिलने वो मंदिर जाती है। मंदिर में पंडित जी ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं और उनसे कहते हैं कि आप शर्मा जी को मंदिर में बिठाकर गायत्री मंत्र का जाप करो, अगर कोई भी भूत प्रेत का साया होगा तो सामने जरूर आएगा और वो अपने बारे में भी बताएगा कि वो कौन है। शर्मा जी की पत्नी सारी बातें ध्यान से सुनकर घर आती हैं और हाथ मुंह धुलकर मंदिर में दिया जलाती हैं। दिया जलाने के बाद शर्मा जी का हाथ पकड़कर मंदिर में लाकर बिठाती हैं, फिर गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देती हैं। पर थोड़ी देर तक शर्मा जी पर कोई असर नहीं होता। जब 2 से 3 मिनट तक गायत्री मंत्र कई बार पढ़ा जाता है, तब एकाएक शर्मा जी की आंखें लाल हो जाती हैं, मानो आंखें बाहर ही निकल आएंगी और तेजी से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे छोड़ने वाला हूँ। और तभी उनका छोटा सा बच्चा मंदिर में आ जाता है। शर्मा जी उसे जोर से हैवानों की तरह पकड़कर दबोच लेते हैं, मानो उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। इतना देख शर्मा जी की पत्नी गिड़गिड़ाने लगती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर शर्मा जी मानो उसे अब नहीं छोड़ने वाले थे। उसका गला इतना जोर से दबा रखा था जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। पर शर्मा जी की पत्नी लाचार थी, अब उसके पास रोने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वो बार बार अपने पति से प्रार्थना कर रही थी कि बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो। शर्मा जी ने बच्चे को झटके से दूर फेंक दिया, मानो वो उनका बच्चा हो ही ना, और कहने लगा कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस, मैं इसी जगह मौजूद पीपल के पेड़ पर रहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे रहने नहीं दिया, पेड़ को काट डाला, अब मैं तेरे घर को बर्बाद कर दूंगा, तू अपने घर में अब नहीं रह पाएगी, एक एक सदस्य को मैं खत्म कर दूंगा, जैसे तूने मेरे घर को बर्बाद किया वैसे ही मैं तेरे घर को भी बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर शर्मा जी बेहोश होकर फर्श पर गिर जाते हैं। शर्मा जी की पत्नी का तो पहले से ही बुरा हाल था, वो बच्चे को संभाले या अपने बेहोश पति को देखे, जैसे तैसे उसने बच्चे को उठाया, उसे देखा कहां कहां उसे चोटें आई हैं, मलहम पट्टी करके पति को भी जगाया, पर काफी कोशिशों के बाद भी पति को यानी कि शर्मा जी को होश नहीं आ रहा था। शर्मा जी की पत्नी अब भागी भागी मंदिर जाती है और पंडित जी से सारा हाल कह सुनाती है। पंडित जी ब्रह्म राक्षस का नाम सुन के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, भूत प्रेत चुड़ैल इन सब से तो एक बार बचाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस काफी शक्तिशाली होते हैं। फिर भी पंडित जी ने कहा कि मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूँ। वो मंदिर के अंदर गए और कागज में लिखा कोई मंत्र लेकर आए। उसे मोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ये एक ताबीज में डालकर शर्मा जी के गले में पहना दो और साथ ही थोड़ी सी भभूत दी और उस भभूत को शर्मा जी के माथे पर 7 बार लगाने के लिए कहा। शर्मा जी की पत्नी के पास कोई चारा नहीं था, वो चाह के भी किसी और से कुछ नहीं बता सकती थी। जैसा जैसा पंडित जी ने बताया उन्होंने घर आकर वैसे वैसे कर दिया और कुछ ही देर में शर्मा जी को होश भी आ गया। वो फिर से एक सामान्य जीवन जीने लगे। ऐसा होते 2 दिन बीता था, अचानक से मानो फिर से एक शांति सी छा गई, एक बड़े तूफान का संकेत दिखने लगा था। शर्मा जी आज फिर अपने काम से वापस घर नहीं लौटे थे। रात के 8 बज रहे थे और अभी भी उनका कोई अता पता नहीं था। शर्मा जी की पत्नी को लग रहा था शायद कहीं फिर से ब्रह्म राक्षस का साया तो नहीं आ गया। ढूंढते ढूंढते जब शर्मा जी की पत्नी गांव में एक घर में पहुंचती है और पूछती है कि क्या शर्मा जी आए थे, तो सामने से जवाब आता है कि हाँ, आज वो उनके घर कथा कहने आए थे और हाँ, उनका कुछ सामान भी छूट गया है। ये कहते हुए वो घर के अंदर से वही ताबीज लेकर आती है जो शर्मा जी ने पहना हुआ था। वो कहती है कि कथा पढ़ने के बाद जब वो भोजन करने बैठे तो शायद कुर्ता निकालते वक्त उनका ताबीज भी वही निकल गया था। इतना सुनते ही शर्मा जी की पत्नी को मानो सांप सूंघ गया हो, वो ताबीज हाथ में लेकर उल्टे पांव वापस आ जाती हैं और यहाँ वहाँ जगह जगह शर्मा जी को ढूंढने लगती हैं। तकरीबन एक घंटे तक जगह जगह ढूंढने के बाद जब शर्मा जी नहीं मिलते हैं तो वो घर का रुख कर लेती हैं। आज वो अपने साथ अपने दोनों बेटों को भी नहीं लाई थी, इसीलिए और उनका मन बैठा जा रहा था। सोचते हुए आ रही थी कि अगर अब वो ब्रह्म राक्षस उनके पति पर आ गया तो अब वो क्या करेगा। घर पहुंचने ही वाली थी, दूर से उन्होंने देखा घर में कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। घर के सामने पहुंचकर उनका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। डरते डरते उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया और बेटों को आवाज दी, राहुल राहुल दरवाजा खोलो, राहुल राहुल दरवाजा खोलो। कई बार राहुल को आवाज देने के बाद कोई जवाब घर में से नहीं आता है। ये क्या, अचानक से धक्का देने पे दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जाते ही शर्मा जी की पत्नी घर में रोशनी करती हैं, तो देखा शर्मा जी शांत बैठे हुए थे, मानो किसी चीज का अफसोस कर रहे हों। शर्मा जी की पत्नी तो पहले से ही डरी हुई थी, पर बच्चों को घर में ना देखकर वो परेशान थी और शर्मा जी के पास जाके उनको झकझोरते हुए पूछती हैं कि बच्चे कहाँ हैं। शर्मा जी सर को ऊपर करते हैं और अपनी पत्नी को खूब जोर से पकड़ लेते हैं और इतना जोर से चिल्लाते हैं मानो पूरे घर का सामान तहस नहस हो जाएगा। हर तरफ अशांति फैल गई थी, सिर्फ उन्हीं की आवाज सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे उनके शरीर का आकार भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। ये दृश्य इतना भयावह था कि कोई भी व्यक्ति अगर देख ले तो उसकी डर के मारे जान निकल जाए। पर फिर भी शर्मा जी की पत्नी हिम्मत करके उनके पास जाती हैं और पैर को पकड़ के गिड़गिड़ाती हैं कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, आप कौन हो मैं नहीं जानती, मेरे पति को मेरे बच्चों को छोड़ दो। इतना सुनते ही ब्रह्म राक्षस इतना जोर से चिल्लाता है कि कोई भी डर जाए। वो कहता है कि तूने मेरा घरौंदा बिगाड़ दिया, तूने मेरे पेड़ को कटवा दिया जिस पर मैं पिछले 100 सालों से रह रहा था, और जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तेरे बच्चों को तेरे पति को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए कोने में फिर जाकर बैठ जाता है। इतना सुनने के बाद शर्मा जी की पत्नी के हाथ पैर मानो ठंडे हो गए हों, पर फिर भी हिम्मत करके चारों तरफ बच्चों को ढूंढती है। आंगन के एक कोने पर थोड़ी सी मिट्टी उभरी हुई दिखती है। उसे शक होता है कि कहीं इस ब्रह्म राक्षस ने उसके बच्चों को यहीं दफना तो नहीं दिया। वो और पास जाकर थोड़ी सी मिट्टी हटाती है तो उसे उसके बच्चे की उंगली दिखाई देती है। वो जोर जोर से रोते हुए जल्दी जल्दी मिट्टी हटाना शुरू करती है। और ये क्या, दोनों के दोनों बच्चे वहीं पे दफनाए हुए थे, पर बच्चों की सांसें अभी भी चल रही थी, बच्चे लगभग अधमरे हो गए थे। शर्मा जी की पत्नी रोते बिलखते हुए बाहर भागती हैं। भागते भागते वो मंदिर के पट पे जाती हैं और जोर जोर से दरवाजा पीटती हैं। अंदर से पंडित जी बाहर आते हैं कि रात को 2 बजे कौन आया है। बाहर आकर देखते हैं शर्मा जी की पत्नी जोर जोर से रो रो के दुहाई दे रही होती हैं कि पंडित जी मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, वो ब्रह्म राक्षस किसी को नहीं छोड़ेगा, और जोर जोर से रोने लगती है। शर्मा जी की पत्नी की बातों को सुनकर पंडित जी भी अब घबरा जाते हैं, पर उनके पास भी कोई चारा नहीं था। वो मंदिर से कुछ सामान लेते हैं और कहते हैं, चलो बेटी अब मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, और शर्मा जी की पत्नी के साथ उसके घर आ जाते हैं। घर पे कोई पूजा शुरू करते हैं और हवन की तैयारी करते हैं। हवन में ब्रह्म राक्षस के नाम की जैसे ही आहुति देने लगते हैं, ब्रह्म राक्षस सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तू यहाँ क्यों आया है? तू जानता है मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर इसने और इसके पति ने मिलकर मेरा घरौंदा तोड़ दिया, तो अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो शर्मा जी का सर जोर जोर से दीवार पर मारने लगता है। शर्मा जी के सर से खून की मानो नदी बहने लगी हो। ये देखकर शर्मा जी की पत्नी और जोर जोर से रोने लगती है। पंडित जी कहते हैं, तुम ब्रह्म राक्षस हो और तुम इन मासूम लोगों की जान लेने पर क्यों तुले हो? तुम क्या चाहते हो? तुम्हें तुम्हारे घरौंदे को लौटा दिया जाएगा। इतना सुनते ही ब्रह्म राक्षस कहता है कि मेरा घरौंदा कैसे लौटाओगे? तुमने मेरा पेड़ कटवा दिया जिसपे मैं 100 सालों से रह रहा था। उस पेड़ की लोग पूजा भी करते थे, पर मैंने आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पंडित जी उसकी बातें सुनकर कहते हैं, पेड़ तो कटवा दिया गया है, अगर तुम संतुष्ट हो जाओ तो हम एक दूसरा पेड़ भी लगवा सकते हैं और उसकी भी वैसे ही पूजा की जाएगी जैसे पहले वाले पेड़ की जाती थी। ये लोग नादान हैं और गलती किसी से भी हो सकती है। अनजाने में की गई गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं होती। इतना सुनते ही ब्रह्म राक्षस राजी हो जाता है और कहता है, मैं तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक नया पेड़ ना लग जाए और पूरे गांव वाले उसकी पूजा करना ना शुरू कर दें। जैसे तैसे रात बीतती है और अगली सुबह शर्मा जी की पत्नी पंडित जी के साथ घर के बाहर पेड़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी कोशिशों के बाद गांव से कुछ ही दूर पंडित जी को और शर्मा जी की पत्नी को एक पुराना पीपल का पेड़ दिखता है जिसकी शायद काफी सालों से पूजा नहीं हो रही थी। पेड़ को देखते ही पंडित जी के मन में विचार आता है, क्यों ना ब्रह्म राक्षस को हम यहीं पर स्थापित कर दें, गांव में भी किसी तरह का डर नहीं रहेगा, लोग यहाँ आकर पूजा करेंगे और उसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। उस पेड़ को देखने के बाद शर्मा जी की पत्नी और पंडित जी वापस मंदिर आ जाते हैं। मंदिर आने के बाद वो मंदिर पर ही पूरे गांव वालों को बुलाते हैं। वहां बुलाने के बाद अपने साथ हो रहे बीते कई महीनों से ब्रह्म राक्षस की सारी घटनाओं को शर्मा जी की पत्नी पूरे गांव वालों को बता देती है। पंडित जी कहते हैं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं हम सब से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उस पेड़ की पूजा हम सब भी करते थे। और पंडित जी कहते हैं कि गांव से कुछ ही दूर पर एक पीपल का पेड़ है, हम सभी को जाकर ठीक उसी तरह उस पेड़ की भी पूजा करनी है जैसे कि पहले वाले पेड़ की जाती थी, जहां पर शर्मा जी ने अपना घर बना लिया। गांव वाले पूरी बात सुनने के बाद अपनी सहमति दे देते हैं और देखते ही देखते पूजा की तैयारी भी शुरू हो जाती है। पूरे दिन पूजा की तैयारी करने के बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त देख कर शर्मा जी की पत्नी और शर्मा जी साथ ही उनके दोनों बच्चों को लेकर पूरे गांव वाले उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी पूजा प्रारंभ करते हैं और शर्मा जी की पत्नी और शर्मा जी पूजा पर बैठते हैं। काफी लंबी पूजा चलने के बाद ब्रह्म राक्षस एक बार फिर से शर्मा जी के अंदर प्रवेश करता है और शर्मा जी फिर से एक भयानक रूप में आ जाते हैं। शर्मा जी का भयानक रूप देखकर पूरा गांव डर जाता है और सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। कहते हैं, हम सभी को क्षमा कर दो और इस पेड़ में आप अपना स्थान ग्रहण करो। इतना सुनते ही शर्मा जी एकदम से बेहोश हो जाते हैं और चारों तरफ एक सन्नाटा पसर जाता है।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सोग फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी यानी आपकी अपनी आरजे अनोखी और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। दोस्तों, आज का हमारा सफर है उन पुराने दौर के डुएट गीतों की तरह, वो गीत जिनमें सिर्फ दो आवाजें नहीं बल्कि दो दिलों की धड़कनें गूंजती थीं। पुराने समय के डुएट गाने सिर्फ प्रेम कहानी नहीं कहते थे बल्कि शर्म, संकोच, इजहार और इंतजार की खूबसूरत दास्तान बुनते थे। तो चलिए यादों के उस सुनहरे दौर में चलते हैं। और जब दौर में शुरुआत के ही दिनों की बात होती है ना, या फिर जाते जाते कुछ कहना होता है, तो एक नगमा हमारे जहन में दौड़ के आता है। नगमे के बोल हैं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। एक मतलब दुख वाला पैगाम भी है और साथ ही में एक मुस्कुराहट और सुकून भी है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ मत जाओ, पर मुझे ये भी मालूम है अंदर ही अंदर कि तुम जाने को तैयार हो, क्योंकि अब वक्त हो गया है जाने का। और कहते हैं ना कि जब हम किसी से दूर होते हैं तभी तो दोबारा मुलाकात की सोचते हैं। दोस्तों, ये गीत फिल्म हम दोनों से है। स्वर दिया था मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने। कहानी में ये गीत उस पल आता है जब जुदाई से पहले कुछ लम्हे और मांग लिए जाते हैं। ये गाना हमें सिखाता है कभी कभी जिंदगी में कुछ पल रोक लेने चाहिए, क्योंकि वही पल आगे चलकर यादों का सहारा बनते हैं। चलिए फिर हम भी सुनते हैं यही गीत आपके अपने आज के सफर के शुरुआत में।
1: न जाओ छोड़ कर।

0: आपने सुना अभी ये नगमा, और इस नगमे के बाद मतलब जब हमने सामने वाले से थोड़ा सा वक्त मांग लिया, फिर उसको उसकी खूबसूरती का एहसास कराने का वक्त होता है। जी हाँ, आज हम एंजॉय कर रहे हैं आपके भूले बिसरे गीत में डुएट सॉन्ग्स को, जो सिर्फ एक नहीं दोनों तरफा बात करती है, जो सिर्फ एक नहीं दोनों तरफा बात करते हैं। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हाँ तुम सा नहीं देखा। जी हाँ, अब मैं आपसे इस गीत के पीछे छुपी हुई एक प्यारी सी कहानी बताती हूँ। वैसे तो ये गीत है फिल्म तुम सा नहीं देखा, यानी इसी का टाइटल ट्रैक। इसे स्वर से सजाया था मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने ही। ये गीत बताता है कि भीड़ में लाख चेहरे हों, पर दिल को छू लेने वाला चेहरा सिर्फ एक होता है। भले ही हम भीड़ के इर्द गिर्द क्यों ना हों, पर हम उस भीड़ में भी होके उस एक चेहरे के साथ होते हैं जो हमारे जहन में छप चुका होता है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है जनाब, बहुत लोग मिलते हैं पर जो अपना बन जाए वही खास होता है। तो चलिए उन खास चेहरों को याद करते हुए इस गीत का आनंद लेते हैं आपके अपने शो भूले बिसरे गीत में, और मैं हूँ आपकी रात के सफर की साथी, यानी आपकी आरजे अनोखी।
1: सुनो तो क्यों उस्ताद, गाने वाने का शौक रखते हो?
2: शौक तो बहुत है, लेकिन आप लोगों के सामने मैं क्या गाऊं? बीबी जी से कहिए।
1: क्यों बीबी जी?
3: शट अप।
1: बीबी जी का मूड खराब है, मेरा ख्याल है तुम ही गाओ।
3: खबरदार जो गाना वाना गाया इसी तरह टांगा चला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
1: अजीब खुश्क इंसान है आप भी, गाना मत गाओ, मोहब्बत की बातें ना करो, आखिरी रास्ता कटेगा कैसे? उठाने वाले गाओ इसी तरह।
3: मजाज है उसकी जो गाए।
2: जिन्हें मैं नहीं गाऊंगा साहब, हरगिज़ नहीं गाऊंगा।

0: चलेगी। याद रखो, अगर शाम से पहले मैं घाट पर न पहुंचे तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ।
1: दोस्तों, ये गाना आपने अभी सुना और इसमें खूबसूरती को बड़े ही प्यार से उकेरा गया हर एक शब्द में। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की ओर और ये सॉन्ग है लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मतलब क्या ही बोलूं मैं इस सॉन्ग के लिए, इतनी खास वाली फीलिंग है इसको लेके। एक चुभता सा मीठा सा दर्द कहीं पे, एक गुदगुदाहट सी फील हो रही है इस गाने को सुनते हुए। और जब भी इसको लिखा गया था, कहीं ना कहीं लिरिसिस्ट ने इस चीज को पूरी तरह से फील किया था, उस गुदगुदाहट को फील किया था जो इस गाने में बिल्कुल साफ नजर आती है। फिल्म सीआईडी का ये सुपरहिट सॉन्ग है। स्वर से इसे सजाया था मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने ही। ये गीत पहली मोहब्बत की मासूमियत को दर्शाता है बिल्कुल। और पहला प्यार हमेशा थोड़ा तो शरारती होता है, थोड़ा संकोची होता है।

भाई मुलाकात हुई, थोड़ा सा ठहराव लिया गया, फिर खूबसूरती की बातें की गई, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे गए। उसके बाद थोड़ा नोकझोंक और फिर अब वो वक्त आ गया इस सफर में जहाँ प्यार के इकरार की बात होती है। जी हाँ, नेक्स्ट सॉन्ग इसी से रिलेटेड है,

मंजिल। इस उतार चढ़ाव के साथ में कहीं ना कहीं दिल धक धक धक धक करता है और हम इजहार भी करना चाहते हैं, पर इजहार करते हुए दिल थोड़ा सा तो नर्वस होता है। फिल्म श्री 420 का ये अमर गीत है और इसको स्वर से सजाया है लता मंगेशकर जी और मन्नाडे साहब ने। बारिश में छतरी के नीचे फिल्माया गया ये गीत आज भी प्रेम का प्रतीक है और जब भी बारिश होती है ना कहीं वो ब्लैक एंड व्हाइट वाले मूड में ये सॉन्ग हमारे दिमाग में कौंध जरूर जाता है। ये हमें सिखाता है सच्चा प्यार मौसम नहीं दिखता, वो हर हाल में साथ निभाता है। एकदम आपके अपने।

रेडियो की तरह जो जब आप चाहें ट्यून हो जाता है। फिलहाल आपने ट्यून करके रखा हुआ है आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गैनेस्ट 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपकी रात की रेडियो साथी। आपके अपने आरजू।

जी हाँ दोस्तों, आज हम सफर तय कर रहे हैं डुएट सॉन्ग्स का और उसके माध्यम से उस एहसास का जो हर किसी के लिए बेहद खास होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट वाले सॉन्ग की ओर और प्यार के इकरार के बाद में भाई हम हर बार ही सवाल करते हैं, अच्छा बताओ ना, अच्छा आज कितनी बार तुमने मुझे याद किया, अच्छा मेरी याद तो आई थी ना। ऐसे कुछ सवाल होते हैं हर बार, या तो सामने वाले से या तो यूं ही हम

अब मैं आपसे जिस गीत के बारे में बात करने वाली हूँ उनके शब्द हैं, अल्लाह करे तू भी आ जाए। ये गीत इंतजार और दुआ की भावना से भरा है। अल्लाह करे तू भी आ जाए, यानी मोहब्बत में दुआ का रंग। उस दौर में गीतों में धर्म से ऊपर उठकर इंसानी भावनाओं को जगह दी जाती थी। गीतकार का ख्याल साफ था, जब दिल सच्चा हो तो दुआ भी असर करती है। बेशक दोस्तों, ये गीत हमें सिखाती है और याद दिलाती है कि इंतजार अगर मोहब्बत से भरा हो तो शिकायत नहीं, बस दुआ निकलती है, सिर्फ और सिर्फ दुआ। तो पैगामे दुआ देते हैं इस गाने के माध्यम से उन सभी प्रेमियों को, उन सभी दोस्तों को जो अपने अपनों से थोड़ी

0: हृदय से ये सलूक नहीं करते।
1: जी हाँ दोस्तों, आपसे अभी मैंने ढेर सारे नगमे, उसके पीछे छुपी कहानी और कहीं ना कहीं जिंदगी से उसको जोड़ते हुए अभी आपको पूरी एक श्रृंखला सुनाई। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट नगमे की ओर, और ये भी हमारे जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। जुड़ाव तो रखता है संगीत, हमारी जिंदगी से बेहद गहराई से जुड़ाव रखता है। कारण ये इमोशन से ही तो बन के हम तक पहुंचता है। तो चलिए फिर से एक और इमोशन को उकेरती है आपकी आरजे अनोखी आपके अपने शो भूले बिसरे गीत में, और ये नगमा उन सभी के लिए खास होने वाला है जो थोड़े से शरारती होती हैं, जो थोड़ी सी चंचल टाइप की होती हैं, और वैसे भी कहते भी हैं दोस्तों कि सारी स्त्रियां चंचल ही होती हैं। फिलहाल इस गीत के बोल हैं, ये लो मैं हारी पिया। जी हाँ, तो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि भैया मैं हार गई हूँ आपसे, बट संभल जाइए, इतना भी नहीं हारी हूँ, अभी भी मेरी शरारत कम नहीं हुई और मैं फिर से वही शरारत करूंगी जिसको आपने देख के मुझे पसंद किया। ये गीत शरारत भरी मोहब्बत का प्रतीक है, ये लो मैं हारी पिया, यहाँ हार में भी जीत है। गीतकार ने स्त्री के नखरे, मासूम गुस्से और प्रेम की मिठास को शब्दों में पिरोया। ये गाना बताता है रिश्तों में कभी कभी छोटी छोटी हार प्यार को और गहरा बना देती है। तो अगर आपके भी रिश्ते में अगर थोड़ी सी दूरी आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि सब कुछ ब्लैंक सा जा रहा है, तो थोड़ी सी शरारत दिखाइए और अपने अपनों को और करीब लाइए। और हम भी बढ़ते हैं इस गाने के माध्यम से आपके

तो भाई इतना सब कुछ हो गया आज के सफर में जो हम और आप तय कर रहे हैं डुएट गीतों के माध्यम से। और अभी ये अगला गाना, नखरे हो गए, लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए लेकिन अब होंगे। कारण ये है दोस्तों, अब आ गई है बात मांग की, यानी डिमांड की। अब डिमांड में हम क्या मांगते हैं, हाँ ये गाने के माध्यम से आप खुद ही समझ लीजिएगा। फिलहाल इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी। गाने के बोल हैं, 5 रुपया 12 आना, याद आया ना ये वाला गाना। चलिए बढ़ते हैं। फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, अभिनेत्री मधुबाला। ये गीत हास्य और प्रेम का अद्भुत मेल है। 5 रुपया 12 आना, मजाकिया अंदाज में प्यार की नोकझोंक। इस गीत के पीछे की कहानी ये है कि फिल्म में ये सीन बेहद हल्के फुल्के मूड में रखा गया था ताकि दर्शकों को हंसी के साथ रोमांस का स्वाद मिले। गीतकार ने ये दिखाया कि मोहब्बत सिर्फ गंभीर नहीं होती, वो शरारती भी हो सकती है। और जब शरारती होती है तो भाई जिंदगी का असली मजा बस इसी में है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी जानने और बताने की जरूरत नहीं, समझती आपकी आरजे अनोखी। और चलते हैं इस गाने की ओर।

आज का सफर बहुत ही सुहाना रहा, उम्मीद है आपको भी बेहद पसंद आया होगा। और अभी इस युगल सॉन्ग्स के यानी ड्यूएट क्लासिकल सॉन्ग्स के सफर में एक बतौर तोहफा आपको ये सॉन्ग सौंप की जाएगी आपकी अपनी आरजे अनोखी। प्यार में सब कुछ होता है ना, लेकिन जो सबसे ज्यादा सतर्कता बरतनी होती है वो इस गाने के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। बोल हैं

स्वर दिया है इसमें गीता दत्त जी ने और गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, ये गीत सिर्फ छेड़छाड़ नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत में स्त्री की चंचलता के साथ उसकी समझदारी को भी दर्शाया है। वो कहती है, प्यार आसान रास्ता नहीं, जरा संभल कर चलने वाला राह है। ये गीत आज भी इसलिए टाइमलेस है क्योंकि मोहब्बत में जल्दबाजी हमेशा नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पुराने गीतों में मोहब्बत थी, दुआ थी, शरारत थी और समझदारी भी थी। वो दौर अलग था पर भावनाएं आज भी वही सेम है। याद रखिए, जिंदगी भी एक पुराना गीत है जिसे सही सुर में जी लिया जाए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मैं थी आपकी अपनी आरजे अनोखी और आप सुन रहे थे आज का आपका अपना भूले बिसरे का ये एपिसोड जो कि आधारित था डुएट क्लासिकल सॉन्ग्स के ऊपर। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, अगली किसी कहानी के साथ, अगले किसी किस्से के साथ, अगले ढेर सारी प्यार मोहब्बत नोक जोक या फिर किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक अ वंडरफुल केयर ऑफ योर्स। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ आखिर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
3: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
1: और जेंट्स के लिए?
3: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष